आकाशवाणी नागौर का ये चिरवी चैनल है एफ एम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की तीसरी तिथि तदनुसार 24 जुलाई सन 2026 इस समय सुबह के 8:54 और 40 सेकंड्स हुए हैं। हमारी आज की सभा अब शुरू होती है।

आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए हमारे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

संसद समीक्षा आकाशवाणी दिल्ली से रिले होगी रात 8 बजे और रात 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। यह कार्यक्रम भी आकाशवाणी दिल्ली से रिले होगा। रामचरितमानस गान आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर और 9:20 पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में सुनिए अनुराधा पौडवाल की गाई कुछ भक्ति रचनाएं। सुबह 9:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए के अंतर्गत बुखार कारण लक्षण बचाव और उपचार विषय पर डॉक्टर कृष्ण कुमार शर्मा की मकबूल अंसारी से बातचीत।

फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 10 बजे गाने पुराने ज़माने के प्रोग्राम में, और इसके साथ ही 10:30 पर गाने नए तराने नए में, और शाम 6:05 पर भी। युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे शाम 5 बजे, 5:30 पर बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत, और शाम 7 बजे किसान भाइयों के लिए होगा खेती बाड़ी कार्यक्रम। फिल्मी कव्वालियाँ सुनवाई जाएगी रात 8:15 पर, और 8:30 पर गाने नए जमाने के फिल्म संगीत के अंतर्गत। रात 9 बजे सुगम संगीत के प्रोग्राम में आप सुनेंगे कुछ गजलें। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे हमारे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं, अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए इसी मॉनसून सत्र में विधेयक लाया जाएगा। विधेयक के मसौदे पर आज मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश में अब 1,00,000 रुपए या उससे अधिक की साइबर ठगी की शिकायत पर E0 FIR दर्ज होगी। और राज्य में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर तेज तो कहीं कहीं भारी बरसात हुई। आज अजमेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं तेज बरसात की संभावना। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद विद्यार्थियों के हित में पिछले ढाई महीने से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित कराना आवश्यक था।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने संबंधित विभागों से फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभागों ने निरंतर कार्य किया और कल देर रात इसका मसौदा प्रस्तुत किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस मसौदे पर आज मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। इस मसौदे में फास्ट ट्रैक अदालतों की व्यवस्था और कड़ी सजा का प्रावधान शामिल है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के साथियों के सुझाव को शामिल करने के बाद मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सोमवार से संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा सप्ताह शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सरकार का हर संभव प्रयास रहेगा कि इससे संबंधित विधेयक को पारित किया जाए।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनम वांगचुक से चिकित्सकों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करने और जल्द स्वस्थ होने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक संदेश में उनसे जल्द अपना पुराना वजन प्राप्त करने की भी कामना की। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी के स्थान पर नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय के सचिव पद पर नियुक्ति दी गई है। श्री गंगवार राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं और राजस्थान में शिक्षा सचिव रह चुके हैं। टी के अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। श्री शर्मा ने नई परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया भी जल्द पूरी करने को कहा है। कल जयपुर में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण की बैठक में उन्होंने ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर, पुष्कर सरोवर, पुंछरी का लौठा, खाटू श्यामजी मंदिर, बेणेश्वर धाम और रामदेवरा में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में श्रद्धालुओं के लिए सड़क, पेयजल, बिजली, विश्राम स्थल और अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया गया। इस दौरान गुरु पूर्णिमा और रामदेवरा मेले की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। साथ ही प्रदेश के पैनोरमाओं के संरक्षण, रखरखाव और देवस्थानों से जुड़ी बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में अब 1 लाख रुपए या उससे अधिक की साइबर ठगी की शिकायत पर E0 FIR दर्ज होगी। राज्य पुलिस की ये नई व्यवस्था कल से लागू हो गई है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने इस संबंध में सभी पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। E0 FIR के तहत शिकायत मिलते ही संबंधित मामले में बिना देरी के FIR दर्ज कर प्रारंभिक कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकेगी। पहले ये व्यवस्था 5 लाख रुपए या उससे अधिक की साइबर ठगी के मामलों में लागू थी। राज्य पुलिस के अनुसार 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के मामलों की जांच जिला स्तर पर जबकि इससे अधिक राशि के मामलों की जांच राज्य स्तरीय साइबर क्राइम पुलिस थाना जयपुर करेगा। राज्य सरकार की ई मित्र व्हाट्सएप सेवा के तहत अब 21 और नई सेवाएं जोड़ी गई हैं। इसके माध्यम से बिजली और नगरीय सेवाओं का लाभ भी लिया जा सकेगा। इसके तहत बिजली बिल डाउनलोड करने, शिकायत दर्ज कराने और उसकी स्थिति जानने जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, नामांतरण, यूडी टैक्स और स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस सहित कई नगरीय सेवाएं भी व्हाट्सएप पर मिलेंगी। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ने बताया कि सेवा शुरू होने के बाद अब तक 1,40,000 से अधिक लोग इसका उपयोग कर चुके हैं। इन सेवाओं को जल्दी ही ई मित्र मोबाइल ऐप और ई मित्र कियोस्क से भी जोड़ा जाएगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आकांक्षी ब्लॉक और जिला कार्यक्रमों में कमजोर प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में विशेष प्रयास कर राज्य की समग्र रैंकिंग में सुधार लाने पर जोर दिया है। मुख्य सचिव ने कल जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों के साथ बैठक कर विभिन्न विकास सूचकांकों पर प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि, आधारभूत सुविधाओं और वित्तीय समावेशन से जुड़े निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। श्रीनिवास ने योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने और उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर तेज तो कहीं कहीं भारी बरसात दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 22 शहरों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। बीकानेर, उदयपुर और सलुम्बर समेत कई जिलों में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। सलुम्बर के झालरा में 62 मिलीमीटर पानी बरसा। कल अजमेर, अलवर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, नागौर, प्रतापगढ़, सिरोही, सीकर, राजसमंद, झुंझुनू, जालौर, हनुमानगढ़ और डूंगरपुर सहित अन्य शहरों में बरसात हुई। कोटपुतली बहरोड में लगातार बारिश से मौसम सुहावना हो गया। वहीं कई स्थानों पर जलभराव के कारण यातायात प्रभावित हुआ। उधर भीलवाड़ा जिले के रायपुर क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों और कुछ मवेशियों की मौत हो गई। बरसात के कारण कई स्थानों पर नदी नालों में पानी की आवक जारी है। पाली जिले के जवाई बांध में लगातार पानी की आवक हो रही है और जलस्तर बढ़कर 31 फीट पहुंच गया है। वहीं डूंगरपुर में सोम और माही नदी उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से बेणेश्वर धाम टापू बन गया है। इस तक पहुंचने वाले रास्ते बंद हो गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 3-4 दिन मानसून सक्रिय रहेगा। आज अजमेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश और 1-2 स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए इसी मानसून सत्र में विधेयक लाया जाएगा। विधेयक के मसौदे पर आज मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश में अब 1 लाख रुपए या उससे अधिक की साइबर ठगी की शिकायत पर E0 FIR दर्ज होगी। और राज्य में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर तेज तो कहीं कहीं भारी बरसात हुई। आज अजमेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं तेज बरसात की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी नागौर के चिमी चंद्र से बोल रहे हैं। 9:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रामचरित मानस गान।

के संगम पर स्थित इस पुण्य भूमि पर पहुंचकर सबके मनोरथ सफल हो जाते हैं। ऐसी पावन भूमि के दर्शन कर श्री रामचंद्र ने परम सुख का अनुभव किया। उन्होंने सीता, लक्ष्मण तथा सखा निषादराज को तीर्थराज प्रयाग की महिमा कह सुनाई। सभी ने त्रिवेणी के दर्शन किए। वहां स्नान कर विधि पूर्वक शिव तथा तीर्थ देवताओं की पूजा की और फिर भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे। श्री राम ने भरद्वाज मुनि को दंडवत प्रणाम किया तो मुनिराज ने उन्हें हृदय से लगा लिया। आनंदातिरेक में आशीर्वाद देते हुए उन्हें यह प्रतीति हुई कि देवी सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम के दर्शन कराकर विधाता ने उनके संपूर्ण पुण्यों का फल लाकर आंखों के सामने रख दिया है। प्रेम सहित पूजन करके भरद्वाज जी ने उन्हें कंद मूल फल खिलाए और स्नेह सनी वाणी में अपने उद्गार प्रकट किए। आपके दर्शन कर आज मेरी तपस्या, जप योग, तीर्थ सेवन और त्याग, वैराग्य सभी सफल हो गए। प्रभु दर्शन के अतिरिक्त लाभ और सुख की कोई अन्य सीमा नहीं है। जब तक मनुष्य मन, वचन और कर्म से छल कपट त्याग कर आपका दास नहीं हो जाता, तब तक कोटि उपाय करके भी उसे स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान, कलाकार थे भूपिंदर सिंह और संगीतकार सतीश वाटिया। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:20 हो गए हैं। लीजिए भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में सुनिए कुछ भक्ति रचनाएं। आज की कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: एक प्रकार से पीएम जय
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युवावाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
5: भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर से अनुराधा पौडवाल की गायी कुछ भक्ति रचनाएं।

0: भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की गाई कुछ भक्ति रचनाएं। हम आकाशवाणी नागौर के चिरवी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9:40 हुए हैं। लीजिए कार्यक्रम इनसे मिलिए के अंतर्गत सुनिए बुखार कारण लक्षण बचाव और उपचार विषय पर डॉक्टर कृष्ण कुमार शर्मा की मकबूल अंसारी से बातचीत।
1: पहला सुख निरोगी काया, इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार शर्मा, जिन्हें हम के शर्मा के नाम से जानते हैं, जो वरिष्ठ चिकित्सक और पहले सरकारी सेवा में पीएमओ भी रह चुके हैं। 2010 में आपका रिटायरमेंट हुआ। आज स्टूडियो में हमारे बीच पधारे हुए हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। राम राम साहब।
2: राम राम साहब। राम राम साहब।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा आज का विषय भी यही है, बुखार कारण लक्षण बचाव और उपचार, यानी ये बुखार क्या है और कैसे आप इसको हैंडल करेंगे कि भाई किसी को बुखार आ गया और वो किस तरीके से ग्रस्त है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे?
2: बुखार का मतलब है शरीर का तापमान नॉर्मल से ज्यादा हो जाना। नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है बॉडी का होता है 98.6
1: जी।
2: अगर इससे शरीर का तापमान ज्यादा हो जाता है तो इसका मतलब व्यक्ति को या उसको रोगी बोलेंगे अपन
1: जी, जी।
2: उसको बुखार हो रहा है। अब बुखार होने के कई कारण हो सकते हैं। जो पहला कॉमन कारण होता है, सबसे जो माना जाता है, कि शरीर में किसी भी तरह के कीटाणु घुस जाते हैं।
1: कीटाणु घुस जाते हैं।
2: अब वो बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं, और बुखार एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट का मतलब अचानक बुखार आना, क्रॉनिक का मतलब है लंबे टाइम तक बुखार चल रहा है, मरीज को मुंह कड़वा रह रहा है, खारा रह रहा है, बदन दुख रहा है, वो ध्यान नहीं देता, उसमें बुखार चलता रहता है। अभी जो बुखार चल रहा है वो अधिकतर लोग उसमें वायरल बुखार से पीड़ित है।
1: अच्छा अच्छा।
2: जिसका कि कारण अलग अलग तरह के वायरस भी हो सकते हैं, और इसके अंदर आपके जो कॉमन जो है फ्लू के वायरस भी होते हैं, चिकनगुनिया का बुखार भी चल रहा है, डेंगू का भी चल रहा है, और अभी जो लक्षण है
1: जी, जी।
2: उसके अंदर मरीज को अचानक तेज बुखार आता है और ठंड लग के आता है
1: जी, जी।
2: और

0: बदन दुखने लग जाता है। जब वो सुबह उठता है तो उसका शरीर इतना कड़ा जकड़ जाता है, कड़ा हो जाता है, वो बैठ भी नहीं पाता, उठ भी नहीं पाता, पेशाब करने नहीं जा पाता। अगर उसको कोई पानी का गिलास दे तो वो पानी का गिलास भी नहीं पकड़ पाता है,
1: पकड़ नहीं पाता, यानी कि पूरा शरीर जकड़ जाता है,
0: पूरा जकड़ जाता
1: जैसे
0: है।
1: जैसे पहले चिकन गुनिया आया था।
0: हाँ, तो चिकन गुनिया आया था, जांच में कहीं होंगे चिकन गुनिया नहीं आता है।
1: जी जी।
0: और डेंगू भी नेगेटिव है, लेकिन ये अलग तरह के वायरस है। हर मौसम के अंदर अलग अलग जो वायरस है अलग अलग रूप बदल करके आते हैं, कहीं पे हिंदुस्तान में या बाहर के दूसरे देशों में भी कई तरह के वायरस होते हैं। अभी जापान में भी अलग तरह का वायरस चल रहा है। जो कोरोना था वो भी एक तरह का वायरस था, उसमें भी रेस्पिरेटरी जो सांस की बीमारी होती थी वो भी एक तरह वायरस। तो वायरस ये रूप बदलते रहते हैं।
1: जी जी जी,
0: समझ गए ना। एंटी वायरस ड्रग्स कोई भी नहीं है जो कि इनके अंदर पर्टिकुलर उस समय डेवलप की थी कोरोना के टाइम में, लेकिन वायरस के अंदर कोई ऐसी वो नहीं है पर्टिकुलर दवा। उसमें जो भी दवाई देते हैं वो इसलिए देते हैं कि मरीज को शरीर में अगर कोई बैक्टीरिया घुसे तो बैक्टीरिया खत्म हो जाए। हाँ। बाकी वायरस बुखार वो 3 से लेके 5 दिन 7 दिन तक रहता है, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर तो व्यक्ति इंतजार करता है और बुखार तेज नहीं हो, इसके लिए उसको एंटीपायरेटिक दवाई जिसे कहते हैं पैरासिटामोल कॉमन होती है, जो नुकसान नहीं पहुंचाती है।
1: जी जी।
0: वो उम्र के हिसाब से, अगर छोटा बच्चा है तो उसका बुखार कभी भी तेज नहीं होने देना चाहिए। अगर उसको बुखार है तो उसको तान भी आ सकती है। तो छोटे बच्चों को थोड़ा सी अगर आपको लगता है कि उसको बुखार है तो उसकी बुखार की दवाई दे दें और उसके शरीर के ऊपर ठंडे पानी की पट्टी रखें जिससे उसका बुखार बढ़े नहीं। और फिर जो भी नजदीकी अस्पताल है, डॉक्टर है, उनको जरूर
1: सलाह लें,
0: डॉक्टर की सलाह लेकर के उसके बाद में आगे करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी बात कही। कई लोग लापरवाही कर लेते हैं कि बुखार आया साहब एक गोली दे दो, और मान लो छोटा मोटा कोई उनके मोहल्ले के अंदर कोई क्लिनिक खोला हुआ है तो वो उनके पास एक बार चले जाते हैं और जाकर वो छोटी मोटी दवा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो लापरवाही की वजह से वो आगे भी बीमारी बढ़ जाती है।
0: अधिकतर कई बार क्या होता है कि मरीज को ये पता ही नहीं होता कि किस कारण से बुखार आया। अब बुखार के कई बार, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रॉनिक बुखार है तो वो टीबी में भी हो सकता है, कहने अगर लंबे टाइम से खांसी है तो टीबी हो सकता है, फेफड़े कैंसर, वो लंबे टाइम तक बुखार आता है।
1: हाँ।
0: अगर शॉर्ट बुखार है आपका 3 से 5 दिन का ही है तो उस समय आप एक बार पैरासिटामोल गोली ले लो, उससे बुखार कम हो जाता है, बदन दर्द कम हो जाता है, ठीक है। नहीं तो फिर आप नजदीकी अस्पताल में या डॉक्टर से सलाह लो, उसके बाद में अगर कोई जरूरी जांचें होती है। अब डेंगू के अंदर क्या होता है कि प्लेटलेट कम हो जाता है।
1: जी
0: अच्छा, डेंगू भी क्या 2-3 तरह का होता है। सिंपल डेंगू होता है वो अपना भी रिकवर हो जाता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होता है उसके अंदर आगे प्लेटलेट बहुत कम हो जाती है, कई बार इतनी कम हो जाती है कि प्लेटलेट चढ़ानी पड़ती है।
1: जी जी।
0: और दूसरा कॉम्प्लिकेटेड जो होता है उसके अंदर कई बार उसके अंदर पूरे शरीर के जो भी सिस्टम होते हैं ना वो सारे गड़बड़ हो जाते हैं, इवन लीवर, गुर्दे वगैरह, उस आंख पे भी सब फैल होने लग जाते हैं। तो बीमारी बढ़ने नहीं देनी चाहिए आपको। थोड़े से टाइम में अस्पताल में या नजदीकी डॉक्टर से या कोई भी कंपाउंडर है जो भी, हाँ, तुरंत सलाह ले लेनी चाहिए आपको।
1: जी जी बिल्कुल।
0: और अगर डॉक्टर कहता है तो जांच कराओ, और अगर आपको दवाई लिख के देते हैं तो जितने दिन की दवाई है उतने दिन पूरी लो आप।
1: हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसे अक्सर देखा जाता है कि कई लोग, जैसे आपने 5 दिन की दवा लिख के दी और वो 2 दिन में अगर ठीक हो जाते
0: हैं बंद कर देते हैं, तो उससे ये होता है कि आपके बैक्टीरिया जो होते हैं ना उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, फिर वो दवाई काम नहीं करती।
1: वही तो बात है ना, इसलिए आप तो ये कहना चाहेंगे कि भी अगर डॉक्टर ने दवा लिखी है,
0: हाँ,
1: अगर 5 दिन की है तो उसको कंप्लीट 5 दिन लेने के बाद एक बार फिर दिखाओ,
0: वापस उनसे कहो कि अगर उसका आपके प्लेटलेट कम थे तो पूरे हुए या नहीं हुए।
1: हाँ।
0: यूरिन में इन्फेक्शन की वजह से भी बहुत बुखार कॉमन है।
1: जी जी।
0: यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, उसमें भी सर्दी लग के बुखार आता है, वायरल में भी सर्दी लग के बुखार आता है, फेफड़े में न्यूमोनिया होता है उसमें भी सर्दी लग के बुखार। तो सर्दी लग के बुखार आने के भी कई कारण होते हैं,
1: कई कारण,
0: मलेरिया में भी सर्दी लग के बुखार आता है।
1: जी।
0: तो ये आप अपने खुद निदान नहीं करके गूगल पे ढूंढ करके के बजाय डॉक्टर से सलाह लेके देखें कि आपको कारण क्या हो सकता है। अच्छा, दूसरा, आपने एक इलाज लिया तो दूसरे डॉक्टर से उसे छुपाओ मत।
1: हाँ। क्यों,
0: वायरल फीवर है 5 से 7-10 दिन रहता है, आपने एक दिन किसी के लिए इंतजार किया नहीं, दूसरे दिन डॉक्टर बदला, फिर तीसरे दिन बदल लिया, आप बदल बदल के दवाई लेते रहते हो और आपको कहते हो साहब, बाद में कहते हो आप कि साहब मैंने तो इतना दिखाया, वो दिखाया, ये करा, और साफ फर्क ही नहीं पड़ा। तो वायरल फीवर तो ये तो अपना टाइम लेता है।
1: जी, जी
0: आप कहीं भी जाते हैं गाड़ी में बैठ के तो आपको निश्चित स्थान पे पहुंचने के लिए निश्चित समय लगता
1: समय
0: है।
1: लगता है बिल्कुल।
0: ऐसी दवाई को एंटी बैक्टीरियल दवाई है उसको काम करते हुए समय लगता है, ये नहीं कि आपने आज दवाई ली और शाम को आप तैयार हो जाओगे। मरीज दिखा के जाता है सुबह और शाम को कहता है मेरे तो फर्क ही नहीं पड़ा है।
1: ऐसा नहीं होता,
0: ऐसा नहीं होता, उसमें आपको 2 से 3 दिन
1: वायरल को तो जानने में टाइम लगता है।
0: बिल्कुल, कोई भी बुखार हो उसके अंदर, चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे वायरल हो, उसके अंदर भी निश्चित समय लगता है, 3 से 5 दिन तक आपका शरीर तेज बुखार होता है। इसका मतलब है शरीर गर्म होकर उन कीटाणुओं को मार रहा है।
1: मार रहा है,
0: ये बॉडी का सेल्फ डिफेंस होता है। बुखार जो है बॉडी का सेल्फ डिफेंस कहलाता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको बुखार, हल्का बुखार है और आप गोली ले रहे हो। बुखार थोड़ी देर तक आपको इंतजार करके, अगर 100 डिग्री तक रहता है बुखार तो आप 1-2 दिन वेट भी कर सकते हो। अगर तेज नहीं होता, अगर तेज होता है 101-102 जाता है तब तो आपको बुखार कम करने की दवाई लेनी चाहिए। लेकिन 100 डिग्री बुखार है, 99 ही है, हल्का बुखार है, तो शरीर को भी वो समय देना चाहिए कि वो उन कीटाणुओं को मार सके।
1: जैसे अक्सर अभी देखा जा रहा है कि मैंने कई जगह देखा डॉक्टर साहब कि लोग जखड़े हुए हैं और उनसे आपने जैसे बताया था कि पानी का गिलास भी पकड़ा नहीं जा रहा, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, तो उस मरीज को सावधानी क्या रखनी चाहिए? दवा तो उसकी चल रही है फिर भी उसको आगे नहीं बढ़े, उसके लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए?
0: मेन उसका कारण है कि एक तो आप दवाई पूरी लो
1: जी,
0: दूसरा अगर आपके फर्क नहीं पड़ रहा है 2-3 दिन में भी तो आपको डॉक्टर से दोबारा मिलना चाहिए
1: जी जी,
0: ताकि जकड़न के लिए भी फिर अलग दवाई देनी पड़ती है।
1: कोई जांच भी हो,
0: जांच भी अगर जरूरी हो तो जांच भी करवानी पड़ती है। प्लेटलेट आपके सही है नहीं है, आपके टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है वो बढ़ जाती है, एक्यूट इन्फेक्शन होता है उसमें TLC बढ़ जाती है, वायरल में TLC कम हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरे शरीर के अंदर अभी स्थिति क्या है और डॉक्टर से कब मिलना है। और जब भी एक दूसरे डॉक्टर के पास जाओ तो आपको बताना चाहिए कि मैंने उसके पास से ये दवाई ली है, छुपाना नहीं चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कई लोग क्या करते हैं, 10 डॉक्टर बदलते हैं, एक को बताता ही नहीं दूसरे को कि मैंने वहां दिखाया था, कि वहां दिखाया वहां दिखाया। आपको बता देना चाहिए कि साहब पहले मैंने ये दवाई ली, अब ये दवाई ली, उसके बाद अब आया हूं और अब फर्क नहीं पड़ा है।
1: जी जी, ये तो बिल्कुल बताना ही चाहिए, उससे क्या है कि डॉक्टर देख कर अगली दवा दूसरी चेंज करे,
0: अगर जरूरत होती है तो वो दवाई बदल भी सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सही है। जैसे आपने कहा कि बुखार भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कई बार देखा जाता है कि लंबा टाइम बुखार आ रहा है तो समझ लो कि अपने को
0: कोई क्रॉनिक बीमारी है, लंबी बीमारी है। जैसे TB के अंदर है तो उसमें खांसी आ रही है लंबे 1 महीने से ज्यादा की खांसी है और बुखार हो रहा है, शरीर कमजोर हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, उसमें TB की हो सकती है। कैंसर के अंदर भी कई तरह के होते हैं जिसमें लंबे टाइम तक बुखार रहता है, कई तरह के कैंसर है जिसमें पता ही नहीं लगता है, ब्लड कैंसर है या दूसरा कोई भी कैंसर है उसमें बुखार आता है पता ही नहीं लगता है। तो जांच करानी चाहिए आपको, अगर आप लोकल जगह पे जांच कराए नहीं पता लगता, बड़ी जगह पे। आज पुराने समय में इतनी जांचें उपलब्ध ही नहीं थी
1: जी,
0: अब तो सब तरह की जांचें बड़ी जगह पे उपलब्ध हो चुकी है।
1: बिल्कुल,
0: कई एंडोक्राइन डिजीज होती है उनमें भी लंबे टाइम तक बुखार आता है,
1: मतलब लापरवाही नहीं करनी।
0: लापरवाही, आपके शरीर में कोई भी व्याधि है तो आप उसके बारे में लापरवाही मत बरतो। आप नजदीकी जगह जाकर के जहां भी सुविधा उपलब्ध है, सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है, आपके जान पहचान के कोई है, उनसे सलाह लेकर के कहां दिखाना है। आपको बाहर जाना पड़ता है दिखाने के लिए, कई जगह बड़ी जगह जाते हैं, तो आपको अपने सब कागज लेकर के जाने चाहिए, पुरानी जांचें लेकर जाने चाहिए और भूखे पेट जाना चाहिए, ताकि आप दूसरी जगह जाते हो तो वहां आपका समय खराब नहीं हो। आप भूखे पेट गए तो वहां पे जो भी जरूरी जांचें होगी पुरानी जांचें देख के वो नई जांच करा करके आपको सलाह दे देंगे ये करना है, नहीं तो पहली बार आप गए कागज नहीं है, क्या दवाई ली कब से है वो आप बता ही नहीं पाते हो।
1: जी जी,
0: तो जब भी कहीं बाहर दिखाने के लिए जाते हैं बड़ी जगह पे, आप पता लगा के जाओ कि कहां ये सुविधा उपलब्ध है, कहाँ पे ये जांचें होती है, सरकारी में प्राइवेट में, और उस डॉक्टर से मिलने से पहले आप सारे कागज अपने तैयार रखो, फिर उनसे समय लो। सरकारी में एम्स के अंदर है तो पहले पहले आपको डेट मिल जाती है,
1: पूरी डेट मिलती है। बिल्कुल सर,
0: तो वहां जाते हो तो अपने सारे कागज जितने भी रिकॉर्ड थे वो सब साथ लेके जाने चाहिए, क्या इलाज लिया, कब से इलाज लिया, कब दिखाया था आपने, फर्क पड़ा नहीं पड़ा, ये सारा आपको ध्यान रखना चाहिए। अधिकतर जगह पर आपको भूखे पेट जाना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि साहब हम भूखे पेट इसलिए नहीं आए कि भूखे पेट कौन जाए, तो कई जांच होती है जो भूखे पेट होती है तो आपको बड़ी जगह पे जाने पे वो उसी दिन करा कर उसी दिन आपको फ्री कर सकते हैं वो।
1: हाँ, वरना एक दिन का और
0: नहीं तो आपका एक दिन का और हो जाता है, दोबारा चक्कर लग जाता है वो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात बहुत बढ़िया बताई आपने डॉक्टर साहब के। कभी भी कोई डॉक्टर के पास जाए, मैं तो श्रोताओं से भी ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाए, अगर आपने पहले किसी से इलाज करवाया तो उसकी पूरी रिपोर्टें लेके जाए,
0: पूरी रिपोर्ट लेके,
1: ताकि उनको पता लगे कि भाई आगे ये चीजें इनको दे चुके हैं, अब अपने को क्या चेंज करनी चाहिए,
0: चेंज करनी चाहिए, क्या जांचें हो चुकी है, क्या जांचें और करवाने पे अपने को निदान हो जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब एक बात और पूछना चाहूंगा, जैसे कोई मरीज ऐसा है कि जिनको पता ही नहीं चल रहा कि मेरे को क्या बीमारी है और वो दिन प्रतिदिन यूं सूखता सा जा रहा है और खाने में उसको अच्छा नहीं लग रहा है, जीभ कड़वी हो गई है, तो ऐसे मरीज को फिर क्या करना चाहिए?
0: ये क्रॉनिक फीवर के अंदर होता है, जैसे टीबी है, टीबी के अंदर भी होता है, थायराइड की बीमारी है, हाइपर थायराइडिज्म होती है, उसके अंदर भी क्या होता है, मरीज खाना अच्छा खाता है और शरीर उसका कमजोर होता जाता है। शुगर की बीमारी है, डायबिटीज के अंदर भूख बहुत अच्छी लग रही है, पेशाब ज्यादा लग रहा है, प्यास ज्यादा लग रही है और फिर भी वजन कम होता जा रहा है। डायबिटीज है, हाइपर थायराइडिज्म है, इनके अंदर क्या होता है, भूख तो ज्यादा लगती है लेकिन वजन कम होता जाता है। तो आप जाओगे जब बड़ी जगह पे या किसी फिजिशियन के पास, तो वो आपको अपना आप ही जांचे करा लेगा कि भाई आपको कारण क्या हो सकता है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल,
0: वजन कम होने का, भूख अच्छी लगती है, वजन कम होने का कारण क्या हो सकता है।
1: बिल्कुल सर, डॉक्टर साहब, अच्छा एक बात बताओ, जैसे अभी मौसम बदल रहा है,
0: हाँ जी,
1: तो ये बदलता मौसम में भी कई बीमारियां आती है, तो उसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए?
0: नहीं, एक तो ये है कि आपको ठंडी चीज का प्रयोग कम से कम करना चाहिए,
1: कम से कम।
0: पंखे वगैरह भी जरूरत हो तो चलाओ आप, एसी वगैरह के अंदर भी, एसी के अंदर आप बैठे हो और बाहर आते हो तो एकदम से टेम्परेचर चेंज हो जाता है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: तो एसी का प्रयोग कम, और जो 60-70 साल से ज्यादा के हैं और छोटे बच्चे हैं उनको ये मौसम ज्यादा जकड़ता है।
1: अच्छा,
0: अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको वायरल ज्यादा होता है, जो बूढ़े हैं 60-70 साल के उनको ज्यादा होता है।
1: बिल्कुल, यानी कि बच्चों को और बुजुर्गों
0: को हाँ,
1: सावधानी पूरी रखनी चाहिए,
0: पूरी सावधानी रखनी चाहिए बदलते हुए मौसम,
1: बदलते हुए मौसम हाँ, में
0: हाँ, ताकि वैसे
1: खान पान
0: का भी, खान पान का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। तली हुई चीजें हैं, फास्ट फूड वगैरह ये कम से कम प्रयोग करें। शादी ब्याह में भी जाते हैं तो अपना खाना अपने हिसाब से
1: खाना चाहिए। बिल्कुल, ये जो तली हुई चीजें होती है ये ज्यादातर नुकसान,
0: बिल्कुल बहुत नुकसान करती है।
1: अभी सीजन भी चल रही है, शादी
0: ब्याह की सीजन चल रही है, इसी हिसाब से मैंने बताया आपको।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में पधारे और आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी। और मैं श्रोताओं से भी कहना चाहूंगा, जो आपने डॉक्टर साहब से सुना है, जो जानकारी आपको मिली है, उस पर आप ध्यान दें और अपने बड़ी से बड़ी बीमारियों से आप बच सकते हैं। कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना बड़ी,
0: बिल्कुल
1: तो वही बात है कि सावधानी रखनी जरूरी है। और कोई भी तरह की आपको ऐसा लगे कि मेरे को कोई बुखार सा हो रहा है तो जरूर डॉक्टर से सलाह लें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में पधारे और हमारे श्रोताओं को जानकारी दी।
0: धन्यवाद जी।
2: कार्यक्रम इनसे मिलिए के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर के शर्मा से मकबूल अंसारी की बातचीत। विषय था बुखार, कारण, लक्षण, बचाव और उपचार। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। 9:53 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की गाई ये गजल।

अभी आप सुन रहे थे अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की गाई गजल। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमिचाल से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत में गाने पुराने जमाने के। आइए पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं प्यार का मौसम फिल्म से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: लीजिए प्रोग्राम का अगला गीत सुनिए, मिलन फिल्म से, इसे गाया लता मंगेशकर और मुकेश ने।
5: सावन का महीना पवन करे शोर,
6: सावन का महीना पवन करे शोर,
5: पवन करे शोर,
6: पवन करे शोर।
7: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर,
6: पवन करे शोर।
7: हाँ।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आइए अब सुनते हैं कुमार सानू और साधना सरगम का गाया फिल्म साजन का घर का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लीजिए अब सुनिए मन की आंखें फिल्म का गीत, इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने।

फिल्म संगीत में अभी आप सुन रहे थे गाने पुराने जमाने के। यह आकाशवाणी नागौर का आज जिनमी चैनल है। 10:30 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत के अंतर्गत गाने नए तराने नए। आइए पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं, ये गीत।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: लीजिए अब सुनिए धमाल 4 का ये गीत, इसे गाया है गुरु रंधावा ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

प्रोग्राम का अगला गीत सुनिए, मुबारका, फिल्म से सोनू निगम, अरमान मलिक, अमाल मलिक, तुलसी कुमार और नीति मोहन की आवाज़ों में।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आइए अब हम आपको सुनवाते हैं सिम्बा फिल्म का गीत। इसे गाया है नेहा कक्कड़, मीका सिंह, कुमार सानू और साथियों ने।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

लीजिए प्रोग्राम के आखिर में सुनिए स्पेशल 26 फिल्म का गीत, स्पेशल 26। इसे गाया है अमन त्रिखा, श्रेया घोषाल, शबाब साबरी और साथियों ने।

0: फिल्म संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे गाने नए तराने नए प्रोग्राम। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। 11 बजने वाले हैं, अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में विविध भारती राष्ट्रीय सभा के प्रसारण मुंबई केंद्र से।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
4: एक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
5: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
4: आज की मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: रंग तरंग रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज गूंज रही है इस कार्यक्रम की शुरुआत में। डॉक्टर राही मासूम रजा का कलाम है। दिन की इस भागदौड़ में सुबह की 11 बज चुके हैं और इस भीगे मौसम में विविध भारती कुछ गजलों की फुहारें छोड़ रही है आपके नाम।

0: आंखें ऊपर वाले की नियामत है, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आंखें।
0: आंखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये

0: निधा फाजली की रचना थी, चंदन दास की आवाज थी।
1: देर तक बैठे हुए दोनों ने बारिश देखी। वो दिखाती थी मुझे बिजली के तारों पर लटकती हुई बूंदें, जो ताकुब में थी एक दूसरे के और एक दूसरे को छूते ही तारों से टपक जाती थी। मुझको ये फिक्र कि बिजली का करंट छू गया नंगी किसी तार से तो आग के लग जाने का बायस होगा। उसने कागज की कई कश्तियां पानी में उतारी और ये कह के बहा दी कि समंदर में मिलेंगे। मुझको ये फिक्र कि इस बार भी सैलाब का पानी कूद के उतरेगा कोहसार से, जब तोड़ के ले जाएगा ये कच्चे किनारे। ओक में भर के वो बरसात का पानी अध भरी झीलों को तरसाती रही। वो बहुत छोटी थी, कमसन थी, वो मासूम बहुत थी। आबिशारों के तरन्नुम पे कदम रखती थी और गूंजती थी, और मैं उम्र के इफकार में गुम तजुर्बे हमराह लिए साथ ही साथ में बहता हुआ चलता हुआ बहता गया।

0: अदान समी बारिश की बूंदों का गाना गा रहे थे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं रंगकर, एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
1: ये शाम मस्तानी।
0: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
1: दिल इंसान का एक
0: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
2: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
3: एक और आ गया।
4: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
0: छाया कांगुली की सोंधी आवाज, जमीर काजमी के बोल।

11:47 हो चुके हैं। विविध भारती से गजलें बज रही हैं और साथ में कुछ मॉडर्न गाने भी। केके की आवाज गूंज रही है।

सुरेश वाडकर की आवाज में ये सनी फिल्म की रचना थी और रंग तरंग प्रोग्राम की ये आखिरी पेशकश थी। रंग तरंग कार्यक्रम तो यहां खत्म हो रहा है, लेकिन विविध भारती पर कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। सुनते रहिए विविध भारती।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं, दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
4: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
3: कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रश्नपत्र लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है।
5: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
3: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्री वांगचुक को रचनात्मक संवाद और सकारात्मक हस्तक्षेप का आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को लेकर दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
6: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करता है।

0: आती है।
1: श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर भी सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है। राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही जारी है। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 719 अंक गिरकर 75,672 जबकि निफ्टी 196 अंक गिरकर 23,673 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में यादों की।

0: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
1: ये शाम मस्तानी।
0: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
1: दिल इंसान का एक तरह।
0: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
2: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार।
1: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज की मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

अनीता फिल्म का गीत राजा मेहंदी अली खान के बोल थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। शोर फिल्म का गाना संतोष आनंद के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। विविध भारती पर यादों की महफिल, आज मनोज कुमार की याद।

पहचान फिल्म का ये गीत आपने सुना। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम सन्यासी। विश्वेश्वर शर्मा है गीतकार।

आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण। ये प्रसारण जारी रहेंगे। समाचारों के बाद भी हम आकाशवाणी नागौर के चिरवी चैनल से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने को है, अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से।

समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध और विद्यार्थियों के प्रदर्शन के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले आज दोनों सदनों में शुरुआत में करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने लगे। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक और इस मामले पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है और अगले चार दिन तक कई क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज बांसवाड़ा और डूंगरपुर के लिए रेड अलर्ट और कई जिलों के लिए ऑरेंज तथा येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच अलवर, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और सीकर सहित अनेक जिलों में बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। उधर उदयपुर के लसाड़िया क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में 11 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश से डूंगरपुर में सोम और माही नदियां उफान पर है तथा कई स्थानों पर जलभराव और पुलियाओं के क्षतिग्रस्त होने से आवागमन प्रभावित हुआ है। भरतपुर की संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया ने मॉनसून के दौरान आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संभाग के सभी जिलों के अधिकारियों को नगरीय क्षेत्रों में सिवर लाइन, नालों और ड्रेनों की नियमित सफाई करने तथा जलभराव नहीं होने देने के निर्देश दिए। उन्होंने बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था मजबूत करने, रपटों पर चेतावनी बोर्ड लगाने और खराब स्ट्रीट लाइटों को तुरंत ठीक कराने को कहा। संभागीय आयुक्त ने अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, जल भराव रोकने और आपदा की स्थिति में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं करने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में चल रहे अंगदान जागरूकता अभियान को लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। आमजन की बढ़ती भागीदारी से राजस्थान ने अंगदान संकल्प अभियान में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वर्तमान में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। प्रदेश में 1,08,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान का संकल्प लिया है। अंगदान जागरूकता अभियान 3 अगस्त तक चलेगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेशवासियों से ज्यादा संख्या में अंगदान का संकल्प लेने का आह्वान किया गया है। एक व्यक्ति के अंगदान से कई गंभीर रोगियों को नया जीवन मिल सकता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह परीक्षण एक इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य के विरुद्ध किया गया था जो उच्च गति और उच्च ऊंचाई वाले हवाई खतरे का अनुकरण कर रहा था और जिसे मिसाइल प्रणाली ने सफलतापूर्वक रोक दिया। मंत्रालय ने कहा कि कुशा मिसाइल प्रणाली लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, मानव रहित हवाई वाहनों और बड़े दुश्मन विमानों सहित विभिन्न तरह के हवाई खतरों को एक विस्तृत दूरी और ऊंचाई के दायरे में निष्क्रिय करने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए DRDO और सभी संबंधित पक्षों को बधाई दी। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सड़क

0: और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। सुझाव भेजने का आज अंतिम दिन है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। 1:05 हुए हैं, आप फिर से सुनेंगे विविध भारती।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें।

सिलसिला फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना। बहुत सारे श्रोताओं ने कहा है कि इस गाने को इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने भी गाया है। आराम से हम अमिताभ बच्चन वाला वर्जन सुनवा सकते थे, लेकिन हमने चुना लता मंगेशकर वाला संस्करण। एक क्यूट सी बातचीत वाला टेक्स्ट हमने आपको आज के इस कार्यक्रम के लिए दिया है, जिसमें से आपको शब्द चुनने हैं और ये अंदाजा लगाना है कि भाई आज के इस कार्यक्रम में किन किन शब्दों के साथ गाने लिए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इस टेक्स्ट में शामिल हर शब्द के साथ गाने लिए जाएं, और दिलचस्प ये है कि कुछ गुगली भी हो सकती है, यानी जो गाना आप चुने हो सकता है कि वो शामिल ही ना हो, तो मजा आएगा इस अंदाजे के खेल में भी। लेकिन बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बात कही है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे तो लाल रंग पसंद है, ये रंग माता रानी चुनरी के रूप में चढ़ाया जाता है, और ट्रेन को आपात स्थिति में रोकना हो तो लाल कपड़ा लहरा कर रोका जाता है। जब इन्होंने रंग की बात कर ही दी है तो हम भी क्यों ना करें।

चलिए आप सभी बताइए कि अगर कोई एक रंग चुनने को कहा जाए और फेवरेट रंग बताने को कहा जाए तो आप कौन से रंग को अपना फेवरेट रंग कहेंगे। यहां की जो बातचीत थी उसमें लड़का कहता है कि उसे नीला रंग पसंद है और लड़की कहती है कि उसे लाल रंग पसंद है। लड़का लड़की की बातचीत तो हो गई, लेकिन आप क्या कहेंगे, कौन सा रंग पसंद है आपको? और इसके अलावा एक श्रोता का कमेंट है, अनुमान अनुरूप अकल्पनीय आरंभ सुरीला सफर के पहले शुरुआती गाने में बहुत अच्छा लगा। एक और श्रोता लिखती है कि नीले से याद आया राजेश खन्ना फिल्म सफर में कहते हैं, जानती हो नीला प्रेम की परिभाषा है, क्या प्रेम रोक लेने में नहीं समझ लेने में होता है, ये तुम तब समझोगी जब मैं एक दिन तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। ये बहुत ही प्यारी बात लिखी एक श्रोता ने। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखती हैं कि यश चोपड़ा ने रात के बैकड्रॉप में दोनों किरदारों के बीच की केमिस्ट्री को बड़ी खूबसूरती से फिल्माया था। और इसके अलावा रेखा और अमिताभ हमारी फेवरेट हैं, ये बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता है, बल्कि कई श्रोता हैं, मुझे एक के बाद एक कमेंट्स नजर आ रहे हैं जो कह रहे हैं घोड़ा चतुर वाला गाना जरूर बजाइएगा, देखते हैं कार्यक्रम के सफर में क्या हो पाता है। और एक श्रोता है जिन्होंने बिल्कुल पूरी फेहरिस्त लिखी है कि इन शब्दों से ये गाने बजाए जाएंगे, 11 गानों और शब्दों की फेहरिस्त है, आपकी मेहनत को सलाम। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि मुझे तो हरा रंग पसंद है, सप्तरंगी, इंद्रधनुष, तितलियां, पता नहीं, इन्होंने बहुत सारी अलग अलग शब्दों के साथ अपनी बात कही है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो आज के इस कार्यक्रम में कमेंट कर रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं, ईजाद इबारत कर गए जो आज पुनः पधारे हैं सुरीला सफर में, नई ऊर्जा फूंकने स्वयं पधारे हैं, शुक्रिया आपका। मेरे स्कूल के दिनों में सीनियर लड़के लड़कियां सन्यासी फिल्म के गाने पर डांस किया करते थे, पिछले कार्यक्रम में जो गाना बजा उसकी बात हमारे एक श्रोता ने की है। और इसके अलावा बहुत सारे और भी श्रोता अपनी बातें कर रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में मैं आपसे कुछ दिलचस्प सवाल भी पूछूंगा और इन दिलचस्प सवालों के जवाब जब आप देंगे तो हम आपको थोड़ा ज्यादा पहचान पाएंगे, आपस में बात होगी, बात से बात चलेगी और कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। हमने आपसे पूछा है कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, आप में से सभी श्रोता अपनी अपनी बात कहें और सिर्फ रंग का नाम नहीं लिखें बल्कि अपनी बात भी कहें कि ये रंग क्यों पसंद है। तब तक इन साहब की बात सुनते हैं जो किसी एक रंग की बात कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर बताइएगा कि ये गाना किस फिल्म का है और किस कलाकार पर फिल्माया गया है।

भाई ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, इस गाने के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा कि प्रेम नगर फिल्म का ये गीत राजेश खन्ना और हेमा मालिनी। एक श्रोता लिखते हैं कि आसमानी रंग मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसी से समंदर में पानी का रंग बनता है और दूर पर्वत भी इसी रंग में दिखाई पड़ते हैं। एक और श्रोता है जो लिखती है कि हरे रंग की जहां बात है तो बचपन हरियाली भरे गांव में गुजरा, दूसरे नगर चलकर स्कूल जाते वक्त हरे भरे खेतों के बीच गुजरते रास्तों से जाना होता था, छुट्टी के दिन खेत में जाना होता था, प्रकृति के बीच जो पले बढ़े हैं उन्हें हरा रंग बहुत पसंद आता है। एक और श्रोता है जिन्हें हरा रंग पसंद है, सुबह उठकर सबसे पहले मैं अपने बगीचे के हरे पौधों को देखती हूं, आंखें खुश हो जाती हैं। एक और श्रोता है जिन्हें हरा रंग पसंद है, उनका कहना है कि हरे रंग की अपनी एक कहानी होती है, हर रंग की अपनी एक कहानी होती है, कोई खुशी का एहसास बन जाता है, कोई यादों का और कोई किसी अपने की मुस्कान का। शायद इसीलिए रंग कभी सिर्फ रंग नहीं होते, रंग तो सभी प्यारे होते हैं, बस देखना यह है कि हमारी आंखें किस रंग को अपना मानती हैं। बहुत ही प्यारी बात। एक श्रोता फिरोजी रंग को पसंद करती हैं, कहती हैं कि ये ईश्वर का रंग है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं कहना है, सिर्फ ये कि आपकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता है जिन्हें ब्लैक एंड व्हाइट पसंद है और उनका कहना है कि ब्लैक एंड व्हाइट रंग जल्दी मिल जाते हैं इसलिए इन्हें पसंद है। एक और श्रोता है काला रंग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। एक और श्रोता है जिन्हें हरा रंग पसंद है। एक और श्रोता है जिन्हें लाल रंग पसंद है। एक श्रोता है जिन्हें आसमानी रंग पसंद है। कितने श्रोताओं ने अपनी बातें लिख दी हैं और इन बातों में उनके जीवन की कुछ कुछ कहानियां भी छिपी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि ईश्वर द्वारा नवाज आपके मीठे स्वर और आपकी आवाज में शब्दों को खूबसूरत अंदाज में पेश किया था, आपका शुक्रिया। जरा नवाजी हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि मुझे लेवेंडर कलर बहुत पसंद है, प्रकृति भी ये रंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाती है। मुझे लेवेंडर के फूल, ऑर्किड, जामुन और बैंगनी, ये सारी छटाएं पसंद हैं इस रंग की। और एक श्रोता है जिन्हें काला रंग पसंद है, इसके साथ कुछ भी मैच कर लो मैच हो जाता है। पीले रंग को पसंद करने वाले भी बहुत सारे श्रोता हैं और अब हम समंदर की तरफ जाने वाले हैं। रंगों की इस महफिल से आगे बढ़कर समंदर की तरफ चलते हैं और इस सवाल के साथ चलते हैं कि जब आपके शहर में बारिश होती है और बहुत अच्छी बारिश, पिकनिक का मौसम हो जाता है, तो अपने शहर के आसपास कौन सी ऐसी जगह आप जाते हैं जहां बहुत सारा पानी है। जैसे भोपाल के लोग बदबदा डैम की तरफ चले जाते हैं, जबलपुर के लोग सीधे जाते हैं भेड़ाघाट की तरफ, और इलाहाबाद और बनारस के लोग घाटों की तरफ जाते हैं। आप बारिश के दिनों में पिकनिक बनाने कहां चलते हैं? इस प्यारी बात के साथ समंदर की ओर रुख किया जाए। अनंत लहरें किनारों से टकराती चली जाती हैं लेकिन थकती नहीं, सदियों से टकरा रही हैं, चलती चली जा रही हैं, हमें प्रेरणा देते हुए कि जीवन चलने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है। कहां कहां का समंदर आपने देखा और समंदर के किनारे खड़े होकर बैठकर आपके दिल में किस तरह के ख्याल, किस तरह के एहसास आए, ये भी बताइएगा।

क्या प्यारा गाना, और बहुत सारे श्रोताओं को इस गाने में बड़ा अच्छा लगा। एक श्रोता लिखती हैं कि लता जी कितना सुंदर गाती हैं और बोलती भी कितना मधुर हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि ये बारूद फिल्म का गाना है। एक और श्रोता की बात कि मैं समंदर के किनारे जाती हूँ, जब बारिश होती है तब उसकी लहरें भी काफ़ी ऊंची होती हैं, लहरों की बूंदें जब चेहरे से टकराती हैं तो मन रोमांचित हो जाता है, बहुत खुशनुमा माहौल होता है। एक और श्रोता कहती हैं कि पुरी में समंदर के सामने बैठी रही, लहरों को आते जाते देखती रही। एक और श्रोता का कहना है कि नीले समुद्र की अथाह गहराई को देखकर लगता है मानो धरती ने अपने सारे सपने नीले आकाश की गोद में सजा दिए हैं। कितनी सुंदर

का पानी लबालब भर जाता है। मां नर्मदा अपने पूरे उफान पर होती हैं, डैम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और ये दृश्य बड़ा ही देखने लायक होता है। तेज वेग से बहता हुआ पानी, उसकी गूंज, प्रकृति का विराट रूप मन को रोमांचित कर देता है। इसीलिए जब डैम के गेट खुलने की खबर सुनाई देती है तो लोग भागते हैं उस नजारे को देखने के लिए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 1973 में मुंबई का समुद्र देखा था और अंधेरी से गेटवे ऑफ इंडिया तक पैदल गया था। ओहो हो हो, बड़ा लंबा सफर किया आपने। इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि कटक शहर के पास एक चिल्का झील है, पुरी, पारादीप, गोपालपुर, चांदीपुर जैसे समुद्र तट हमने देखे हैं। एक और श्रोता कहती है कि हमारे सूरत शहर में इस बार बारिश जो है वो तबाही लेकर आई है। समुद्र का कनेक्शन तो जीवन से है, समुद्र की गहराई और ऊंचाई और उस तरह से हमारे जीवन के उतार चढ़ाव सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। ये भी हमारे एक श्रोता की बात है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मुझे आसमानी रंग पसंद है, जलंधर सिटी में आज बादल नहीं छाए हैं, आसमान बिल्कुल साफ है। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि हमने कोंकण में तार कर ली, देवगढ़, गणपति पुली, आरे वारे जितने भी किनारे मिले हैं सब देखाए हैं। एक और श्रोता है जिनका कहना ये है कि जब भी मैं कपड़े सिलवाता हूं तो ब्लू पैंट, व्हाइट शर्ट और ब्लू कोट सिलवाता हूं और मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं एयरफोर्स में हूं। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि उन्हें ब्राइट कलर्स बहुत ज्यादा पसंद हैं। और इसके अलावा एक श्रोता है जिनका कहना है कि हमारी नन्ही परी को पर्पल कलर पसंद है। फिर एक और श्रोता जिन्होंने कहा है कि वादियों में थोड़ा नीलापन, गेहूं की बालियों का सुनहरा रंग, थोड़ा तांबई नीम के पेड़ों में सांझ से थोड़ी लालिमा वाला रंग, एक भरा पूरा इंद्रधनुष टहूकता रहता है, मुझे ये सारे रंग बहुत पसंद हैं। बस इसी बात की डोर पकड़कर चलते हैं वादियों की तरफ ये गाना सुनने के लिए। आपको बताना है कि मुकेश के साथ इस गाने में जो गायिका है उनका नाम क्या है और ये गाना किस फिल्म का है, और साथ में ये कि आपको किस इलाके की वादियां बहुत पसंद हैं, आपके दिल के करीब हैं।

ये गाना कहता है वादियों में खो जाएं हम तुम, ये एक बहुत ही प्यारी बात है। और एक श्रोता ने बड़ी गहरी बात लिखी है, कहते हैं कि इंसानों में सबसे बड़ा रंग प्यार और मोहब्बत का रंग होना चाहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज महान नायक उत्तम कुमार ने इस संसार को अलविदा कह दिया था, उनकी याद में एक गीत जरूर सुनवाइएगा। तो भाई इस कार्यक्रम के बाद जब सदाबहार नगमे कार्यक्रम 2:30 से मैं आपको सुनवाऊंगा तो उत्तम कुमार जी के गाने जरूर होंगे। और ये यकीन रखिए कि विविध भारती किसी भी कलाकार की अवहेलना नहीं कर सकता, हम किसी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मनोज कुमार जी के गाने सुनवाए तो उत्तम कुमार जी के गाने भी आज बाकायदा सुनवाए जाएंगे। कुछ और श्रोताओं की बातें, मेघालय के चेरापूंजी की वादी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई। इसके अलावा कई श्रोताओं ने लिखा है कि यह आरती मुखर्जी की आवाज है। और इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने इस फिल्म के दूसरे गानों का भी जिक्र किया है, आरंभ नाम की यह फिल्म जिसमें सभी सुख दूर से गुजरे जैसे गाने हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि मैं राजस्थान में हूं, 8 दिनों से बादल मंडरा रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। एक श्रोता है जिन्हें अमरकंटक की वादियां बहुत पसंद हैं और उनका कहना है कि जब हम वहां गए तो वापस आने का मन नहीं कर रहा था। किसी को जम्मू कश्मीर के पुंछ की हरी भरी वादियां बहुत ज्यादा पसंद हैं। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग पसंद की जगह लिखी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर के सामने तापी नदी पूरे उफान के साथ बह रही है। और इसके अलावा कुछ श्रोता हैं जिन्हें सिक्किम, मेघालय, दार्जिलिंग और मसूरी की वादियां बहुत ज्यादा पसंद हैं। एक और श्रोता बहुत गहरी बात लिख रही हैं कि जिंदगी में सब रंग मिल जाएं तो जीवन खुशनुमा हो उठता है, मगर सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसा हम चाहते हैं, ये बचकानी से थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं एक ऐसा गाना जो कम सुनाई देता है लेकिन ये गाना एक बहुत ही प्यारे एहसास को बयां करता है। फिल्म का नाम बताइए।

क्या सुंदर गाना। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि भाई ये सन्नाटा फिल्म का गाना है, हेमंत दा और गुलजार साहब ये दोनों। और एक श्रोता लिखते हैं कि पूरी तरह से अनसुना गाना है। और विविध भारती की खासियत ये है कि वो हमें खो गए गुमनाम मधुर गीतों से रूबरू करवाती है। उसके अलावा एक श्रोता ये है कि विविध भारती पर सन्नाटा कभी होता नहीं और होना भी नहीं चाहिए। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि हमारे शहर अजमेर में कोई सागर नहीं लेकिन अना सागर झील है, और किनारे पर ऐतिहासिक बारादरी जहां हम बरसात में पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मिनाल का झरना बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और हम वहाँ जाते हैं। और इसके अलावा कुछ और श्रोताओं ने अपनी बात लिखी है। कुछ श्रोता ऐसे हैं जो मुंबई का सफ़र करने वाले थे लेकिन आज गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि हमारे शहर सूरत में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आप सभी अपने मौसम का मज़ा लीजिए, साथ में विविध भारती से जो गाने बज रहे हैं और जो बातें हो रही हैं इन बातों का आनंद लीजिए। अब समंदर और वादियों और इन तमाम बातों से होते हुए हम एक भोर की बात तक पहुंच गए हैं। ये गाना आपके लिए। और जैसे इसी भारत में लड़की लड़के से पूछती है तुम्हें भोर पसंद है या शाम, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपको भोर पसंद है दोपहर या शाम। और साथ में ये भी बताइए किस फिल्म का है ये गाना।

कुछ श्रोताओं ने जवाब लिखे हैं, आंचल फिल्म का ये गाना राखी राजेश खन्ना के लिए ये गाना गाती हैं। और इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि ये गाना हमने पहले कभी नहीं सुना, विविध भारती ध्यान से सुनिए, ये गाना विविध भारती पर कभी कभी बजता है। मजरू सुल्तानपुरी के बोले, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे भोर बहुत पसंद है, क्योंकि सवेरे जब उठो तो उठते ही नई ताजगी, नई उम्मीद के साथ जैसे खिड़की खोलते हैं, एहसास संध्या में नहीं होता। एक और श्रोता लिखते हैं कि बरसात में जब पानी ज्यादा गिरने लग जाए तो दीवारों में सीलन जमने लगती है, दीवारों के रंग निकल कर कैसे तो दिखने लगते हैं, रंग का मिजाज अलहदा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि हम तो मैदानों में रहते हैं जहाँ खेती बाड़ी होती है, यहाँ नदियां तो हैं, पहाड़ और वादियां दूर दूर तक नहीं हैं। उत्तर नेपाल के पहाड़ 150-200 किलोमीटर दूर हैं, दक्षिण विंध्य की पहाड़ियां भी बहुत दूर हैं। एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि भोर की बेला इतनी सुहानी होती है कि मध्यम उजाले और नीरव शांति में मेडिटेशन करने का, प्राणायाम करने का मजा अलग होता है और गौर से सूर्योदय देखने का मजा भी अलग होता है। कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमें भोर बहुत ज्यादा पसंद है, पर कुछ श्रोता तो ऐसे भी होने चाहिए ना जिन्हें शाम पसंद है। क्या आप बता सकते हैं कि अब जो गाना आ रहा है उसे किसने लिखा है और ये किस फिल्म का गाना है? और हाँ, आपको अगर शाम पसंद है तो वो शाम कहाँ बिताना पसंद है ये बताइएगा।

0: सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर की आवाजें, कानून और मुजरिम फिल्म का ये गाना, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि ये अहमद वसी का लिखा गीत है। बहुत सारे श्रोता ये भी जानते हैं कि अहमद वसी किसी वक्त में विविध भारती के उद्घोषक हुआ करते थे। अहमद वसी की याद इस गाने के जरिए। एक श्रोता हैं जो लिखती हैं कि शाम दिन का वो खूबसूरत पल है जब आसमान धीरे धीरे अपने रंग समेटता है और मन अपनी भागदौड़ लगता है। पूरी प्रकृति कह रही है कि अब कुछ पल सुकून से अपने साथ बैठो। एक श्रोता का कहना है कि संध्या का समय अच्छा लगता है, क्षितिज पर पिघलता सूरज और खामोश होती हवाएं दिल में एक अजीब सा सुकून भर देती हैं। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि उन्हें शाम पसंद हैं, और एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि भोर और शाम का असली आनंद खुले आसमान के नीचे मिलता है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे शाम इसलिए पसंद है क्योंकि बच्चे और पति वापस आने वाले होते हैं, तो खाना क्या बनाऊं और जल्दी जल्दी खाना बनाकर सबके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता जो कहती हैं कि वो सुबह ज्यादा एक्टिव रहती हैं, हल्की सुबह का धुंधलका उन्हें बहुत पसंद है और जैसे जैसे शाम होने लगती है उनका दिल बेचैन होने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं
1: आसमां के नीचे।
0: आसमां के नीचे।

0: भाई आसमां के नीचे ये प्यार का जहां बसाने के लिए चल पड़े हैं। एक श्रोता कहते हैं कि अगर किसी ने कहा कि अभी कहीं चलते हैं घूमने के लिए तो भैया हम अपने गांव जाना पसंद करेंगे। एक श्रोता है जो कन्याकुमारी जाना पसंद करेंगे। एक और श्रोता है जो सागर के किनारे किसी सनसेट पॉइंट जाना पसंद करेंगे। एक श्रोता है जो कह रहे हैं कि भोपाल में 10 से 15 किलोमीटर पर बहुत सारे डैम हैं, वहाँ जाना चाहिए। कंचनजंगा पर्वत किसी को जाना है। और कई श्रोता ऐसे हैं जिन्हें आमेर नाहरगढ़ के किले में जाना पसंद है, तो किसी को लास वेगास जाना पसंद है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि अगर मौका मिले तो इसी वक्त पचमढ़ी चला जाऊं। ओहो, क्या बात है। और एक श्रोता है जिनको कहना है कि मौका मिले तो अभी मैं विविध भारती के कार्यालय आ जाऊं। क्या बात है, प्यारी बात। और इन सबसे होते हुए अब हम उदासी की राह पर चल पड़े हैं और चुप की राह पर चलते हुए ये गाना आपको बताना है कि किस फिल्म का गाना है और किसने लिखा है।
1: बस रे

0: एक श्रोता लिखते हैं कि भाई कैसे 50 मिनट बीत गए हैं पता ही नहीं चला और तकरीबन आखिरी गाने की तरफ आ गए हैं। एक श्रोता है जिन्हें घोड़ा चतुर वाले गाने का इंतजार है लेकिन आज शायद वो गाना आ नहीं पाएगा। भाई सब गाने कैसे बजाएं क्योंकि कार्यक्रम का समय भी तो सीमित है और आखिरी में अगर ये बात हो तो ज्यादा अच्छा रहता है।
1: बात नजरों की
0: इस बात के साथ कि आज इस वक्त इस पल कौन है जो आपसे रूठा हुआ है और आपको मनाने की जिम्मेदारी दी गई है।
2: या

भाई बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं और कार्यक्रम का ये जो सफर है अब अपने आखिरी मकाम पर पहुंच गया है, तो बड़ा मुश्किल है कि कौन से कमेंट्स शामिल करें और कौन से छोड़ें, पर ये वादा करते हुए जा रहे हैं कि आपके सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं और यहाँ से निकलने के बाद भी पढ़ेंगे, तो ये समझिएगा कि सभी कमेंट्स पर हमारी नज़र ज़रूर पड़ती है और कई लोगों को आज का ये कार्यक्रम पसंद आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी में सुर घोलते रहिए, विविध भारती के संग रहिए, जैसे कि मैं बोलता हूँ हमेशा आपसे कि दिन की इस भागदौड़ में जहाँ कहीं भी रहिए, बने रहिए विविध भारती के संग। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। प्रतीक्षा समाचारों की।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, वंदे मातरम।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जयघोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 38वीं कड़ी।

0: वंदे मातरम नामक साप्ताहिक पत्रिका का बड़ा योगदान रहा इस क्रांति में। महाराष्ट्र की और देश की स्वाधीनता की लड़ाई की दृष्टि से समाचार पत्रों के इतिहास में जो स्थान लोकमान्य तिलक के पत्र केसरी का था, वही स्थान श्री अरविंद और बिपिन चंद्र पाल के वंदे मातरम पत्रिका का रहा। भारत के राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र बन गया वंदे मातरम। लेखनी भी कई बार तलवार से अधिक धारदार बन जाती है और क्रांति कर दिखाती है।
1: 1906 से 1908 के इस काल में इस समाचार पत्र ने जनमानस को सींचा, लोगों के मन को तैयार किया। इसका श्रेय जाता है श्री अरविंद को। इस अंग्रेजी दैनिक ने युवाओं के मन में तेज उत्पन्न किया। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल ऐसे दो गुट हो गए और दिसंबर 1907 का सूरत अधिवेशन भंग हो गया। श्री अरविंद ने 12 अप्रैल 1908 के वंदे मातरम के अंक में लिखा था,
2: विदेशी सरकार के पास याचना विनती करके स्वतंत्रता खरीदी नहीं जा सकती। उसके लिए नौकरशाही से युद्ध करने और रक्त बहाने की तैयारी चाहिए।
0: वंदे मातरम समाचार पत्र के कारण बंगाल में आंदोलन को मजबूती मिल रही थी। उसी दौरान एक सभा में वंदे मातरम इस गीत का उल्लेख करते हुए गुरुदास बैनर्जी ने बंकिम चंद्र को ऋषि बंकिम कहकर संबोधित किया। इस सभा में वंदे मातरम समाचार पत्र से जुड़े हेमेंद्रनाथ घोष उपस्थित थे। गुरुदास बैनर्जी उच्च कोटि के कानूनविद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उदार शिक्षा के समर्थक तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में प्रसिद्ध थे। न्यायमूर्ति रानड़े को महाराष्ट्र में जो सम्मान प्राप्त था, वही सम्मान गुरुदास जी को बंगाल में प्राप्त था। सर गुरुदास बैनर्जी जैसे बंकिम चंद्र के समकालीन व्यक्ति और नेता द्वारा बंकिम चंद्र जी का ऋषि बंकिम के रूप में गौरवान्वित किया जाना उनके लिए एक नई बात थी। उन्होंने यह समाचार श्री अरविंद को दिया और तब से श्री अरविंद भी बंकिम चंद्र जी का उल्लेख करते समय ऋषि बंकिम ही कहने लगे। बंकिम चंद्र जी का यह ऋषित्व श्री अरविंद ने ही लोगों के सामने लाया।
1: वंदे मातरम नाम के समाचार पत्र भारत की अन्य भाषाओं में भी निकलने लगे। इसी दौरान पंजाब में पंजाबी भाषा में इसी नाम का समाचार पत्र शुरू हुआ। जनवरी 1908 में हरि रघुनाथ भागवत ने वंदे मातरम नामक पुणे से मराठी समाचार पत्र शुरू किया। इसमें मुख्य रूप से श्री अरविंद जी के वंदे मातरम के चुनिंदा लेखों का मराठी अनुवाद प्रकाशित होता था। श्री अरविंद के विचारों और लेखन का प्रचार करने के लिए ही ये समाचार पत्र चलाया गया था, परंतु आगे चलकर सरकारी दमन के कारण 1909 के मध्य में ये समाचार पत्र बंद करना पड़ा। मादाम कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 10 सितंबर 1909 को यूरोप से वंदे मातरम इसी नाम से समाचार पत्र शुरू किया। उसके संपादक थे लाला हरदयाल। इस मासिक पत्रिका का पहला अंक जिनेवा और रॉटरडम से प्रकाशित किया गया। इसका मूल्य स्वैच्छिक था।

0: इस पत्रिका के पहले पृष्ठ पर वंदे मातरम ये शब्द समाचार पत्र के नाम के रूप में बड़े अक्षरों में थे और उसके नीचे दो छाया चित्र थे। उनमें से एक था मादाम कामा राष्ट्रध्वज फहराते हुए और दूसरा तलवार उठाकर खड़ी भारत माता। भारत माता के छाया चित्र के नीचे गीता के दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक प्रकाशित किया गया था। अथ चेत्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिंच हित्वा पापं वाप्स्यसि। उसी प्रकार उसके संपादकीय के ऊपर भगवान बुद्ध का यह बोध वाक्य था, हे आनंद, तू ही तेरा दीपक है, बाहर आश्रय मत ढूंढ, अपने परिश्रम से ही निर्वाण प्राप्त कर। इस समाचार पत्र के वंदे मातरम शब्दों के नीचे लिखा था भारतीय संस्कृति का मुखपत्र।
1: लाला हरदयाल ने स्वतंत्र रूप से 1914 में स्विट्जरलैंड से वंदे मातरम नाम का अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू किया। 1920 में दिल्ली से लाला लाजपत राय ने हिंदी भाषा में वंदे मातरम पत्र शुरू किया। अमेरिका में बसे भारतीयों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए गदर पार्टी के माध्यम से आंदोलन का समर्थन किया। गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे। वंदे मातरम ही गदर पार्टी का राष्ट्रगीत था। गदर के क्रांतिकारी करतार सिंह और विष्णु गणेश पिंगले वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर चढ़े। सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले भारतीयों ने भारत माता संघ शुरू किया और उसके मुखपत्र के रूप में वंदे मातरम खालसा नाम की पत्रिका शुरू की।
0: कुल मिलाकर बंगाल के विभाजन के कारण जो आंदोलन उभरा उससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक गति प्राप्त हुई। इसी आंदोलन के कारण वंदे मातरम यह युद्ध मंत्र भारतीय जनता को मिला और उसका प्रभाव आगे उभरे प्रत्येक आंदोलन में बढ़ता ही गया। वंदे मातरम ये शब्द मानो यहां के प्रत्येक भारतीय के जीवन का मूल मंत्र बन गए।

आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

वंदे मातरम एक जय घोष। अभी आप सुन रहे थे इस लघु रूपक श्रृंखला की 38वीं कड़ी, मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर ममता सिंह, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे और प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है। जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
1: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
2: ये शाम मस्तानी।
1: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
2: दिल इंसान का एक तरह।
1: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
4: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद ढाई महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमनकारी गतिविधियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त की। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को देश के शिक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर बताया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत जारी है। ये बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दिपके और दीपक बलियान ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
3: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल ऐसा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टी के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।
0: सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में

0: सहयोग करना चाहिए। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला सहित सदन के सदस्यों ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
1: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया।
0: करगिल शहीदों की याद में सदन में मौन भी रखा गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है।
2: On this occasion, this house pays its respectable homage to the gallant martyrs who made the supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces.
0: राज्यसभा में भी शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा, विपक्ष नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगे हैं, जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज नई दिल्ली सहित 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में धमकी भरे बयान देने के वीडियो का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो फर्जी है और एआई से बनाई गई है। इकाई ने बताया कि श्री गोयल ने प्रदर्शनों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के एक वीडियो को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस वीडियो को फर्जी और डीप फेक बताया है। वीडियो में दावा किया गया है जो गलत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर जनरल पुरी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित 3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान

0: रूप से रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार निवेश और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
2: India-EU Free Trade Agreement is an important milestone in India-EU strategic partnership. Trade and economic cooperation are central to the contemporary partnership. With a combined market of nearly 2 billion people and an economic zone of around $25 trillion, the India-EU FTA is among the most significant economic partnerships in the world.
1: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। यह टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989 जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिस्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समेह से खेलेंगी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले 3 दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक रिपोर्ट।
3: दक्षिण गुजरात में 2 दिन तक भारी बारिश के बाद आज उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। पिछले 6 घंटों में उत्तर गुजरात के वाव थराद और पाटन जिलों में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह से अब तक राज्य के 239 तहसील में बारिश हुई है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अहमदाबाद, नवसारी और वलसाड में NDRF SDRF की कुल 49 टीमें और भारतीय सेना की 6 टीमें तैनात की गई है। दूसरी ओर राज्य में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी जोरों पर चल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और CJP के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे।

अमानुष फिल्म का गीत आपने सुना, इंदीवर के बोल थे, श्यामल मित्रा का संगीत था और ये गाना हमने उत्तम कुमार की याद में आपको सुनवाया। आज उत्तम कुमार की पुण्यतिथि है। छोटी सी मुलाकात फिल्म का ये गाना सुनिए, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजी। उत्तम कुमार इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे।

छोटी सी मुलाकात फिल्म का ये गाना हजरत जयपुरी ने लिखा था, संगीत शंकर जयकिशन का था। इंदीवर की बोल श्यामल मित्रा का संगीत फिल्म

डॉक्टर विद्या फिल्म का गीत था मुकेश की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था सचिन देव बर्मन का। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म शहीद से है, गीत संगीत प्रेम धवन का।

0: पंचायत फिल्म के इस गाने के साथ ही अब आज का सदाबहार नगमी कार्यक्रम यहीं खत्म होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है हेलो सहेली, कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों, खुशियां ना कुछ कुछ पानी जैसी होती हैं, हर वक्त पर जरूरी सी। मतलब खुश तो हर इंसान रहना चाहता है, पर जरा बेखबर सा हो जाता है। हम देखेंगे तो पाएंगे कि खुशियां हर वक्त हमारे आसपास ही मौजूद रहती हैं। हम हर छोटी छोटी बात को खुश होने का कारण अगर बना लेंगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। कभी जरा नजर घुमाइए, बच्चों की तोतली बोली में कभी अपना नाम सुनना, तो कभी घर के गमले में मनपसंद का फूल खिलना, कभी किसी काम पर तारीफ मिलना, तो कभी कुर्ती का मैचिंग दुपट्टा मिल जाना। ये वो नन्नी नन्नी सी खुशियां हैं जिन्हें हम कभी तवज्जो ही नहीं देते। पर अगर सच कहें तो कई बार ये छोटी छोटी सी खुशियां तकलीफ के वक्त में दवा सा असर करती हैं। तो इंतजार किस बात का है, इन नन्नी खुशियों पर नजर रखिए, हमें फोन मिलाइए और आज की बातें इन्हीं नन्नी खुशियों के इर्द गिर्द समेटिए और अपनी खुशियां हमारे साथ साझा कीजिए। स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त चंचल वर्मा का नमस्कार। तो देखते हैं हमारे साथ पहले कॉल पर कौन सी सखी जुड़ चुकी हैं। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: हम जानना चाहेंगे हमसे कौन सी सहेली इस समय बात कर रही हैं।
1: मैं सृष्टि उपाध्याय इंदौर से।
0: आपका नाम है सृष्टि उपाध्याय, जिन्होंने इंदौर से कॉल किया है।
1: जी
0: सृष्टि, अपने बारे में सबसे पहले बताएं, क्या करती हैं?
1: जी मैं हाउसवाइफ हूँ, थोड़ा बहुत समीक्षा वीक्षा लिख लेती हूँ।
0: तो सिर्फ समीक्षा लिखती हैं कि और भी किसी तरह का लेखन कार्य करती हैं?
1: लेख भी लिख देते हैं, अगर कभी किसी की मांग हो तो, कोई अगर हमें समझ में आ रहा है तो लेख लिख देते हैं।
0: और ये जो आप लेख लिखती हैं या समीक्षा लिखती हैं, ये किसी पत्रिका में प्रकाशित होते हैं?
1: हाँ होते हैं ना चंचल जी।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत ही एक रचनात्मक कार्य है लेखन का, और ये आपके अंदर बहुत सारे विकास लेकर आता है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: और आपको लेखन की प्रेरणा कैसे मिली?
1: लेखन की प्रेरणा हमें कुछ बातें कुछ गीत से।
0: अच्छा।
1: बिल्कुल शुरू हुआ था तो थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया, तो हमारे सहेलियों ने, हस्बैंड ने बोला कि तुम लिख सकती हो, थोड़ा शुरू करो। तो फिर हम लाइब्रेरी जाते थे तो संपादक जी ने हमको बोला एक समीक्षा आई है, आप लिखेंगी क्या? तो हमने शुरू में बड़े हिचक के साथ बोला, सर हम कर तो देंगे लेकिन अगर कुछ गलत होगा तो आप बेहिचक बता दीजिएगा।
0: ये बड़ी अच्छी बात,
1: हिचक खुलती गई थी।
0: सृष्टि, बड़ा अच्छा लगा जानकर कि आपको ये प्रेरणा जो मिली रेडियो सुनकर मिली। तो
1: जी रेडियो तो हमारा बिल्कुल, मतलब 2-3 साल से मम्मी मेरे रख देती थी बगल में, तब से सुन रहे हैं, बहुत शौक है हमें रेडियो का। उसकी आवाज सुन के हमारा रोना चुप हो जाते थे बंद, मतलब रोते रोते हम चुप हो जाते थे। तो रेडियो का बहुत शौक है हमको, हमारा रेडियो सुबह 7 बजे शुरू होता है और 11 बजे ही बंद होता है।

0: तो यानी कि बचपन से ही जो रेडियो का शौक है ये अब जाकर आपके इस लेखन कार्य के लिए बड़ा काम आया।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: और कोई शौक आपके?
1: बिल्कुल, बस घर के काम करते हैं, कुछ एक आध डिश बनानी हो तो वो बना लेते हैं। मेन तो हम पढ़ते हैं बहुत ज्यादा, और अपने घर के काम करने के बाद थोड़ा बहुत लिखते रहे।
0: ये बिल्कुल सही बात है।
1: किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, रेडियो सुनने का बहुत शौक।
0: अगर लिखना है तो उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है,
1: जी जी जी जी जी जी
0: और जब तक अच्छा साहित्य नहीं पढ़ेंगे, अच्छे साहित्यकारों की रचनाएं हम नहीं पढ़ेंगे
1: तब
0: तो
1: तक लिख नहीं सकते आप, तब तक लिख नहीं
0: बिल्कुल सही
1: सकते।
0: बात है। और उनका लेखन जो है वो हमें
1: जी
0: अपनी लेखनी बनाने में बहुत मददगार साबित होता है।
1: जी जी जी
0: सृष्टि जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा है। जो गीत आज आप सुनना चाहती हैं वो बताएं
1: दुल्हन एक रात की, सपनों में अगर वो आए तो मैं सो जाऊं।
0: जी। आपको सुनवाते हैं दुल्हन एक रात की फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेल, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, बताइए कौन बात कर रही हैं हमसे?
1: दीदी जिला सागर मध्य प्रदेश ग्राम कनेरा निखर से भारती कुर्मी बात कर रही हूँ। दीदी
0: भारती कुर्मी, क्या करती हैं आप?
1: दीदी जी पढ़ाई करते हैं
0: कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं अभी?
1: दीदी, कक्षा 8वीं में।
0: कक्षा 8 में? यानी कि अभी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है आपकी, छोटी है। और रेडियो सुनती हैं आप रेगुलर?
1: जी दीदी सुनते हैं दीदी, हम चित्रकूट में पढ़ते हैं दीदी, हम दिव्यांग हैं तो दीदी वहीं पे आपका कार्यक्रम सुनते हैं जब हमें टाइम मिलता है। दीदी दीदी हम आंखों से देख नहीं सकती दीदी।
0: अच्छा, लेकिन जो देख नहीं सकते उनकी एक शक्ति बहुत अच्छी ईश्वर बनाकर भेजता है। तो कई लोगों की सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, कईयों की सूंघने की शक्ति, कई

0: ये लोग बहुत अच्छा गाते हैं, आप में क्या गुण है?
1: दीदी हम संगीत सीखते हैं, दीदी गाना गाते हैं, दीदी वही सीख रहे हैं संगीत।
0: अभी संगीत कितने सालों से आप सीख रही हैं?
1: दीदी हम तो मतलब जो पहली में यहाँ पे सागर में पंडापुरा में लिया था दीदी एडमिशन,
0: जी
1: 5वीं तक हमने यहीं सागर में पढ़ाई की है, फिर 5वीं के बाद गए हैं दीदी चित्रकूट, वो है हमारे जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी।
0: तो उनसे आप संगीत सीख रही हैं अभी,
1: जी दीदी
0: तो ये गुरु शिष्य परंपरा से आपने सीखना शुरू किया है या आप संगीत विशारद कर रही हैं?
1: दीदी हमें तो बचपन से शौक था, तो दीदी वही उन्हीं को हम गुरु मानते हैं और उन्होंने दीदी हमें ये शिक्षा दी है और वही सिखाती है दीदी।
0: यहाँ आपको गुरुकुल में रहते हुए ही पढ़ाई करनी होती है?
1: दीदी वहीं पे रहती है दीदी, हॉस्टल है वहीं पे चित्रकूट में।
0: फिर घर कितने कितने अंतराल पर जाती हैं आप?
1: दीदी जैसे रक्षाबंधन है, दीपावली है, मकर संक्रांति है। जी
0: मतलब जब कोई त्योहार होता है तो उस वक्त आप घर जाती हैं यहाँ से छुट्टी लेकर।
1: दीदी
0: अच्छा, तो आप बता रही हैं भारती कि आपने संगीत की शिक्षा यहाँ ली है, तो हमें कुछ गाकर सुनाएंगी?
1: जी दीदी।

0: कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका, कोई कह दे क्या होती है माँ आखिर, माँ होती है माँ।
1: बहुत सुंदर गाती हैं भारती आप, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। और संगीत एक ऐसा माध्यम है जो खुद को खुशी देने के साथ साथ औरों में भी खुशियां बांटता है।
0: जी दीदी,
1: और आप इतनी सुंदर विधा से जुड़ी हुई हैं, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं भारती, ये बताइए हमें।
0: मूवी का नाम है रंग
1: जी,
0: और गाने के बोल है तुमने देखी मेरी आंखें।
1: तुम्हें देखे मेरी आंखें,
0: जी
1: इसमें क्या मेरी खता है।
0: जी
1: बहुत खूबसूरत गीत चुना है भारती आपने, और हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सखियों के फोन कॉल का सिलसिला। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमारे साथ कॉल पर जुड़ी है, नाम बताइए अपना।
1: जी, मेरा नाम मनीषा शर्मा है।
0: मनीषा जी, आपने कॉल कहाँ से किया है हमें?
1: मैं गुलाबी नगरी से बात कर रही हूँ, जयपुर से।
0: जयपुर, गुलाबी नगरी। इसे गुलाबी नगरी क्यों कहती हैं, बताइए।
1: जी, ऐसा है कि ये जो नगरी है, यहाँ पर जो पुराने घर और जो बाजार मिलता है वो सारा पिंक कलर से पेंटेड है, तो इसलिए इस नगरी को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है।
0: वहाँ सारे बाजार लगभग एक जैसे ही लगते हैं, अगर वहाँ खो जाए तो रास्तों की पहचान का कोई तरीका होता है क्या, बताइए।
1: देखिए, ये जो नगरी है ये बहुत खूबसूरत है ना,
0: बिल्कुल।
1: और जिस तरीके से ये गुलाबी है, यहाँ के लोग भी बिल्कुल गुलाबी यानी कि पिंक कलर, जो कि आंखों को बहुत ज्यादा सुकून देता है, एक कामनेस है इस कलर में ना, तो लोग भी गुलाबी रंग की तरह बेहद खूबसूरत और बेहद काम है। तो अगर आप खो जाते हैं तो लोगों की मदद से आपको रास्ते पता पड़ जाएंगे। इसके अलावा हर रास्ते के बाहर उसका नाम जो है वो संगमरमर के पत्थर पर खुदाई करके लिखा गया है।
0: और मनीषा जी, अपने बारे में बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: देखिए, मैं एज अ प्रोफेसर कार्यरत हूँ और मैं बच्चों को जर्नलिज्म पढ़ाती हूँ, बैचलर्स और मास्टर्स।
0: क्या बात है।
1: इसके अलावा मुझे किस्सा गोही करने का बहुत शौक है, शायरी
0: अच्छा,
1: करने का शौक है, कविताएं लिखने का शौक है।
0: अभी कोई लिखी हुई आपकी पंक्तियां अगर आपको याद हैं, या कोई शेरो शायरी जो आपने लिखी है, आपकी स्वरचित कोई रचना हम सुनना चाहेंगे।
1: जी, मैं सुनाना चाहूंगी। कभी तो मिलेगी मोहब्बत की मंजिल, ये दिल का मुसाफिर चले जा रहा है तूफान में कश्ती मगर दूर साहिल, कि दिल का मुसाफिर चले जा रहा है।
0: बहुत
1: इतनी
0: बहुत
1: भी याद।
0: सुंदर। और आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं फिल्म मैंने प्यार किया से आया मौसम, दोस्ती का गाना सुनना चाहती हूँ।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए, हमारे साथ कौन सी सहेली जुड़ी है इस समय लाइन पर?
1: मैं अलका श्रीवास्तव,
0: अलका श्रीवास्तव जी, आप कौन से शहर में रहती हैं?
1: ग्वालियर के पास एमपी शिवपुरी।
0: शिवपुरी में रहती हैं।
1: जी हाँ जी हाँ,
0: अलका जी, आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउस वाइफ हूँ। वैसे पहले मैं टीचिंग जॉब में थी, अब रिटायरमेंट हो गई हूँ।
0: अच्छा, तो रिटायर होने के बाद जो आपका खाली समय है वो कैसे गुजरता है?
1: बस घर के कामों में निकाल देती है, सारा काम होता रहता है।
0: अच्छा, जिन दिनों आप काम किया करती थी, जब आप जॉब पे थी और टीचर का काम करती थी, तो एक शिक्षिका होते हुए क्या आपको समय मिल पाता था रेडियो सुनने के लिए?
1: हाँ बिल्कुल, 4 बजे मैं घर आती थी तो आके घर में बैग रख के सबसे पहले मेरा रेडियो ऑन होता था। हालांकि ये रेडियो से जुड़ा तो मेरा जन्म के बाद से जो आंखें खोली समझदारी हुई तब से जुड़ी हुई है। मेरे घर में रेडियो चलता ही रहता था, बचपन से ही सुना है रेडियो।
0: और आप जैसे श्रोता ही हैं जो इसको और लोकप्रिय बनाते हैं। और आज बताइए अलका जी, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं लाल दुपट्टा मलमल का उसका सुनना चाहती, क्या करती थी साजना।
0: जी, आपको सुनवाएंगे हम क्या करते थे साजना, तुम हमसे दूर रह के।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो मैडम,
0: हमारे साथ कौन सी सखी इस समय बात कर रही हैं? नाम बताइए अपना।
1: मैं शारदा भोयर बात कर रही हूँ। मुझे मैम शेषनाग फिल्म का गाना सुनना है।
0: शारदा जी, आपकी पसंद का गीत तो हम सुनवाएंगे, लेकिन आप पहले ये तो बताइए कि आप कौन से शहर से बात कर रही हैं हमसे।
1: हम जिला यवतमाल से ही बात कर रहे हैं
0: हाँ, अपने बारे में बताएंगी हमें कि आप क्या करती हैं?
1: मैम। हम तो बस घर का काम करते हैं, हम
0: अच्छा,
1: ब्लाइंड है। गाना
0: अपने आप को खुश रखने के
1: सुनना
0: लिए आप क्या
1: आपका,
0: करती हैं शारदा जी?
1: हमें आप खुश रखने के लिए बस मनोरंजन, गाना सुनना, घर के काम करना
0: अच्छा,
1: यही करती है।
0: घर के काम करने में कभी कोई दिक्कत आती है आपको या आराम से आसानी से हो पाता है आपसे?
1: आराम से हो पाता है मैडम।
0: आप किसी की मदद लेती हैं या खुद से कर लेती हैं सब?
1: नहीं मैम, घर में किसी की मदद नहीं लेती, अनोखी जगह में जाएंगे तो मदद लेनी पड़ती है। क्लासिकल
0: अच्छा, किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं शारदा जी?
1: गीत, मीडियम गानों का संगीत सुनना पसंद करती है मैम।
0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं बताइए, आपकी फरमाइश पूरी करने की हम जरूर कोशिश करेंगे।
1: शेषनाग फिल्म का फेर मिलन के गीत, रे मितवा, प्यार भरे गीतों का मौसम, लेकर आई प्रीत।
0: आपको सुनवाते हैं शेषनाग फिल्म का आपकी पसंद का गाना।

0: सेम।
1: जयपुर से आप बात करिए, अपना नाम फिर से बताएं हमें।
0: युथिका नागर।
1: युथिका नागर, बहुत यूनिक नाम है और ये नाम आज मैं पहली बार सुन रही हूँ, तो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि आपके नाम का मतलब क्या होता है।
0: मेरे नाम का मतलब होता है जूही।
1: जूही?
0: जूही एक, हाँ जूही जो पौधा होता है ना
1: हाँ
0: जूही
1: जी,
0: का,
1: जूही का फूल
0: वो
1: बहुत सुंदर होता है।
0: तो वो मेरे नाम का अर्थ है।
1: आपके परिवार में ऐसे कौन से सदस्य थे जिनको संस्कृत की भी जानकारी थी और इतना सुंदर नाम चुन के उन्होंने आपका रखा?
0: देखिए मेरे परिवार में जो मम्मी, मेरी मम्मी की तरफ की जो लोग रहे वो बहुत ही अच्छे से एजुकेशन लिए थे। उस जमाने में MBA करे हुए लोग थे,
1: अच्छा,
0: तो उन्होंने ही मेरे नाम का ऐसा उच्चारण लिखवाया कि ऐसा हो कि बहुत यूनिक रहे। कहते हैं ना, नाम से ही आदमी की पहचान होती है, तो मेरा नाम यूनिक रखा और मेरे में कला ही जो कहें, बातें करना, सब चीजें कुछ ऐसी आए जिससे कि मैं यूनिक लगूं।
1: आपका शहर बहुत सुंदर है जिसे गुलाबी नगर कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा
0: देखिए
1: सा बताइए कि इसको गुलाबी नगर क्यों कहते हैं, और जहां तक मैंने जयपुर के बारे में सुना है इसे किलों की नगरी भी कहते हैं।
0: हाँ, किलों की नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जितने मॉन्यूमेंट्स बने हैं, तो यहाँ पे जो राजघराने के लोग थे जो आज भी उसी लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ में अगर आप देखते हैं तो उन्होंने इतना अच्छा मेंटेन कर रखा है, जैसे कि टूरिस्ट बहुत आते हैं जयपुर में, बहुत टूरिस्ट आते हैं। आप कभी भी जाए तो हवा महल देखो, यहाँ का नाहरगढ़ देखो, यहाँ का जंतर मंतर, यहाँ का सिटी पैलेस, यहाँ के मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको देखने के लिए लोग आते हैं।
1: युतिका जी, आप क्या करती हैं?
0: जी मैं एक बैंक के साथ काम करती हूँ,
1: अच्छा, किस तरह का काम होता है आपका बैंक से जो आप जुड़ी हैं?
0: फ्रीलांसिंग लोगों के साथ ही काम करती हूँ।
1: काम करते हुए आप समय निकाल पाती हैं रेडियो सुनने के लिए?
0: बिल्कुल, रेडियो के बिना जीवन कहाँ है।
1: रेडियो सुनने का शौक सिर्फ आपको ही है या आपके परिवार में और भी कोई है, और आपको ये शौक कैसे लगा इसके बारे में भी जानना चाहेंगे।
0: मेरी मदर का नाम है उषा नागर, ठीक है। वो बहुत अच्छी अदाकारा रही, उनके यहाँ से ही मान लीजिए कि मुझे जो है इसमें शौक आया कि मैं म्यूजिक सुनूं, म्यूजिक गाऊं, मैं खुद गाने लगी, मैं खुद गुनगुनाने लगी। और यूं कहिए किसी को संगीत के लिए चुनना नहीं पड़ा, रेडियो पे गाने सुनकर ही मेरी आवाज जो है, लोग मुझे कहते थे कि आप गाना कैसे गा लेते हो, वही सीखा है। मैं कहती हूँ उनको कि रेडियो पे सुनते हैं इतना तो गाना तो आएगा।
1: तो अब हमें भी बड़ी उत्सुकता हो रही है और हम भी चाहते हैं कि आवाज आपकी थोड़ी सी हम सुन लें, और कौन सा गीत गुनगुनाकर हमें बताएंगी आप?
0: जिसकी फरमाइश के लिए मैंने आपको कॉल लगाया है
1: तो
0: वो गाना
1: बताइए
0: है
1: आपकी पसंद कौन
0: महल
1: से गीत की है, वही गीत हमें गुनगुनाकर बताइए।
0: फिल्म का गाना है।

0: सखियों अंतराल हुआ पूरा और फिर से हम जुड़ गए हैं अपनी सखियों के साथ। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: हाँ बताइए, आप कौन सी सखी हैं, किन से हम बात कर रहे हैं?
1: मैं युतिका नागर बात कर रही हूँ। जय

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। कौन सी सखी हमसे जुड़ी है कॉल के माध्यम से?
1: मैम, मेरा नाम मनीषा प्रजापति है, जलंधर
0: मनीषा जी, आपने कहाँ से कॉल लगाया है?
1: सिटी।
0: मनीषा जी, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा कि आप क्या करती हैं।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: तो पूरा दिन आपका
1: हाँ,
0: किस तरह गुजरता है?
1: घर के काम करते हैं, थोड़ा टाइम मिलता है तो थोड़ी बहुत सिलाई कर लेती हूँ, चले
0: ऐसे कौन से
1: जाते हैं।
0: काम हैं जो आपको बहुत खुशी देते हैं, जिन्हें आप बहुत करना पसंद करती हैं?
1: सर मैम, खाना बनाना।
0: खाना बनाना ऐसा चीज़ है जो आपको खुशी देता है?
1: हाँ जी मैम,
0: और आपके पतिदेव को या आपके बच्चों को आपके हाथ का खाना जरूर पसंद आता होगा, तो कौन सी ऐसी चीज़ है आपकी बनाई हुई जिसकी फरमाइश आपसे सबसे ज्यादा की जाती है?
1: मैडम खीर।
0: तो खीर बड़ी अच्छी बना लेती हैं आप।
1: हाँ जी मैम,
0: अच्छा, आप बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मन फिल्म का मैम,
0: मन फिल्म का कौन सा गीत आपको सुनवाए हम?
1: मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन, यही मैम।
0: बहुत सुंदर तरीके से आपने गुनगुनाकर बताई है अपनी पसंद। आपको सुनवाते हैं मन
1: थैंक
0: फिल्म का आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, बताइए कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं।
1: मैं सानिया गाल से बोल रही हूँ, जिला सहारनपुर के पास से। हम
0: सानिया जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: घर में काम करते हैं, घर का ही।
0: घर के कौन से काम आपको करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
1: मैम सबसे ज्यादा तो मैं खाना बनाना अच्छा लगता
0: तो हम कई बार खुशियां ढूंढते हैं तो अपनी पसंद की चीजों में हमें खुशियां मिल जाती हैं, तो आपको
1: जी।
0: अपने रसोई घर में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है?
1: मैम मुझे सबसे ज्यादा मीठा बनाने का शौक है जी।
0: तो कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद की जाती है आपके परिवार में?
1: मैम टुकड़े बनाते हैं हम सूजी के, सूजी
0: टुकड़े? किस चीज के टुकड़े बनाती हैं?
1: के बनाते हैं, सूजी
0: अच्छा,
1: को भूनकर। जी
0: सूजी के टुकड़े
1: जी
0: बनाती हैं।
1: जी मैम। और मैम आटे की भी बना लेते हैं हम मिठाई
0: आटे की मिठाइयां भी बना लेती हैं।
1: जी, आटे की भी बना लेती हूँ।
0: तो ये घर की जो बड़ी मिठाइयां होती हैं, इनमें कई बार हमें पूरी शुद्धता और पूरे न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाते हैं। तो आटा, सूजी, ये वो चीजें हैं जिनका कोई नुकसान भी नहीं होता, जबकि बाजार में जो
1: जी मैम,
0: मावे की मिठाइयां मिलती
1: जी
0: हैं
1: मैम,
0: उनमें कोई भी
1: जी मैम,
0: मिलावट होने की संभावना बनी रहती है। तो
1: जी मैम,
0: ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने परिवार को अपने हाथों से बनाकर उनका मुंह मीठा
1: जी मैम,
0: करवाती हैं।
1: जी मैम, मुझे खुशी मिलती है। जी
0: अच्छा, और आपको किस तरह का संगीत सुनने में खुशी मिलती है? तो आप जो आज गीत सुनना चाहते हैं वही आपको सुनवाया जाएगा।
1: जी मैम, मेरे फिल्म का नाम रहेगा जीने नहीं दूंगा, बोले तुम याद ना आया करो, याद आने से पहले याद आया करो।
0: सानिया जी, आपको सुनवाते हैं जीने नहीं दूंगा फिल्म का आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: हम जानना चाहेंगे कि इस समय हमारे साथ कौन सी सहेली बात कर रही हैं।
1: मैं जयश्री गुड़े बात कर रही हूँ महाराष्ट्र से। अमरावती।
0: जयश्री जी, महाराष्ट्र में कौन से शहर में आप रहती हैं बताइए। अमरावती से आप बात कर रही हैं। आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपके शौक क्या हैं, आप क्या करती हैं, और खुश रहने के लिए सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है जो आपको खुशी देता है।
1: मुझे शौक है पढ़ने का, किताब पढ़ने का,
0: किस तरह की
1: और
0: किताबें पढ़ती हैं?
1: खुशी के लिए मैं रेडियो सुनती हूँ मैडम।
0: अच्छा, तो यानी कि शौक है आपको किताबें पढ़ने का और अपने आप को खुश रखने के लिए आप रेडियो सुनती हैं।
1: हाँ।
0: आप किस तरह की किताबें पढ़ती हैं?
1: मैं

0: इंग्लिश मराठी सभी पढ़ती वो स्टोरी और कोई कथा वेथा होती
1: तो जो कहानियां आती हैं वो
0: है।
1: आपको प्रेरित करती हैं,
0: मैडम
1: और रेडियो पर किस तरह के कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
0: सखी सहेली,
1: सखी सहेली आपका पसंदीदा कार्यक्रम है
0: हाँ सबसे ज्यादा,
1: सबसे ज्यादा, और उसके बाद
0: हाँ
1: में और कौन से
0: वैसे
1: कार्यक्रम हैं जो सखी सहेली के अलावा सुनना पसंद करती हैं आप?
0: वैसे तो सभी कार्यक्रम सुनती हूँ और सभी अच्छे लगते हैं। जैसे वो कहानी आती है सोमवार के दिन, वो कहानी और ये मुलाकात, उजाले उनकी यादों की, सितारे,
1: अच्छा,
0: सभी कार्यक्रम बहुत पसंद है। इसीलिए
1: आपके परिवार में और कौन कौन
0: सब
1: हैं?
0: हम दोनों ही है,
1: आप और आपके पति देव।
0: हाँ हम दोनों
1: तो आज आप,
0: ब्लाइंड है मैडम।
1: अच्छा आप दोनों ब्लाइंड हैं, आपके पति क्या करते हैं?
0: वो कुर्सी बनाते हैं, वो केनिंग की कुर्सी होती है ना,
1: ट्रेनिंग की कुर्सियां बनाते हैं वो।
0: हाँ। और वो खत्म होगी तो फिर वो ट्रेन में बिजनेस करते हैं, जैसे कि ऑरेंज गोली, शेंगदाना, मूंगफली वो बेचते।
1: अच्छा, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं जयश्री जी?
0: मैं गाना सुनना चाहती हूँ मदर इंडिया का, वो दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा,
1: जीवन है अगर जहर
0: जिंद
1: तो पीना ही पड़ेगा।
0: पीना ही पड़ेगा।
1: आपकी पसंद बहुत खूबसूरत है। मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्कार, मेरा नाम चंचल शर्मा है। मैं जयपुर से बात कर रही हूँ।
0: तो
1: जी
0: आपने बताया आप चंचल शर्मा हैं और इस समय आपकी
1: जी
0: बात हो रही है चंचल वर्मा से। तो दो चंचल
1: जी
0: सखियां बात कर रही हैं इस समय।
1: जी
0: चंचल जी, अपने बारे में बताइए।
1: वैसे तो मैं परिष्कार कॉलेज में लेक्चरर हूँ
0: जी,
1: और वैसे रंगमंच भी करती हूँ, राइटर हूँ और रेडियो सुनने का शौक है।
0: मतलब आप तो मल्टीटास्किंग महिला हैं, बहुत सारे काम करती हैं आप, रंगमंच से भी जुड़ी हैं आप, पत्रकारिता भी करती हैं आप, अलग अलग माध्यमों से जुड़ी हुई हैं।
1: जी।
0: इन सब में आपका एक पसंदीदा काम कौन सा है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है?
1: मैम, मुझे अपनी कविताएं लिखते वक्त रेडियो सुनना बहुत पसंद है।
0: तो अपनी कोई

0: रचना हमें सुनाइए, कुछ पंक्तियां अगर आपको याद हों।
1: जी मैं बिल्कुल सुनाना चाहूंगी। ता उम्र है मुझे सीखना, मेरा सीखना कभी खत्म ना हो, और मुझको तो सब है आ गया, ऐसा मुझे भरम ना हो। मुझे बनना नहीं सागर ठहरा, ठहराओ मौत की निशानी है, मुझे बहती सी एक नदी रखना, जिसका बहना कभी खत्म ना हो, और मुझको तो सब है आ गया, ऐसा मुझे भरम ना हो।
0: बहुत प्रेरणादायक पंक्तियां हैं आपकी, और निरंतरता की बात इसमें कही गई है कि कहीं रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, और यही जीवन की सच्चाई है।
1: जी
0: क्योंकि जो थम गया, अगर पानी भी रुक जाता है तो वहां काई जम जाती है।
1: जी और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति इस जीवन में सतत एक विद्यार्थी है जब तक कि उसकी सांस चल रही है।
0: बिल्कुल, और सीखते रहना चाहिए। जिस दिन हमें लगता है कि हमें सब आ गया ना, जीवन कहीं रुक सा जाता है, और ये अहंकार कहीं ना कहीं हमें पतन की ओर ले जाता है।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है मैम कि हम सब में ये जज्बा होना चाहिए कि चाहे कोई छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई हमें कुछ सिखा के जाता है, कोई सीख दे के जाता है, तो हमें दिल से उसका धन्यवाद जरूर करना चाहिए।
0: बिल्कुल, और आज आपकी बातें हमें बहुत सीख दे रही हैं। मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं हमें ये बताइए, क्योंकि आप तो खुद ही इतनी कविताएं लिखती हैं, तो मुझे लगता है आपकी पसंद भी बड़ी अच्छी होगी।
1: मैं किनारा फिल्म का एक गीत है, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है घर याद रहे।
0: आपकी आवाज भी बहुत खूबसूरत है, और ये हम सभी को याद रहेगी। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का किनारा फिल्म का ये गीत।

0: आज कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद, और वे सखियां जिनका कॉल अभी तक नहीं लगा है वे निराश ना हो, आप जरूर कोशिश करती रहिए, क्या पता अगली बार आपकी ही बारी हो और आपका कॉल कनेक्ट हो जाए। जिन सखियों ने आज हमसे बात की उनसे हमारा अनुरोध है कि अगले 2 महीने तक आप कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। पुरुष श्रोताओं से हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार के दिन हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वे कॉल ना करें, इससे लाइनें व्यस्त हो जाती हैं और कॉल कनेक्ट करने में सखियों को परेशानी हो सकती है। सखियों, अब आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सभी सुनने वालों को हम बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए, 400-24662। एक अन्य नंबर है 28670288। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं, 4002466 2। एक अन्य नंबर है 28670288। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, गीतों भरी कहानी, बस कुछ ही पलों के बाद। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए रिद्धि चौरड़िया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। सपनों की नगरी मुंबई, यहाँ कुछ लोग अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा करने के लिए भागते हैं तो कुछ खुद को भूलकर कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ उठाए उन्हें निभाने के लिए अपनी जिंदगी भी भूलकर जीते हैं। सुधा भी उनमें से ही एक है। भाई के जन्म के समय माँ दुनिया छोड़ गई और तभी से सुधा के नन्हे कंधों पर छोटे भाई बहन और घर की जिम्मेदारी लद गई। कंधे बड़े होते गए और उसके साथ ही जिम्मेदारी का बोझ भी।

पढ़ चला। सुबह जल्दी उठकर पिता की सेहत, उनकी खत्म होती दवाइयों की चिंता करते हुए बाहर से पानी भरना, रसोई में खाने की तैयारी, भाई बहन को जगाकर स्कूल के लिए तैयार करना और इसी बीच खुद भी ऑफिस के लिए तैयार होकर निकलना उसका रोज का काम था। भागते दौड़ते ही कुछ खा लिया तो भला, नहीं तो ना सही। इन कामों के बीच समय को पकड़कर रखना उसका सबसे मुश्किल काम होता, क्योंकि कुछ भी करती लेकिन समय उसकी पकड़ में ही ना आता और वो रोज ऑफिस में लेट होकर डांट खाती। सुधा भी क्या करती, समय पर निकलने की कोशिश धरी ही रह जाती। वो बस खुद से यही कहती कि एक दिन सब ठीक हो ही जाएगा। लेकिन एक रोज जब वो मुंबई की भारी बारिश में भीगते हुए किसी तरह ऑफिस पहुंची तो मैनेजर ने उसके हाथों से फाइल लेकर सीधे शब्दों में उसे कहा, मैं सुधा, अब आपको आने की जरूरत नहीं है, हमें आपके जैसे लोग नहीं चाहिए। सुधा कुछ पल के लिए खड़ी रह गई, आंखों से आंसू बहने ही वाले थे कि वो चुपचाप ऑफिस से निकल गई। आसमान में बादल गरज रहे थे और उसके मन में भी लाखों सवालों की गरज जारी थी कि अब सब कैसे होगा। तेज बरसती बारिश उसकी आंसुओं को भी बहाती ले जा रही थी। उसने भगवान का धन्यवाद किया कि कम से कम आज इस बारिश के कारण उसे आंसू छुपाने की जरूरत तो नहीं पड़ी।

0: गीत सुधा को पसंद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: पर भाई बहन के फीस और घर के बाकी खर्चे भी सिर बाए खड़े रहते। नौकरी ढूंढने की इस कवायद में एक शाम सुधा बहुत थक गई।

तो मरीन ड्राइव पर जाकर बैठ गई। सामने उफनता समुद्र था और डूबता हुआ सूरज। हवा में हल्की नमी थी और उसके मन में ढेरों सवाल। थोड़ी देर चुप बैठकर वो सामने ताकती रही, फिर धीमे से उसने कहा, भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया है? उस रोज खुद को संभाल कर जब वो घर पहुंची, तब भी उसकी मायूसी परिवार से छुपी नहीं थी। उसे छोटे भाई सौरभ ने हाथ में चाय पकड़ाकर कहा, दीदी आप चिंता मत करो, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। छोटी बहन सरला ने गले लगाकर कहा, दीदी आप सबसे स्ट्रांग हो। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा हिम्मत मत हारना। परिवार का ये साथ भी क्या कम था। अगली सुबह एक उम्मीद लिए आई। फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। सुधा ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से एक शांत आवाज आई, मिस सुधा जी, मैं चंदन बोल रहा हूँ। हमारी कंपनी में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, आप आ जाकर ऑफिस में मिलिए, मैं आपके नंबर पर एड्रेस भेज रहा हूँ। सुधा को जैसे यकीन नहीं हुआ, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो आप सुन रही है ना, आज आप कितने बजे आएंगी? जी हाँ, मैं 2 बजे आकर मिलती हूँ, थैंक यू। सुधा ने फोन रख दिया। कुछ सेकंड वो बस खड़ी रही, फिर अचानक उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई जो काफी दिनों से गायब थी। वो दौड़ती हुई अंदर गई, पापा मुझे नौकरी मिल गई। छोटे भाई बहन उछल पड़े, पिता की आंखें भर आई और घर में बहुत दिनों बाद सुकून महसूस हुआ। उस दिन सुधा को लगा कि शायद जिंदगी ने उसे फिर से एक मौका दिया है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप

0: हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

सुधा को नौकरी मिल गई और एक बार फिर वही सब जद्दोजहद शुरू हो गई। वो एक बड़ी कॉरपोरेट फर्म थी जहां हर चीज समय और अनुशासन पर चलती थी। वहां देर से आना सिर्फ गलती नहीं माना जाता था बल्कि लापरवाही समझा जाता था। पहले हफ्ते ही सुधा को ये समझ आ गया था, पर वो भी क्या करती, जैसे पूरी कायनात उसे लेट करवाने पर तुली रहती। कभी जल्दी निकल जाए तो भाई बहन के स्कूल से कोई कॉल आ जाता, या कभी पिता की तबीयत का कुछ ऐसा हाल होता कि उसे देर हो ही जाती। सुधा का बॉस रमेश का स्वभाव बाकी मैनेजर्स जैसा सख्त तो नहीं था, लेकिन वह अनुशासन को लेकर बहुत स्पष्ट था। बहुत कम बोलता था, लेकिन जो कहता था वो सीधा और साफ होता था। एक दिन मीटिंग के दौरान जब सुधा थोड़ी देर से पहुंची तो सभी की नजरें उस पर टिक गई। वो हल्का सा झेपते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। मीटिंग खत्म होने के बाद रमेश ने उसे अपने केबिन में बुलाया। सुधा थोड़ी घबराई हुई अंदर गई। रमेश अपनी फाइलों से नजर उठाकर उसे देखने लगा। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने शांत आवाज में कहा, आप देर से क्यों आती हैं मैं सुधा? सुधा ने सिर झुका लिया। सर, घर में कुछ जिम्मेदारियां हैं, कभी कभी समय पर निकल नहीं पाती। रमेश ने कोई प्रतिक्रिया तुरंत नहीं दी, बस उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, कंपनी के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं? ये सुनकर सुधा के चेहरे पर हल्की बेचैनी आ गई। उसने धीमे से कहा, मैं कोशिश कर रही हूं सर। रमेश ने फाइल बंद करते हुए कहा, कोशिश काफी नहीं होती मिस सुधा, नतीजे चाहिए होते हैं। सुधा कुछ नहीं बोल सकी, वो चुपचाप सिर झुकाए बाहर निकल गई। उसने अपनी कोशिशें बढ़ा दी ताकि वो समय पर पहुंचा करे। उसने घर के काम को रात में ही पूरा करने की ठान ली। ऐसा करते करते एक दिन सुधा के उठने का समय हो गया और वो सोने की बजाय काम में ही लग गई। वो ऑफिस भी समय से पहुंच गई। आराम न करने के कारण उसकी हालत जरा खराब होने लगी, पर वो ऑफिस का काम पूरा करती रही। जब ऑफिस की छुट्टी हुई और सुधा बाहर निकली तो उसे अचानक चक्कर आ गया और वो सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। ऑफिस से बाहर निकलते हुए रमेश की नजर उस पर पड़ी तो सुधा का हाल जानने उसकी ओर बढ़ गया। सुधा को ध्यान से देखते हुए रमेश ने पूछा, मिस सुधा, आप ठीक हैं? सुधा आवाज सुनकर अचानक उठने की कोशिश करते हुए बोली, जी सर, लेकिन चक्कर के कारण वो ठीक से खड़ी नहीं हो पाई और लड़खड़ा गई। रमेश ने उसे संभालते हुए कहा, अरे संभालिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं सर, मैं बस थोड़ी देर बैठ के चली जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, आप चलिए। रमेश ने अपने ड्राइवर को इशारा किया और दोनों ने सुधा को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। सुधा ये मदद लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अभी उसकी हालत ही कुछ ऐसी थी कि वो कुछ सोचने या कहने की स्थिति में नहीं थी। कुछ ही देर में रमेश और सुधा डॉक्टर के सामने थे। सुधा की नब्ज देखते हुए डॉक्टर ने पूछा, ठीक से सोती हैं? जी। कितने घंटे? 3-4 बस। और बीती रात? नहीं सो पाई। क्यों, कुछ परेशानी है? सुधा कुछ भी नहीं बोली, लेकिन रमेश समझ गया कि ऑफिस समय से पहुंचने के कारण ही ये नींद नहीं ली गई है। डॉक्टर ने ज्यादा सलाह और कम दवाइयों के साथ उन्हें रवाना किया। रमेश ने बाहर आते ही सुधा से कहा, मिस सुधा, आपको कल आने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, मैं समय से आया करूंगी, आप काम से मत निकालिए। सुधा बेचैन सी उठी। मैं सुधा,

आपको सेहत ठीक करने के लिए कल की छुट्टी दी जा रही है। आगे आपको आना है और पूरी कोशिश करना है कि समय पर आना है, लेकिन ऐसे भी नहीं आना है कि अगले दिन छुट्टी ही देनी पड़े। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, ड्राइवर आपको घर छोड़ देंगे। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू, आपने इतना किया ये भी बहुत है, कहकर सुधा जाने को हुई कि रमेश ने पास से गुजरते एक ऑटो को रोककर सुधा को उसमें बैठने के लिए कहा। सुधा बैठने में हिचकिचाने लगी क्योंकि ऑटो में घर जाना मतलब फिजूल खर्च। तभी रमेश ने उसके हाथ में 500 का नोट देते हुए कहा, घर तक जाइएगा, ये राइड कंपनी की तरफ से है। हाँ, और जो बच जाए कल वापस कर दीजिएगा। जी सर, सुधा ने इतना ही कहा और ऑटो आगे बढ़ गया। सुधा को अपनी तबीयत अभी से ठीक लगने लगी क्योंकि उसके मन में एक अच्छा सा एहसास था। दिन रात सभी का ख्याल रखने वाली सुधा ने कभी नहीं सोचा था कि कोई कभी उसका भी ख्याल रखेगा।

एक दिन बाद जब सुधा ऑफिस पहुंची तो उसने रमेश का रास्ता देखना शुरू कर दिया। आज वो समय से जरा ही देर से आई थी। हालांकि अब तो ऑफिस के लोग सुधा को मिस लेट लतीफ बुलाने लगे थे और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सुधा कब आती है। उस दिन रमेश ऑफिस ही नहीं आया और सुधा अपने काम में व्यस्त हो गई। एक दिन ना आने के कारण थोड़ा काम भी बच गया था। वो देर तक रुककर काम करती रही। आधा ऑफिस खाली हो चुका था। देखते ही देखते पूरा ऑफिस खाली हो गया। सुधा को लगा था कि उसका काम आज पूरा हो ही नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही सुधा ने अपना काम 8 बजे पूरा किया कि वो खुशी से चिल्ला उठी और हाथ हवा में उठा के झूमती हुई खुद को शाबाशी देती हुई जोर से बोल उठी, यस शाबाश सुधा, हो गया ना काम। अरे भाई सुधा, तू चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सारे लोग जा चुके थे इसलिए सुधा को लगा कि वो ऑफिस के अंदर अकेली ही है। चौकीदार भैया बाहर ही होते हैं इसलिए वो यूं बेफिक्र खुशी से झूम रही थी कि अचानक उसे केबिन के दरवाजे पर खड़ा रमेश नजर आया, जो उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। सुधा को ऐसे झूमते देखकर वो भी हैरान था और उसके इस बचपने पर रमेश को हंसी भी आ रही थी। सुधा ने जैसे ही रमेश को देखा वो झेप गई। हड़बड़ी में अपनी चेयर में बैठने की कोशिश में वो गिरते गिरते बची। रमेश ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, अरे अरे मिस सुधा, ये भी क्या आपके विक्ट्री डांस का हिस्सा है? सॉरी सर, मुझे लगा कि ऑफिस में कोई नहीं है। आई एम सॉरी सर। सुधा शर्म से आंखें ही नहीं उठा पा रही थी। रमेश ने हंसते हुए कहा, आज तक तो काम को लेकर ऐसी खुशी किसी भी एम्प्लॉय की नहीं देखी। कीप इट अप। अपने काम को लेकर खुश होने में क्या बुराई है? आप जितना खुश रहेंगे कंपनी भी उतनी आगे बढ़ेगी मिस सुधा। थैंक यू सर। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, रमेश ने गंभीर होकर कहा। जी सर। सुधा ने चौंक कर अपनी आंखें उसकी ओर लगा दी। काम के चक्कर में अपनी नींद कम मत कीजिएगा, क्योंकि आप बाहर सिर पकड़कर बैठने से ज्यादा विक्टर डांस करती हुई अच्छी लगती हैं। रमेश ने मुस्कुराकर कहा तो सुधा ने झेपते हुए शर्मा कर नजरें झुका ली। अब आपको घर जाना है या नहीं? जी सर, बस अभी जा रही हूँ, कहकर सुधा ने सामान उठाया और जल्दी से बाहर निकल गई। रमेश मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। अपना काम पूरा करके थोड़ी ही देर में रमेश भी बाहर निकला। देखा तो तेज बारिश हो रही थी और सुधा ऑफिस के बाहर ही खड़ी हुई थी। आप अब तक नहीं गई? सर मैं छाता भूल गई, थोड़ी बारिश कम हो जाए तो निकलूंगी, सुधा ने बारिश की ओर देखते हुए कहा। मिस सुधा ये लीजिए, कहते हुए रमेश ने अपना छाता आगे किया। पर सर आप भी तो। मैं तो गाड़ी से जाने वाला हूँ, अगर आप कहें तो आपको हम कहीं ड्रॉप भी कर सकते हैं। नहीं सर, इतना ही बहुत है, मैं कल वापस ला दूंगी। और हाँ, आपके उस दिन के 235 रुपए बचे थे तो वो, कहते हुए सुधा ने बैग में हाथ डाला कि रमेश ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं वो आप आज जाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, ऑफिस में आपने ओवरटाइम किया है तो इतना तो बनता है। सुधा और कुछ कहती इसके पहले ही रमेश गाड़ी की ओर बढ़ गया। सुधा भी छाता खोलकर बारिश का सामना करते घर की ओर निकल चली। अगले दिन ऑफिस की छुट्टी थी और सुधा घर के कामों में लगी थी। उसकी नजर बार बार छाते की ओर जाती और वो पिछले दिन की बातें याद करके मुस्कुरा उठती।

सुधा अपनी सोच में गुम थी कि सरला घर से निकलते हुए बोली, दीदी रश्मि के घर से नोट्स लेकर आती हूँ, इसे ले जाऊं, कितना प्यारा है। कहते हुए उसने वही छाता उठा लिया। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये किसी और का है, तू मेरा छाता ले जा। वो टूटा छाता, उसे ले जाने से अच्छा तो मैं भीगती हुई चली जाऊंगी, सरला ने नाराज होते हुए कहा। अरे आज बनवा दूंगी, तू बुरा मत मान। ये ले जाने दो ना, सरला ने जिद की। बिल्कुल भी नहीं, कहकर सुधा ने सरला के हाथ से छाता छीन लिया और ऊपर रख दिया। सरला लूटकर अंदर चली गई और सुधा ने मन ही मन सोच लिया कि अब की तनख्वाह मिलने पर सरला के लिए एक छाता भी ला देगी। पिता दोनों बहनों की बहस देख रहे थे। उन्होंने सुधा को निराश देखकर उदास स्वर में कहा, मैं तेरा घर बसाने की अपनी जिम्मेदारी तो पूरी नहीं कर पाया, उसकी जगह इस घर को चलाने की जिम्मेदारी भी तुझ पे ही डाल दी, माफ करना मेरी बच्ची। अरे पापा आप ऐसा क्यों कहते हैं, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए और जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुधा पिता को समझाकर वापस घर के कामों में लग गई। उसका ध्यान अब छाते से हट चुका था। मन एक बार फिर सवालों की गलियों में भटकने लगा। किसी भी तरह सरला और सौरभ को काबिल बनाना है, जिससे वो खुद अपने पैरों पर खड़े होकर लायक बने। सुधा तो ज्यादा पढ़ नहीं पाई, इसलिए उसके सामने छोटी छोटी नौकरी करने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। रोज की तरह अगली सुबह जल्दी उठी और पानी भरने के बाद पिता को दवाई देने उनके पास पहुंची तो पिता का माथा तपता हुआ पाया। वो कराह रहे थे। सुधा घबरा गई, जल्दी से उनका टेम्परेचर और बीपी चेक किया और डॉक्टर अंकल को कॉल किया। उन्होंने कुछ फर्स्ट एड उपचार बताने के बाद 9 बजे क्लिनिक आने के लिए कहा। सरला पिता के पास बैठकर माथे पर गीली पट्टी रखने लगी और जल्दी जल्दी थोड़ा कुछ खाने के लिए भी बना दिया। ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में सभी को उसी दिन बुलाया गया था। सुधा पापा के डॉक्टर के पास पहुंची। गीतों भरी कहानी ये श्रृंखला जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: सुनते हैं आगे की कहानी। सुधा पापा के डॉक्टर

पास पहुंची, वहां उन्हें दिखाकर दवा लेकर उन्हें घर छोड़ने आई। फिर सरला को पापा के पास बिठाकर जल्दी ऑफिस भागी। पड़ोस की संजना दीदी को हिदायत दी कि वो भी बीच बीच में देखते रहें और कोई भी बात हो तो तुरंत कॉल कर दें। ऑफिस पहुंची तो वो आज 2 घंटे लेट हो चुकी थी। रमन ने उसे देखते ही कहा, सुधा आज तो रिकॉर्ड ही बना दिया, बॉस ने मिलने के लिए कहा है। अपना सामान डेस्क पर रखकर सुधा सीधे रमेश के केबिन में पहुंची। रमेश काम में व्यस्त था, उसने सुधा को बैठने का इशारा किया। इस चुप्पी ने तो सुधा की जान ही निकाल दी थी। रमेश ने अपना वो काम पूरा किया और पूछा, आज इतनी देर क्यों? सर, पापा की तबीयत, कहते हुए सुधा का गला रूंध गया और वो आगे कुछ ना बोल सकी। तो आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? आप जानती हैं कि आप इन्फॉर्म करके घर पर रह सकते थे, पर आपने 2 घंटे बाद ऑफिस आना चुना, लेकिन एक छोटा सा फोन कॉल करना ठीक नहीं समझा, क्यों? सर, मैंने सोचा कि संभाल लूंगी, सुधा ने रूंधे स्वर में ही कहा। क्या संभाल लेंगी आप? ना आप फोन उठा रही हैं, ना आप कुछ बता रही हैं। आप अक्सर देर से आती हैं, हमें आदत है, लेकिन इतनी देर, भगवान ना करे, लेकिन अगर आपको रास्ते में कुछ हो जाता, मान लीजिए उस दिन की तरह चक्कर आ जाता, तो पता कैसे चलता? हम तो यही सोचेंगे कि आप देर से आती हैं और घर के लोग सोचेंगे कि आप ऑफिस में हैं। जानती हैं पिछले 1 घंटे से मैं कितनी टेंशन में हूं, आप फोन भी नहीं उठाती हैं। सब कुछ अकेले संभालने की जरूरत नहीं होती है मिस सुधा, हम सब हैं। सुधा कुछ नहीं बोली, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। आखिर वो बस इतना ही बोल पाई, सॉरी सर। डॉक्टर ने क्या बताया है, रमेश ने पूछा, तो सुधा ने सारी बात उसे बता दी। रमेश ने उसके सामने एक फाइल रखी और कहा, आप इस प्रोजेक्ट में मेरी टीम में हैं, मीटिंग दोपहर में है, तब तक पढ़ लीजिए, कोई भी सवाल हो तो मीटिंग में पूछिए। सुधा ने फाइल उठाकर हां में सिर हिलाया और बाहर जाने के लिए पलटी कि रमेश ने पूछा, आप सैंडविच खाती हैं? जी, सुधा ने सवालिया लहजे में पूछा। ठीक है, चाय या कॉफी? सर, मिस सुधा, मेरी टीम का फिट होना भी मेरे काम का हिस्सा है, कुछ सीखिए राघव से, ऑफिस फंड से ही रोज नाश्ता करता है। सुधा ने जब आश्चर्य से रमेश की ओर देखा तो रमेश ने मुस्कुराकर हां में सिर हिलाया और उसकी मुस्कान से सुधा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बाहर निकलकर भी सुधा के चेहरे पर वो मुस्कान कायम रही।

सुधा की तरह ही समय भी पंख लगाकर ही उड़ रहा था। अब सुधा घर के साथ साथ ऑफिस के काम को भी सहजता से संभालने में जुटी रहती थी। ऑफिस उसे अब अच्छा लगने लगा था। उसकी नजरें ऑफिस में रमेश को ही ढूंढा करती, लेकिन वो सामने आता तो सुधा घबरा जाती। सुधा रमेश के प्रोजेक्ट में जी जान से जुटी थी। रमेश सुधा को हिदायत दिया करता कि वो काम में मदद ले लिया करे, लेकिन सुधा की तो आदत थी कि वो सब कुछ अकेले ही संभालना चाहती। रमेश ने सुधा को प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी भी सौंप दी थी। रमेश और सुधा इस प्रोजेक्ट के कारण काफी समय साथ ही बिताते। एक रोज घर से टिफिन लाते हुए सुधा रमेश के लिए भी खाना ले आई। जब लंच टाइम में रमेश के सामने उसने उसका टिफिन रखा तो रमेश आश्चर्य से उसे देखने लगा। सुधा ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराकर चल दी। रमेश ने टिफिन वापस देते हुए उसे यही कहा कि बहुत दिनों बाद घर का खाना खाया, थैंक यू। प्रोजेक्ट के सिलसिले में ही रमेश और सुधा एक रोज मीटिंग में गए तो लौटते वक्त वहाँ पास ही सागर के किनारे टहलने लगे। रमेश से बातों बातों में सुधा ने पूछा, सर आपको घर का खाना इतना पसंद है तो आप लाते क्यों नहीं? क्योंकि घर में कोई है ही नहीं। सुधा ये सुनकर कुछ बोल नहीं पाई। उसने बैग से निकाल कर अपना टिफिन रमेश के हाथ में दे दिया। आज देने से क्या होगा, रोज लाओ तो बात है, कहते हुए रमेश समुद्र के किनारे ही बैठकर टिफिन खोलकर खाने लगा।

सुधा उसे आश्चर्य से देखती हुई बोली, सर आपको ऐसे खाते हुए देखने के लिए तो मैं रोज ला दूंगी। ये कहकर सुधा हंस पड़ी। तुम्हें ऐसे हंसता देखने के लिए मैं रोज ऐसा कर सकता हूँ, रमेश ने सुधा की ओर देखते हुए संजीदा होकर कहा। सुधा ने नजरें झुका ली। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था, जिसे दोनों समझते थे और इशारों में कह भी दिया करते थे, लेकिन बात खुलकर कोई भी नहीं कर रहा था। पर अब रमेश ने सोच लिया कि वो सुधा को अपनी जिंदगी में पूरी तरह शामिल करना चाहता है और उसने इसके लिए तैयारी भी कर ली थी। उसने ठान लिया कि अगले ही दिन वो सुधा से अपने दिल की बात कह देगा।

अगले दिन जल्दी ऑफिस आकर रमेश सुधा का इंतजार करने लगा। न सुधा आई न उसका फोन लगा। चंदन ने बताया कि सुधा ने छुट्टी ली है। रमेश बेचैन सा रहता, लेकिन उसे लगा कि सुधा के साथ इतना कुछ लगा रहता है कि क्या किया जा सकता है। हफ्ते भर बाद चंदन ने बताया कि सुधा ने ऑफिस में काम छोड़ने की अर्जी दे दी है। रमेश को तो कुछ समझ ही नहीं आया। चंदन ने साथ आया एक खत भी रमेश को दिया। जब रमेश ने खत खोला तो उसमें लिखा था, सर इंसान चाहता क्या है और होता क्या है, आपसे एक छोटा सा वादा किया था कि आपके लिए रोज टिफिन लेकर आऊंगी, लेकिन ये भी नहीं कर पाऊंगी। मैं अपने परिवार के साथ मुंबई से बाहर जा रही हूं। पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि ना कुछ कह पाई ना समझ ही पाई। पर अच्छी बात यह है कि जिनसे शादी हो रही है वो पापा के साथ साथ सरला और सौरभ को भी साथ रखने के लिए तैयार है। कम से कम इन दोनों का भविष्य अच्छा हो जाएगा। कुछ बन जाएंगे तो अपने मन की कर पाएंगे, वरना परिस्थिति कहां किसी की सुनती है। माफ कीजिएगा, मिलने नहीं आ पाई। बस यही तमन्ना है कि आपके घर में कोई आ जाए

जो आपको रोज टिफिन बनाकर दे, आप ये कोशिश कीजिएगा। सुधा। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। काश उसने सुधा से अपने दिल की बात पहले ही कह दी होती। काश वो उसके पिता से ही बात कर लेता, वो भी तो उसके परिवार को अपनाना चाहता था। पर अब इतनी देर हो चुकी थी, रमेश के मुंह से केवल इतना ही निकला, सुधा तुमने कम से कम मुझे इतना अपना तो समझा कि मेरी खुशियों को भी अपनी खुशी मानकर अपने साथ ही न्यौछावर कर दिया।

बार फिर भागते शहर मुंबई में जीवन की जद्दोजहद के बीच एक और प्रेम कहानी अधूरी रह गई। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे रिद्धि चौरड़िया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। वाचन नेहा शर्मा का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती द्वारा प्रसारित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं FM बैंड 103.7 MHz पर। इस समय शाम के ठीक 5 बजे हैं। युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

जिंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होगा, हर हाल में आगे बढ़ना है, हर मुश्किल से टकराना होगा। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं युवाणी, मैं हूँ कंचन रोशन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की बात से, लोक कलाएं। जी हाँ दोस्तों, लुप्त होती लोक कलाओं को बचाने और संवारने में जो युवाओं की भूमिका है वो निश्चित रूप से बहुत ही महत्व रखती है। युवा, हम सब इन कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए डिजिटल मीडिया का उपयोग, कार्यशालाओं का आयोजन और नया सृजन कर सकते हैं और इसी रूप में इन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार किया जा सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ग्रामीण कलाकारों को सीधे दुनिया से जोड़ना भी हम कर सकते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में लोक कला से जुड़े जो प्रशिक्षण शिविर यानी कि ट्रेनिंग के कैंप लगाए जा सकते हैं और कार्यशालाएं भी चलाई जा सकती है। पारंपरिक गुरुओं से सीखकर इन कलाओं को आधुनिक तकनीक के साथ मिलाना भी एक बहुत बड़ी टेक्निक में शामिल होगा और एक बहुत अच्छी ट्रिक भी। हस्तशिल्प और लोक कला उत्पादों के लिए ऑनलाइन बाजार तैयार किया जा सकता है जो आज के समय में बहुत ही आगे बढ़ने वाला एक प्रयास होगा। कलाकारों को उनके काम का सही दाम दिलाना ताकि वह इस कला को छोड़े नहीं, इन्हें बनाए रखे और आगे बढ़ाए, ये भी हमारे अस्तित्व और हमारी लोक कलाओं के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास बन सकता है। साथ ही फ्रेंड्स, पारंपरिक डिजाइनों को आधुनिक कपड़ों, घर की सजावट और फैशन में इस्तेमाल करना भी एक अच्छा प्रयास कहा जा सकता है जिसको लेकर हम लोक कलाओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं। दोस्तों, निश्चित रूप से लोक कला को बढ़ावा देने बचाने में हमें अपने प्रयासों की आहुति लगानी होगी।

तभी हम हमारी लोक कलाओं और लोक कलाकारों से जुड़ी जो हमारी हम यूँ कहें कि धरोहर है उसे बचाए रख सकेंगे। अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का ये सॉन्ग।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, अब बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया योजना की, जो भारत सरकार की एक पहल है जिसे 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है देश में नए विचारों, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। निश्चित रूप से हम इसके लिए आधिकारिक स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर जाके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बात करें पात्र स्टार्टअप को शुरुआती वर्षों में इनकम टैक्स से छूट मिलती है। इस प्रकार के बहुत से लाभ इसके तहत शामिल है। दोस्तों, पेटेंट आवेदन फीस में जो 80% तक की छूट का भी इसमें प्रावधान है। इसके साथ तेजी से इस प्रक्रिया को कंप्लीट भी किया जाता है बिना किसी भारी परेशानी के। श्रम और पर्यावरण कानूनों का स्व प्रमाणन भी यानी कि सेल्फ सर्टिफिकेट भी मिलता है। इसके साथ ही व्यापार शुरू करने और बढ़ाने के लिए बीज फंड यानी कि सीड फंड और वित्तीय सहायता भी इसके तहत दी जाती है। दोस्तों, अगर हम बात करें पात्रता की, तो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या पार्टनरशिप फर्म इसके तहत आवेदन कर सकते हैं। साथ ही कंपनी को बने हुए 10 वर्ष से कम समय हुआ हो, सालाना जो टर्नओवर है किसी भी वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए से अधिक ना हो, व्यवसाय नया हो और किसी उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा के विकास से भी जुड़ा ना हो। इसके साथ ही जो इसके योग्य और इच्छुक उम्मीदवार हैं वह पंजीकरण प्रक्रिया यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को भी विस्तार से इसी पोर्टल पर जान सकते हैं। साथ ही सीड फंड स्कीम के बारे में भी अधिक जानकर इसके तहत लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई स्टार्टअप इंडिया योजना की। अब हम यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: श्रोताओं, ईमेल पर प्राप्त फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद, जो कि अभी तक युववाणी के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार को प्रसारित किया जा रहा था, यह कार्यक्रम 1 जनवरी 2026 से मंगलवार के स्थान पर प्रत्येक गुरुवार को शाम 5 बजे युववाणी के अंतर्गत ही प्रसारित किया जाएगा।
3: भारत में नया स्टार्टअप शुरू करने के जो कानूनी नियम हैं और सरकार द्वारा मिलने वाली वित्तीय मदद है, उसके बारे में हम और भी जानेंगे। दोस्तों, पहले सुनते हैं गुरु फिल्म का ये सॉन्ग।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: दोस्तों, हम बात कर रहे थे भारत में नया स्टार्टअप शुरू करने के किस प्रकार से कानूनी नियम हैं, साथ ही सरकार द्वारा मिलने वाली क्या मदद इसके तहत दी जा सकती है। दोस्तों, भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए आपके स्टार्टअप को बहुत से नियमों से गुजरना होता है। उनमें से अगर हम बात करें, आपका जो बिजनेस है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी कि LLP या पार्टनरशिप फर्म के रूप में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। साथ ही साधारण प्रोप्राइटरशिप को स्टार्टअप मान्यता नहीं मिलती, यानी कि एकल स्वामित्व वाली जो फर्म्स हैं उनको ये स्टार्टअप के तहत मान्यता नहीं दी गई है। साथ ही कंपनी के रजिस्ट्रेशन या निगमन की जो तारीख है वो 10 वर्ष से अधिक समय की नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में कंपनी का कुल टर्नओवर 100 करोड़ तक होना चाहिए, इसके साथ ही इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही बिजनेस का उद्देश्य किसी नए उत्पाद, प्रक्रिया, सेवा का विकास, नवाचार या व्यावसायिक सुधार होना चाहिए। पुरानी कंपनी को विभाजित या पुनर्गठित करके बनाया गया बिजनेस भी इसके तहत मान्य नहीं किया गया है। अगर हम बात करें वित्तीय मदद किस प्रकार से दी जाती है, तो जो मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं उनको सरकार बहुत से चरणों में बड़ी योजनाएं चलाते हुए मदद प्रोवाइड करवाती हैं। ये योजनाएं शुरुआती आइडिया या प्रोटोटाइप स्तर पर मदद करती हैं ताकि आपके पास काम शुरू करने के लिए शुरुआती पूंजी हो। 20 लाख तक का अनुदान अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास या उत्पाद परीक्षण के लिए ये राशि नॉन रिफंडेबल होती है। इसके साथ ही स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स नाम से दी जाने वाली सहायता के रूप में हम बात करें तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा प्रबंधित ये फंड सीधे स्टार्टअप में पैसा नहीं लगाता, बल्कि सेबी पंजीकृत अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को पैसा देता है जो आगे चलकर योग्य स्टार्टअप में बड़ा निवेश करते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तीसरी स्कीम की, तो बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्टार्टअप को बिना किसी कोलेट्रल यानी बिना कोई संपत्ति गिरवी रखे के क्रेडिट या लोन की सुविधा दी जाती है, जिसकी गारंटी सरकार खुद लेती है, जिसे क्रेडिट गारंटी स्कीम भी कहते हैं। इसके साथ ही यदि आपका स्टार्टअप छोटे स्तर का है तो आप बिना किसी गारंटी के शिशु यानी कि 50,000 तक, किशोर यानी कि 5 लाख तक और तरुण यानी कि 10 लाख तक का श्रेणी में आने वाला ऋण लोन के तहत ले सकते हैं, जो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिया जाता है, जिसके बारे में हम सब अच्छे से जानते भी हैं। दोस्तों, निश्चित रूप से इस प्रकार की जो योजनाएं हैं वो स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है और हमें भी इन सब चीज़ों को लेकर जागरूक होते हुए अपने आसपास भी उन लोगों को जागरूक करना चाहिए जो कि इनके बारे में कम जानते हैं। अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

मेडिटेशन, संतुलित व सात्विक आहार, व्यायाम और प्रशिक्षण से भी राहत दी जा सकती है। किस प्रकार? प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मेडिकल प्रभाग ने दावा किया है कि उपरोक्त सभी जो तत्व हैं वो वर्षों तक शोध और रिसर्च कर एक ऐसी तकनीक विकसित की जा रही है जिसे थ्री डायमेंशन हेल्थ केयर प्रोग्राम फॉर हेल्थ हेल्दी माइंड हार्ट एंड बॉडी प्रोग्राम नाम दिया गया है। दोस्तों, इसके तहत हृदय रोगियों के लिए उनके सेंटर स्थित शांतिवन परिसर में 10 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। संस्थान में सेवाएं दे रहे वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश कुमार रिसर्च कर इस पद्धति को विकसित करते हुए बताते हैं कि इसके तहत काफ़ी हद तक लोगों को फ़ायदा हुआ है और हद तक फ़ायदा प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार की मेडिटेशन, संतुलित आहार और व्यायाम को ध्यान में रखते हुए अपनी जीवन शैली में सुधार करके, जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बीमारियां जो हमारे सबसे बड़ा सिर दर्द हम यूँ कहें कि आज का ज्वलंत मुद्दा कहा जा सकती है हमारी मानव सभ्यता के लिए, उनको अगर हम मेडिटेशन के माध्यम से संतुलित आहार को अपनाकर ठीक कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हमें इस प्रकार के प्रयास अपने जीवन में अप्लाई करने होंगे और इन प्रयासों के लिए दूसरों को भी मोटिवेट करना होगा। इन्हीं विचारों के साथ अब युवाणी का समय हो चला है समाप्ति की ओर। आपकी दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 5:30 हुआ चाहते हैं। महिलाओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

मेला जगत सुनने वाले सभी सखियों को रेडियो सखी डॉक्टर सुनीता का प्यार भरा नमस्कार। सखियों लेकर हाजिर है आपका अपना मन भावन कार्यक्रम, और आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं चर्चा से। चर्चा का विषय हमने रखा है आयकर दिवस। प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस जो है वो मनाया जाता है। आयकर जैसा कि इसका नाम है कि जो हम नागरिक कमाते हैं उसके ऊपर जो हमें थोड़ा बहुत टैक्स देना होता है वही हमारी आय के ऊपर लगने वाला कर है। इसको 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए ब्रिटिश सरकार ने इसको लागू किया था, और ब्रिटिश सरकार ने जो लागू किया था उसके बाद इसमें जो है मॉडिफिकेशन, इसमें बदलाव होते रहे और जो आयकर अधिनियम है वो बदलते रहे, और हम जो है हमारी आय के ऊपर होने वाले कर का भुगतान करते हैं अगर हमारी आय जो है वो आयकर सीमा से जो है अधिक है। तो थोड़ी बहुत जो इनकम होती है उसके ऊपर हमें कर नहीं देना पड़ता है, और एक निश्चित जो आय है जो जिसको हम आवश्यकता से अधिक का आकलन मानते हैं उसके ऊपर ही हमें जो है कर देना पड़ता है। तो हर साल 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है।

और यह दिन जो है देश में कर प्रणाली की शुरुआत, करदाताओं के योगदान के सम्मान और राष्ट्र के विकास में होने वाला जो उसका महत्व है उसको याद करने के लिए समर्पित है। यही वह महीना होता है जब हमारी जो इनकम टैक्स रिटर्न भी हम जिसको आजकल कॉमन बोलते हैं, आयकर जो भुगतान हम बोलते हैं, वो इस महीने में ही आमतौर पर लास्ट जो दिन रखा जाता है। तो इसे पहली बार 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में पेश किया गया और 1857 कि जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो नुकसान हुआ वही इस दिन इस आयकर का जो है कारण बना और आयकर विभाग द्वारा आधिकारिक रूप से 24 जुलाई 2010 से हर वर्ष इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई। तो देश के ईमानदार करदाताओं के प्रति आभार प्रकट करना भी इस दिन का जो है वो बड़ा महत्व है, जिनका पैसा राष्ट्र निर्माण में और जनहित कार्यों में लगता है। कहीं ना कहीं हम जो कर देते हैं वो विकास कार्यों में ही लगता है। नागरिकों को समय पर टैक्स भरने और देश की आर्थिक प्रगति में भागीदारी निभाने के लिए उनको प्रेरित करना भी है, ताकि वो स्वेच्छा से अपनी आय के ऊपर होने वाले कर का भुगतान करें और अगर आयकर सीमा में नहीं है तो वो सूचना देवें कि उन्होंने कितना कमाया है, जिससे पता लगे कि हमारे देश की जो विकास की गति है वो किस प्रकार से चल रही है और पर कैपिटा इनकम कितनी हो रही है, पर जो कर्मचारी हैं, जो महिलाएं भी आजकल बढ़ चढ़ के बिजनेस भी करती हैं, नौकरी भी करती हैं, तो वो सब जो डेटा है वो भी गवर्नमेंट के पास जाता है इनकम टैक्स रिटर्न भरने से। तो राष्ट्रीय आयकर दिवस ये जो दिन है 1860 में जो जेम्स विलियन ने शुरू किया, आयकर जो लागू किया था, वो आज तक निरंतर चलता आ रहा है। भले ही इसके प्रावधान बदले गए हैं, भले ही इसका प्रारूप बदला है, परंतु इसको बंद नहीं किया गया। तो भारत में आधुनिक आयकर व्यवस्था की जो नींव 1860 को पड़ी थी, वर्तमान में लागू जो आयकर अधिनियम 2025 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है, जिसने 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 का स्थान ले लिया है। कहने का मतलब क्या है कि जो आयकर अधिनियम 2025 में निर्धारित हुआ है वर्तमान में वही लागू है। आइए आपका कराते हैं मनोरंजन और सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

सो क्यों अब चर्चा करेंगे आयुष्मान भारत जो हमारी भारत सरकार की योजना है और ये प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5,00,000 तक का निशुल्क और कैशलेस इलाज जो है वो प्रदान करती है। आयुष्मान भारत के जो मुख्य जो लाभ हैं इस योजना के वो गंभीर बीमारियों के इलाज और अस्पताल में भर्ती होने पर जो है ₹5,00,000 तक का स्वास्थ्य बीमा इस योजना से मिल जाता है और योजना में शामिल होने के लिए अस्पतालों में इलाज के दौरान एक भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। जो सभी खर्चे हैं वो दवाइयाँ की लागत जाँच ऑपरेशन सहित जो भी है वो परिवार को ही लाभ मिलता है और योजना से मिलता है। इसमें पैसा हाथ में रखने की जरूरत नहीं है। घर बैठे भी आसानी से हम देख सकते हैं कि हमारा नाम इस योजना में शामिल है या नहीं। उसके लिए आधिकारिक वेबसाइट आयुष्मान भारत PMJAY पर जाएं, अपना मोबाइल नंबर और राशन कार्ड या आधार नंबर का उपयोग करके MI एलिजिबल क्या मैं पात्र हूँ सेक्शन में जाएं और वैकल्पिक रूप से आप टोल फ्री हेल्पलाइन अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर है 1455 पर कॉल करके भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर ये कार्ड नहीं बना हुआ है तो इसको कैसे बनाएं? अगर हम पात्र हैं इस योजना से लाभ लेने के लिए तो हमें नज़दीकी ई मित्र केंद्र पर जाना है जिसको हम CSC सेंटर भी कहते हैं। आधिकारिक जो मोबाइल ऐप हैं जैसे आयुष्मान ऐप है उसके जरिए हम खुद को एनरोल कर सकते हैं। सरकारी अस्पतालों या आरोग्य केंद्रों पर जाकर संपर्क करके वहाँ भी हम हमारा पंजीकरण करा सकते हैं और घर बैठे हमारे जो स्मार्टफोन है उसकी मदद से भी आयुष्मान कार्ड जो है बना सकते हैं और नए सदस्यों का नाम अगर जोड़ना है तो वो भी हम जोड़ सकते हैं। तो उसके लिए भी पूरी जो प्रक्रिया है वो हमें जो इंटरनेट के ऊपर मिल जाती है और इस प्रकार से आयुष्मान कार्ड अगर नहीं बना हुआ है तो हम बना सकते हैं। आइए आपका फिर से कराते हैं मनोरंजन और सुनाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
3: सखियों, अब हम चर्चा करेंगे मॉनसून पर। बारिश का मौसम चल रहा है और बहनों को चाहिए मेकअप बाहर निकलें, फंक्शन में जाएं, शादियों का जो सीज़न है वो भी चला हुआ है, तो कैसे हम अपने आप को मेंटेन करें। तो इसके लिए बरसाती मौसम में हमें चाहिए कि हम हैवी और जो लेयर वाला मेकअप है उसको करने से हम बचें, क्योंकि उमस बहुत होती है इन दिनों में और नमी के कारण मेकअप जो है वो बहने लग जाता है और पसीने से चेहरा भी चिपचिपा हो जाता है। तो इस मौसम में हमें हल्का बेस जो है प्रयोग में लाना चाहिए और वाटरप्रूफ अगर हमारे जो उत्पाद हैं वो हैं तो बहुत ही अच्छा है, जिनके ऊपर पानी का असर नहीं हो। तो कम से कम ऐसे प्रोडक्ट्स का हमें यूज़ करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि मेकअप से तो हमें करना ही है। तो भारी फाउंडेशन हमें नहीं लगाना चाहिए और ज़्यादा कवरेज वाले या मोटे क्रीम बेस जो फाउंडेशन है उससे अगर हम दूर रहेंगे तो हमारे जो रोम छिद्र हैं वो भी बंद नहीं होंगे और जो हमारी स्किन है वो हेल्दी बनी रहेगी। इनकी जगह पर हमें चाहिए कि हम मॉइस्चराइज़र या जो हल्के जो क्रीम है उनका उपयोग हम पहले ही कर लें। वाटरप्रूफ उत्पादों का अगर हम चयन करते हैं, जैसे काजल हो गया, लाइनर हो गया, मस्कारा हो गया, तो वो बारिश में फैलेगा नहीं और हमेशा वाटरप्रूफ आई मेकअप और ट्रांसफ़र जो प्रूफ लिपस्टिक है उसको हमें चुनना चाहिए। मेकअप से पहले चेहरे पर भारी क्रीम की बजाय हमें जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए और मैटिफाइंग प्राइमर हमें लगाना चाहिए, जिससे अतिरिक्त जो तेल है वो भी हमारा नियंत्रित रहे। सखियों, हमें चाहिए कि इन दिनों में हम कम पाउडर का इस्तेमाल करें, क्योंकि बारिश के मौसम में चेहरे पर बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट पाउडर अगर हम थोपेंगे तो इससे हमारा जो चेहरा है वो पैची दिखेगा और बेजान दिखेगा और पाउडर नज़र भी आएगा। तो सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से टी जोन पर ही हमें हल्का पाउडर लगाना चाहिए, अधिक पाउडर का उपयोग नहीं करना चाहिए। आइए अब कराते हैं आपका मनोरंजन और सुनाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो क्यों घड़ी की सुइयां कार्यक्रम समाप्ति के समय की ओर इशारा कर रही हैं, तो रेडियो सखी डॉक्टर सुनीता को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी महिलाएं सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में घोषणा की थी कि पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। इस बीच संसद परिसर में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
2: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
3: लगभग दो घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है।
4: डिमांड है तीन, उनमें से दो डिमांड कॉम्पेंसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उन पे सरकार पॉजिटिव है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे सदन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। उधर लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। इससे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
5: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उससे जुड़ी घटनाएं भारत के लिए गहन चिंता का विषय हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से ही भारत संघर्ष में शामिल पक्षों अमरीका और ईरान के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार के साथ लगातार संपर्क में है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं।
7: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
8: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
7: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: आइए सुनते हैं चंद फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की पहली पेशकश किशोर कुमार की आवाज में फिल्म का नाम सौतन की बेटी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, फिल्म का नाम शिकार।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आवाज़ एक बार फिर मोहम्मद रफ़ी की, फ़िल्म का नाम तीसरी मंजिल, प्रोग्राम की आखिरी पेशकश।

0: मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी नागौर के चिरबी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रस्तुत है लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिएगा बाला शर्मा का गाया ये लोकगीत।

0: अभी आप माटी के स्वर कार्यक्रम में कालूराम प्रजापति का गया लोकगीत सुन रहे थे। इसके साथ माटी के स्वर कार्यक्रम का समय अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। उसके बाद 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: पैनल लग चुके हैं, आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। नीट पेपर लीक प्रदर्शन मामले पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि, संसद में भी गतिरोध जारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 3 केमिकल पार्क बनाने के लिए भव्य रसायन योजना को मंजूरी दी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने नशा मुक्ति के लिए महीने भर का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए और राज्य के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में अगले 2 दिन कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने कल सभी जिलों के लिए बरसात का अलर्ट जारी किया। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहित कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज दूसरे दौर की बातचीत नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद ये वार्ता हुई। सरकार की ओर से सीजेपी की 2 शर्तों को स्वीकार करने के बाद ये बातचीत आगे बढ़ी। सीजेपी की ओर से सौरभ और आशुतोष राका ने श्री नड्डा को अपनी मांगे बताई। इसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने और हाल ही में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग शामिल है। मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर आज एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में सुधारों को संस्थागत रूप से देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर कड़ी निगरानी रखेगी और नियमित रूप से इसकी समीक्षा करती रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक सख्त विधेयक लाने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने कहा कि देश भी यही चाहता है और विधेयक के पारित होने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि यदि

0: विपक्ष इस मुद्दे पर संसदीय कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे देश के युवाओं के गुस्से का सामना करना पड़ेगा।
1: नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के चर्चा नहीं कर पाए, हम तो आज भी फिर से अपील किया है। हमने आज भी, राहुल गांधी जी खुद सदन में थे, तो हमने कहा कि आप बहस तुरंत शुरू कराइए। कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया कि वो बहस में इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली। अब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट करने वालों का जो सबसे प्रमुख चेहरा है सोनम वांगचुक जी, उन्होंने भी अनशन तोड़ के अपने बात रख दिया कि अब चर्चा होना चाहिए। मेरे ख्याल से अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी। संसद के दोनों सदनों में आज पांचवें दिन भी हंगामा जारी रहा। नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा को लेकर तथा अन्य विषयों पर विपक्ष के शोर शराबे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद दोनों सदनों के कामकाज पर सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार सत्र के पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, किंतु विपक्ष बिना किसी ठोस शर्त के चर्चा में भाग नहीं ले रहा है। राज्यसभा में विपक्ष के शोर शराबे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने वंदे मातरम बिल पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 1264 करोड़ रुपए की मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों को बैठक के अहम निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने देश में 3 समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए भारत औद्योगिक विकास रसायन भव्य रसायन योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना की घोषणा 2026-2027 के केंद्रीय बजट में की गई थी। इसके तहत 3 प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जल संचय और जल भागीदारी पर जोर दिया है। श्री शर्मा आज जयपुर में आयोजित राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नवाचारों से राजस्थान जल प्रबंधन के क्षेत्र में राष्ट्रीय मॉडल बनेगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक जल प्रबंधन और हर घर जल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम जल सेतु लिंक परियोजना, ऐतिहासिक यमुना जल समझौते और नर्मदा अवार्ड समझौते ने प्रदेश में जल सुरक्षा के नए युग की शुरुआत की है।
2: दूसरा हमारा एमओयू हुआ और वो हुआ यमुना समझौते का। यमुना का पानी हमें कैसे मिले, तो हमने केंद्र में भी बात की, हरियाणा के उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर साहब और हम बैठे और उसमें हमने फरवरी के महीने में एमओयू हमें उसका किया। और आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और अभी हमारा यमुनाओं का एमओए भी हो गया और उसमें हमको पाइपलाइन के द्वारा पानी मिलेगा, उसकी डीपीआर भी बन गई, अगले कुछ दिनों में उसका भी शिलान्यास होने वाला है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। नशा मुक्त राजस्थान के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज जयपुर में नशा मुक्ति अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन और भावी कार्य योजना को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को इसके लिए जल्द परिपत्र जारी करने और नशा मुक्ति के लिए राज्य में महीने भर का विशेष अभियान चलाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति के लिए सभी स्तरों पर जवाबदेही तय की जाए। श्री बागड़े ने कहा कि विश्वविद्यालयों में मादक पदार्थों के सेवन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने सीमा क्षेत्र में ड्रोन से नशीले पदार्थों को भेजे जाने पर चिंता जताते हुए इस संबंध में जल्द प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज कोटपुतली पहुंचे। उन्होंने राजकीय बीडीएम अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। चिकित्सा मंत्री ने विभिन्न वार्डों का भी परीक्षण किया।

0: और अधिकारियों के साथ बैठक कर चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि चिकित्सा केंद्र पर डॉक्टरों की कमी नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए संसाधनों की कमी भी नहीं होनी चाहिए।
1: मेरा दो चीजों का फोकस है, नंबर एक चाहे सब सेंटर है, चाहे पीएचसी है, सीएचसी है, एसटीएच है, डीएचएच है, मेडिकल कॉलेज है, इम्पोर्टेंट चीज ये कि डॉक्टर्स की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज जो है, हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी लेवल का जो हॉस्पिटल है उसके अंदर जो अलॉटेड इक्विपमेंट है उसकी कमी होनी चाहिए। कुछ स्पेशलिस्ट भी डॉक्टर्स चाहिए थे, हमने नोट कर लिया, हम जल्दी देंगे।
0: बांसवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल में आज से हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव सखी व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई है। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी परिवारों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व संबंधी सर्वे की आखिरी तारीख बढ़ाकर 26 जुलाई कर दी है। आयोग के सचिव अशोक कुमार जैन ने इस बारे में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर सर्वे का काम पूरा करने को कहा है। गौरतलब है कि राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप के माध्यम से 10 जुलाई से शुरू हुआ सर्वे का काम 23 जुलाई तक करीब 70% ही पूरा हो पाया है। इसे देखते हुए सर्वे की अवधि को बढ़ाया गया है। इस बीच भीलवाड़ा में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार के स्तर पर निकाय चुनावों से जुड़ा काम पूरा कर लिया गया है।
2: राज्य सरकार के स्तर पर नगर निकायों के चुनावों को लेकर जितना काम किया जाना था, चाहे वो निकायों की सीमा वृद्धि का मामला हो, चाहे उनके पुनर्सीमांकन का मामला हो और चाहे वार्डों के पुनर्गठन का मामला हो, वो सारे के सारे काम हम 2026 की शुरुआत में पूरे कर चुके हैं। हमारा एक प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में वार्डों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन को लेकर लंबित था, उसका फैसला भी राज्य सरकार के हक में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है।
0: राज्य के पूर्वी और पूर्वी दक्षिणी हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में गरज चमक के साथ बरसात का अलर्ट बताया है। साथ ही कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। बीते 24 घंटों में भी राज्य के पूर्वी और पश्चिमी भागों में मध्यम से तेज पानी बरसा। बांसवाड़ा में आज सुबह से ही बरसात का दौर बना हुआ है। माही डैम में पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। भीलवाड़ा में भी रिमझिम बारिश हो रही है। पाली जिले के सादड़ी, देसूरी और नानबेड़ा सहित कई जगह पिछले तीन दिनों से बारिश का सिलसिला रुक रुक कर बना हुआ है। जवाई बांध सहित विभिन्न स्रोतों में पानी की आवक लगातार जारी है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कल सभी जिलों में येलो और जालौर तथा सिरोही में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
3: दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा मानसून ट्रफ लाइन भी दक्षिणी राजस्थान से होकर गुजर रही है। इस सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में खासकर राज्य के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिम भागों में कहीं भारी बारिश दर्ज की गई है। अभी भी दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर संभाग और आसपास के क्षेत्रों में अगले दो तीन दिन कहीं भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं राज्य के बीकानेर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में भी आगामी दिन या दिन में गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश की
0: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2026 आयोजित की गई। बोर्ड की ओर से महिला और बाल विकास विभाग में 72 पदों के लिए ये परीक्षा ली गई। सभी निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर एक पारी में ये परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीट पेपर लीक प्रदर्शन मामले पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि, संसद में भी गतिरोध जारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 3 केमिकल पार्क बनाने के लिए भव्य रसायन योजना को मंजूरी दी। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने नशा मुक्ति के लिए महीने भर का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। और राज्य के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में अगले दो दिन कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने कल सभी जिलों के लिए बरसात का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से अजमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसकी लेखिका है नीलिमा दादिज। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे अजमेर जिले में पिछले महीने विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य

0: कृषि और जनसेवा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण गतिविधियां रहीं। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त मिली, विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में नई सुविधाएं जुड़ी और विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए गए। आइए जानते हैं पिछले महीने की प्रमुख गतिविधियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी की। इसके तहत अजमेर जिले के लगभग 1,65,000 किसानों के खातों में सहायता राशि पहुंची। इस अवसर पर तबीजी स्थित राष्ट्रीय बीजीय अनुसंधान केंद्र में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं जिले के सभी ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम हुए, जहां किसानों ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना और योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले दिनों केकड़ी के दौरे पर रहे। कृषि उपज मंडी समिति परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने आम जन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नसीराबाद सरवाड़ केकड़ी देवली राज्यमार्ग के फोरलेन परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास किया। साथ ही केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में 1200 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। अजमेर के हाथीखेड़ा क्षेत्र में बालिका सैनिक स्कूल के निर्माण कार्य का पिछले दिनों शुभारंभ हुआ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भूमि पूजन किया। लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये विद्यालय समग्र शिक्षा अभियान के तहत विकसित किया जाएगा। परिसर में शैक्षणिक भवन, छात्रावास, प्रशासनिक भवन, खेल मैदान, परेड ग्राउंड और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पुष्कर क्षेत्र में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने काठोदा और पालड़ी गांवों में 2,28,00,000 रुपए से अधिक लागत की विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें दोनों गांवों के उप स्वास्थ्य केंद्र और काठोदा की संपर्क सड़क शामिल है। इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं और आवागमन की सुविधा को मजबूती मिलेगी। राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में रोबोटिक सर्जरी सुविधा का शुभारंभ किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसका उद्घाटन किया। इस सुविधा के शुरू होने से जिले के मरीजों को आधुनिक सर्जरी की सुविधा स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद पर हनुमान सिंह राठौड़ ने कार्यभार संभाला। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष पद रिक्त होने के बाद सदस्य लेफ्टिनेंट कर्नल सेवानिवृत्त केसरी सिंह राठौड़ को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। आयोग में डॉ. आनंद और डॉ. दीपक कुमार ने नए सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदरसिंदरी ने शोध और नवाचार के क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल की है। विश्वविद्यालय को नेचर इंडेक्स 2026 रिसर्च लीडर रैंकिंग में देश के शीर्ष संस्थानों में 79वां स्थान मिला है। वहीं शैक्षणिक संस्थानों की श्रेणी में विश्वविद्यालय ने 67वीं रैंक हासिल की है। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार जिले में शहरी सेवा शिविरों का आयोजन जारी है। शिविरों में पट्टे, नामांतरण, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और अन्य विभागों से जुड़े मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले में विभिन्न स्थानों पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस लाइन मैदान में हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, विद्यार्थियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने योगाभ्यास किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में आयुर्विज्ञान की मानकीकृत सिंधी शब्दावली तैयार करने के लिए 5 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से चिकित्सा विशेषज्ञ, भाषा विशेषज्ञ और शिक्षाविद भाग ले रहे हैं। कार्यशाला में चिकित्सा विज्ञान से जुड़े लगभग 6,000 अंग्रेजी और हिंदी शब्दों के मानक सिंधी पर्याय तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अजमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, नीट पेपर लीक प्रदर्शन मामला माथे कॉकरोच जनता पार्टी रा नुमाइंदा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मिल्या। संसद माई अड़चन चारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल देश में 3 केमिकल पार्क बनावन सारू भव्य रसायन योजना ने मंजूरी दीनी।

0: राज्यपाल हरिभाव बागड़े नशारी लत न जड़ो खत्म करण सारू महीना भर रो खास अभियान चलावन रा हुकम दीना और प्रदेश रा उगनी और लंकाऊ हलका माए आवता दो दिन कछे कछे जबरदस्त बारिश रा आसार मौसम विभाग काल प्रदेश रा सगला जिला माए बरसात सारू चेतायो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह समेत भाजपा रा कई नेताओं और कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी रा नुमाइंदा बीच आज नई दिल्ली माए दूजा दौर री मीटिंग हुई। न्यारी न्यारी परीक्षावां माए कथित गड़बड़ियां रे खिलाफ नौजवानों री अगुवाई माए करिया जा रहा विरोध प्रदर्शन बीच आ बातचीत करी ची। सीजेपी रा नुमाइंदा सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दीपके और दीपक बलियान शांति सागे प्रदर्शन करण वाला रे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करण और हाल ही माए भी परीक्षावां माए गड़बड़ियां रो नुकसान झेल रहा विद्यार्थियों रा परिवारों ने मुआवजो देवन री शर्तां सरकार कानियों मान्या पाछे बातचीत री सहमति जताई। खबर नवी संसागे बातचीत करता था का स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कहो के सरकार काल प्रतिनिधि मंडल सागे एक और दौर री चर्चा करेला। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पेपर लीक मामला पाछे सुधार लागू करण रा काम जुड़ियो हलफनामो दाखिल करण रा हुकम दीना है। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधेरी पीठ ई मामला री सुनवाई करता थका कहो के हलफनामा माए सुधारा ने संस्थागत रूप देवन सारू करी जा जतन री साफ जानकारी देवनी चाहिए। पीठ कहो के वा ई मामला माए कड़ी निगरानी राखता थका लगातार इनरो जायजो लेवेला। ई मामला माए आगली सुनवाई 27 जुलाई ने भेला। इबीजे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षावां माए गैर वाजिब साधन काम लेवण रोकण सारू करड़ो बिल लावण माए कोई मोड़ो नी करण माथे जोर दीनो है। संसद परिसर माए खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका रिजिजू कहो कि देश री आई मर्जी है और ओ बिल पास वेवण माए कोई अड़चन नी आवनी चाहिए। वह कहो कि सरकार विद्यार्थियों रो भविष्य सुरक्षित राखण सारू कई खास जतन कर रही है। रिजिजू कहो कि गर विपक्ष ई मुद्दा माथे संसदीय कार्रवाई माए अड़चन पैदा करेला तो वान देश रा नौजवाना री रीस रो सामो करनू पड़ेला।
1: नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के चर्चा नहीं कर पाए, हम तो आज भी फिर से अपील किया है। हमने आज भी राहुल गांधी जी खुद सदन में थे तो हमने कहा कि आप बहस तुरंत शुरू कराइए। कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया कि वो बहस में इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली। अब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट करने वालों का जो सबसे प्रमुख चेहरा है सोनम वांगचुक जी, उन्होंने भी अनशन तोड़ के अपने बात रख दिया कि अब चर्चा होना चाहिए। मेरे ख्याल से अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इबीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेपर लीक उंजुड़िया मामला नी सुनवाई सारू फास्ट ट्रैक कोर्ट बनावन रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा फैसला री सराहना कीनी है। खबर नवीसा सागे बातचीत करता था कहां वे कहो के अदालता माए मामला नी सुनवाई रोजीना फैला। संसद रा दोन्यू सदना माए आज लगातार पांचवां दिन हंगामो भयो। नीट पेपर लीक मामला और दूजा मुद्दा माथा चर्चा री मांग न लेर विपक्ष रा सदस्यां रा शोर शराबा बीच लोकसभा और राज्यसभा री कार्रवाई बार बार टालनी पड़ी। ई पाछे दोन्यू सदना री कार्रवाई सोमवार ताई टाल दी री जी। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुए ताई संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहो कि सरकार सत्र रा पहला दिन हुई नीट पेपर लीक मामला माथे चर्चा सारू तैयार ही, पण विपक्ष बिना ठोस शर्त चर्चा माए शामिल नहीं भे रियो है। राज्यसभा माए विपक्ष रा शोर शराबा बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय वंदे मातरम बिल पेश कीनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सदारत माए आज केंद्रीय मंत्रिमंडल री माली मामला नी समिति री मीटिंग हुई। इनमाए प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान रातेत रेल नेटवर्क बधावन सारू 1264 करोड़ रुपया री मल्टी ट्रेकिंग परियोजना ने मंजूरी दी री जी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव खबर नवी

0: سن میٹنگ مائی کری جا خاص خاص فیصلہ نے جانکاری دینی وہ بتاؤ کہ منتری منڈل دیش مائے تین سمرپت رسائنک پارک بناون سارو بھارت اودیوگک وکاس رسائن بھویہ رسائن یوجنا نے منجوری دینی ای یوجنا رو اعلان چالو مالی سال را کیندری بجٹ مائی کری چیو ہو ان تے تین پلگ اینڈ پلے کیمیکل پارک بنایا چاویلا मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पानी भेड़ो करण माथे जोर दिनो है वे आज जयपुर माए राखी जिया राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव माए बोल रहा है शर्मा कहो के नुआ नुआ काम कह रहे राजस्थान पानी रा प्रबंधन रा हल्का माए राष्ट्रीय मॉडल बनेला वह कहो के पानी रा बेहतर प्रबंधन और हर घर ताई पानी पुगावन माथे सरकार रो खास ध्यान है मुख्यमंत्री कहो कि राम जल सेतु लिंक परियोजना ऐतिहासिक यमुना जल समझौता और नर्मदा अवार्ड समझौताओं राज्य में पानी री उपलब्धता तय करण रा नुआ दौर री शुरुआत हुई है।
1: दूसरा हमारा एमओयू हुआ और वो हुआ यमुना समझौते का। यमुना का पानी हमें कैसे मिले तो हमने केंद्र में भी बात की हरियाणा के उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर साहब और हम बैठे और उसमें हमने फरवरी के महीने में एमओयू हमें उसका किया और आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और अभी हमारा यमुनाओं का एमओयू भी हो गया और उसमें हमको पाइपलाइन के द्वारा पानी मिलेगा उसकी डीपीआर भी बन गई अगले कुछ दिनों में उसका भी शिलान्यास होने वाला है।
0: ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। प्रदेश माए नशारी लत न जड़ू खत्म करण सारू खास अभियान चलायो चावेला राज्यपाल हरिभाव बागड़े नशा मुक्ति अभियान ने असरदार तरीकाओं लागू करण और ई सारू कार्य योजना रो जायजो लेवन बाबत आज जयपुर माए राखी जी मीटिंग माए महीना भर रो खास अभियान चलावन बाबत हुकम दीना वह कहो कि नशा मुक्ति सारू हर लेवल माथे जवाबदेही तय करी जावनी चाहिए। श्री बागड़े कहो कि विश्वविद्यालय में आई नशीली चीजा काम लेवन वाला रे खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जावनी चाहिए। वह सरहदी हलका माए ड्रोन रे जरिए नशीली चीजा भेजण माथे चिंता जताता थका इनने रोकण सारू असरदार कार्रवाई करण बाबती कहो। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज कोटपुतली रा सरकारी बीडीएम अस्पताल रो दौरो कर वठ व्यवस्थावां रो जायजो लीनो वह न्यारा न्यारा वार्डा रो दौरो कर सुबिता देखा और एहलकारा सागे मीटिंग कर हालात रो जायजो लीनो। चिकित्सा मंत्री कहो कि अस्पताल माए डॉक्टर की कमी नहीं होनी चाहिए। वह कहो कि बेहतर इलाज रा सुबिता सारू साधना री कमी नहीं होनी चाहिए।
2: मेरा दो चीजों का फोकस है। नंबर एक, चाहे सब सेंटर है, चाहे पीएचसी है, सीएचसी है, एसटीएच है, डीएचएच है, चाहे मेडिकल कॉलेज है, इम्पोर्टेंट चीज ये कि डॉक्टर्स की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज जो है, हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी लेवल का जो हॉस्पिटल है उसके अंदर जो अलॉटेड इक्विपमेंट है उसकी कमी होनी चाहिए। कुछ स्पेशलिस्ट भी डॉक्टर्स चाहिए थे, हमने नोट कर लिया, हम जल्दी देंगे।
0: इबीचे बांसवाड़ा महात्मा गांधी जिला अस्पताल में आज घना जोखिम सागे आस वाली महिलाओं रा सुबिता सारू प्रसव सखी व्यवस्था शुरू करी ची। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग जुड़िया परिवारों रा राजनैतिक प्रतिनिधित्व संबंधी सर्वे री आखिरी तारीख बधार 26 जुलाई कर दीनी है। आयोग रा सचिव अशोक कुमार जैन इंबारा माए सगला जिला कलेक्टर ने निर्देश जारी कर सर्वे पूरा करण सारू कहो है। ध्यान जोग है कि राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप रे जरिए 10 जुलाई उ शुरू करी जो सर्वे रो काम 23 जुलाई ताई करीब 70% पूरो फे सक्यो है। चिन्ह ध्यान राखता थका सर्वे री मियाद बधाई ची है। इबीचे नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा भीलवाड़ा माए खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका कहो के राज्य सरकार रा लेवल माथे निकाय चुनाव करावण जुड़ो काम पूरो कर लियो चियो है।
3: राज्य सरकार के स्तर पर नगर निकायों के चुनावों को लेकर जितना काम किया जाना था, चाहे वो निकायों की सीमा वृद्धि का मामला हो, चाहे उनके पुनर्सीमांकन का मामला हो और चाहे वार्डों के पुनर्गठन का मामला हो, वो सारे के सारे काम हम 2026 की शुरुआत में पूरे कर चुके। हमारा एक प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में वार्डों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन को लेकर लंबित था, उसका फैसला भी राज्य सरकार के हक में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा किया जा चुका।
0: अरब मौसम कजरा उगनी और लंका उगनी हल्का माए भारियों घनी भारी बिरखारा आसार है। मौसम विभाग आवता दो दिन माए कोटा भरतपुर और जयपुर संभाग माए बिरखा सारू चेतायो है। कोटा अजमेर उदयपुर जोधपुर और बीकानेर संभाग माए बारिश चालते रहवन रो अनुमान है। लाडला 24 घंटा माए राजरा उगनी और अतुणी हल्का माए जोरदार पानी बरसियो। बांसवाड़ा माए आज ही सवार उई बिरखा बह रही है और माही बंधा माए लगातार पानी आ रियो है। भीलवाड़ा माए छांटो छिड़को बह रियो है। पाली जिला माए सादड़ी देसूरी और नानबेड़ा समेत कई ठोड़ा लाडला तीन दिन रुक रुक कर में बरस रियो है। जिला रा जवाई बांध समेत न्यारा न्यारा बंधा और तलावा माए लगातार पानी आ रियो है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो के काल राज्य रा कई जिला माए बारिश रो येलो और जालौर और सिरोही माए ऑरेंज अलर्ट जारी करी चियो है। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। नीट पेपर लीक प्रदर्शन मामला माथे कॉकरोच जनता पार्टी रा नुमाइंदा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मिलिया। संसद माई अड़चन जारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल देश माए तीन केमिकल पार्क बनावन सारू भव्य रसायन योजना ने मंजूरी दीनी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े नशारी लत न जड़ खत्म करण सारू महीना भर रो खास अभियान चलावन रा हुकम दीना। और प्रदेश रा उगनी और लंकाऊ हल्का माए आवता दो दिन कठे कठे जबरदस्त बारिश रा आसार। मौसम विभाग काल राज्य रा सगला जिला माए बरसात सारू चेतायो। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के ठीक 7 बजे हैं। किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेतीबाड़ी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनेनिया सगड़ा किसान भाया ने बाया ने और नैना नैना टाबरा ने आपरे राकेश भैरा घना हेतु कोडू राम राम। भैया देखो दो तीन दिन हूँ देख रहा हाँ कि इंद्र भगवान मेहरबानी कर रहा है। आज देखो कि सुबह ही है जिको छांटा छिड़का, आज कोई जन अपने सावन री जिकी जड़ी लग गई है ज्यान आज लाग रही है, परसू भी है जिका छोका अपने भरसा करी ही और काले भी हीर आज भी है जिको आको दिन है जिको झिरमिट झिरमिट झिरमराटो चाल रियो है। आ देखो झिरमिट बरसात है नी, आ है जिको जमी चूस लेवे और बीसू है जिकी के खेता के मायने है जिको के कही है कि फसलां जिकी अबार बारानी भाईओड़ी है ब्याने है जिको के जीवन दान मिल गयो, क्योंकि अगर अबार पाँच सात दिन में बरसात नहीं होती तो आपां की जिकी फसलां बे खराब हो जाती, पर इंद्र भगवान है जिको के आपांग माते छोका मेहरबान हुआ और नागौर के आसे पासे कई सब जिला में लगभग है जिको के मानसून आयो है और छोकी बरसात हुई है, पर कटी धीरे कटी तेज कटी घनी कटी कम पर बिरखा जरूर हुई है। वो कहवे ना के अपने डूबता आदमी ने तिनका को सारो घणो हुए, पण आज की थोड़ी घनी छांटा भी हुई है तो बे आपा की जिकी फसला है बारानी ब्याने है जिको के जीवन दान मिलियो और ब्याने हास आ गयो, नहीं तो देखो के पीड़ा पीड़ा पड़न ढूंगा मुरझाऊ ढूंगी क्योंकि तावड़ो भी तो कितो पड़े वो, पण अबे है जिको के ई बरसात है जिको के अबे हरियाली आएगी चारों मेर और ब्यां के है जिकी फसला है ब्यां के माते एक अलग सी चमक आएगी और अबे आपा देखो के चमक वास्ते है जिको कई किसान भाई है जिको अंधा धुंद है जिको अपने छड़कन लाग गया है दवाइयाँ, पर अपा कई दवाइयाँ एड़ी भी है भाया जिको के आपा घरे भी बना सका और कम पैसा भी लागी और बा आपा के नुकसान भी कौन करे। आपा देखो के किसान भाई हाँ आपा आपा ढाव डांडा और खेती दोनों ही करा

खेती तो सगड़ा भाइयों के पीवल है कोनी, बाराणी खेती ज्यादा करे तो लारला 8 महीना आपा बैठा रहे तो भाई आपा का जिका ढाव डंड है बीसु आपा गुजरो निकल जावे। तो आपा ब्यां के जिकी गाय भैंस बकरियां अरबे है ब्यां के ढाव डंड हूँ आपा है जिको छोको मुनाफो कमा सका और ब्यां की जिकी गोबर मींगणिया है ब्यां आपा है जिको छोकी खाद भी बना सका। आज आपा गोमूत्र को महत्व के बारे में आपा थोड़ी चर्चा करा भाई। खेती जगत के मायने है जिको वैज्ञानिक प्रसार अधिकारी और इरमात एक मत है कि भाई रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक प्रयोग जिकी आपा की जमीन खराब हुई है ब्यां को उर्वरक शक्ति बनो उनको एकमात्र उपाय है जिको गोबर और गोमूत्र है। इर उपयोग हुए जिको आपा भूमि का जिका सूक्ष्म और लाभकारी जीवाणु है जिको बढ़ जाया करे, भूमि को जिको प्राकृतिक रूप है जिको वो बनी हो रिया करे और जिकी खराब जमी है बिने भी आ है जिको ठीक कर देवे। कौन कर देवे? गाय को गोमूत्र और गोबर। और इर अलावा है जिको सिंचाई की जिकी कम है जिको जरूरत भी पड़िया करे क्योंकि भूमि के मायने है जिको जल ग्रहण और रोकण की क्षमता भी बढ़ जावे। क्यों बढ़ी? ये सब हो अपन के गोमूत्र और गोबर। सिंचाई वास्ते जिको कम पानी की ही है जिको जरूरत भी पड़े ई मायने, ज़्यादा जरूरत कौन पड़े। और इर अलावा है जिको खेत और गाँव के मायने जिको कूड़ा कचरा को उपयोग भी हो जावे और आ है जिको प्राकृतिक चक्र में आ जाया करे, पर्यावरण में सुधार भी हुए और जिको खाद्यान्न हुए वो पौष्टिक होई और सुस्वाद होई। कीटनाशकों का जिको जहर है वो है जिको के ने क्यों काई हुए आपांगे शरीर ने खराब करे। इर अलावा आपां के जिको डाव डांडा वो चारो खावे, वो चारो है जिको बे खावे तो ब्यान ने भी खराबी करे। कुल मिलार है जिको जिकी पेस्टिसाइड आपा जिका ने किया करे रासायनिक खादा है वे नुकसान ही करया करे। ये अगर आपां गोबर खाद और गोबर गोमूत्र ए आप उपयोग में करा तो आपां के है जिको के शरीर ने खराब कोनी करे। इर अलावा यूं फायदो हो कि आपां के जिका ग्रामीण है ब्याने रोजगार भी मिल जाए, विदेशी मुद्रा की बचत भी होई, देश आपां को है जिको आगे प्रगति की ओर बढ़ी। इर अलावा फसलों के मायने जिको प्राकृतिक पोषक पदार्थ और लाभदायक तत्व मिलता रहे। इर छिड़काव है जिको फसल हरी भरी भी हो जावे, रोगों का प्रयोग जिको प्रकोप है वो प्रयोग करियो है जिको की कम हो जावे। और ए सगली चीज़ा हैं बे आपा ने कटे शहर खरीद लाउन की जरूरत कोनी, सब चीज़ा आपा के गांव में ही मिल जावे और होरी होरी मिल जावे। ई दवा के प्रयोग है जिको आपा मक्का तंबाकू टमाटर दलहन गौर धान सूरजमुखी फल सब्जियां आदि सब फसलामा ते सफलतापूर्वक है जिको ई उपयोग कर देखियो है। यूं सब बढ़िया यूं फायदो है कि आपा को जिको पर्यावरण संतुलन है ब्यान बढ़ोन मायने वो सहयोग है और वो है एकमात्र देसी जिकी गाया है बीरो गोमूत्र है जिको सब उत्तम है। बीज भाइयों पहले भी आपा है जिको गोमूत्र में डुबार अगर भावा तो भी लाभ मिले। देसी गाय के 1 लीटर गोमूत्र ने एकत्र कर और 40 लीटर पानी के मायने घोल और अगर आपा दलहन तिलहन और सब्जी आदि का बीज 4-6 घंटा भिजोर और पचे खेत के मायने जब बुआई करा तो बीरो अंकुरण है जिको छोको होई और जोरदार होई और रोग रहित होई और बीज है जिको जल्दी जमी और गोमूत्र है जिको एक जैविक औषधीय रूप के मायने वो काम आया करे। गोमूत्र कीटनाशक आपा क्या बना भाई के गोमूत्र और तंबाकू के सहयोग आपा है जिको कीटनाशक बना सका। इर वास्ते जिको 10 लीटर गोमूत्र के मायने 1 किलो आपा तंबाकू की सूखी जिकी पत्तियां डाल और बीर मायने है जिको 250 ग्राम नीला थोता घोल 20 दिन तक आपा डब्बा के मायने बंद कर रख देवणो छेजे। 20 दिन के बाद है जिको बिना छाण 1 लीटर दवा है जिको 100 लीटर पानी के मायने घोल और छिड़काव करा तो बालदार सुंडी को जिको विशेष नियंत्रण है जिको यूं हो जावे। इरो प्रयोग आपा दोपहर के बाद करा तो वो ज्यादा फायदेमंद हुए। इर अलावा आपा और दवाइयां बना सका भाई गोमूत्र और लसन की गंधु आपा कीटनाशक को उपयोग कर सका। यूं है जिको रस चूसन वाला कीड़ा है बे कम हो जाए करे और इर बनौन की विधि भी हाव हो रही है कि भाई 10 लीटर गोमूत्र का मायने 1/2 किलो आपा लसन कूट और बीर मायने 50 मिलीलीटर है जिको अपा घासलेट मिला दा और ई मिश्रण ने 24 घंटा पड़ियो रखा और इर पच है जिको इर मायने 100 ग्राम साबु छोको मिलार।

और बारीक कपड़ छान कर और 1 लीटर दवा के मायने 80 लीटर पानी में घोल और सुबह की टाइम और जे छिड़काव करा तो रस चूसक जिका कीड़ा है ब्याने आप फसल बचा सका। और देखो भाई फायदो कितो है और ए दवाइयाँ जे आप छिड़काव करा तो यहाँ में इतनी ज़्यादा अपने परहेज करण की भी जरूरत कोनी क्योंकि आप रासायनिक जे छिड़काव करा नहीं तो बीर मायने तो आपने खूब सारी पहली सावधानी बरतनी पड़े टाबरा ने आगे राखना पड़े आपका ढाव डांडा है ब्याने आगे राखना पड़े ब्याका जिका डब्बा है ब्याने भी आपने है जिको सही है जिको निस्तारण करनो पड़े इरे अलावा जितनी दवाई है बीती ही आप मिलानी पड़े और बी में भी कई सावधानियाँ राखनी पड़े और सब बत्तो इर मायने ओ है कि रुपया घना लागे त्याग मायने की लागे भी कोनी और बे दवाइयां है जिको एक्सपायर भी हो जाओ ब्यां की तारीख है जिको खत्म हो जाओ पर ए दवाइयां है यहाँ की कोई एक्सपायर तारीख कोनी हुआ करे ए तो चालती रहे और ए खराब भी कौन करे और ब्या मायने है जिको के मसीना लानी पड़े इरे अलावा है जिको दस्तानार कई अपने मुंडा केर हाथ केर सब लगाना पड़े यह है जिको इतनी मायने सावधानी की जरूरत कौन रेवे क्योंकि आ है जिको प्राकृतिक है और आपा इन्हें खुद बनावा तो इर मायने इतो आपा के जहर हुए भी कोनी और सब बढ़िया ई मायने ओ रेवे कि आपा की जिकी जमी है वह निरोगी रेवे। तो अबे बाता चिता तो और ही करा अबे देखो कि किसान भाई उड़ीक राखे राकेश भाई कई लाया तो थांगवा से लाई हूँ ओ भजन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: तो भैया ने जरूर दाया यो और अपा पहली बातचीत कर रहा अपने देसी जैविक खेती की और जैविक खाद की और गोमूत्र की और गोबर की। तो यानी आपा है जिको अपा घड़ा विधियों भी आपा है जिको अपने है जिको रासायनिक छिड़काव की जगह घड़ा विधियों आपा है जिको देसी छिड़काव कर सका। ज्ञान एक मिट्टी को घड़ो के तड़ा के मायने पिंदा के मायने छोटो छेद कर और भी मैं पतलो पाइप लगा दा और घड़ा के मायने जिको सब पहली बालू रेत की पतली परत बिछा देनी और बीर पचे जिको तरल पदार्थ को निकास हो सके बीर मायने और बीर बाद है जिको अपने घड़ा के मायने जिको 15-20 सेमी 25 दिन पुराणो गोबर की परत बिछा देनी चाहिए 15-20 दिन पुराणो। इर अलावा है जिको बीर मायने है जिको गोबर की परत के माते 15 सेमी है जिको हल्का सूखा जैविक पदार्थ की परत बिछा दा। इर पचे है जिको पाछो आपाने है जिको गोबर की परत बिछा देनी चाहिए। इ प्रकार घड़ा के ऊपर तक भर जानो है जिको आपाने 10-15 दिन बाद लगभग है जिको 1,000-1,200 केंचुआ है जिको इ घड़ा में छोड़ देनो चाहिए। और इर बाद देखो के कई भाई उड़ीक भी राखे के भाई राकेश भाई आया है कई लाया है तो मैं थांक वास्ते देखो के ओ मैं हूँ तो गांव गांव तेरे जाई जगो नहीं मनोज भाई जी की बंतल करी बात है ते करूँ पूगती लो सुनो।
3: देखो भैया टाइम टाइम शुरू किसानों बातचीत करने वास्ते गाँव गाँव तेरे जाया कर हाँ आज मैं गाँव गाँवली से आया हूँ। एक भाई खेत में खड़ा है और मकान भी पक्को बनेड़ो है। राम राम सा।
4: राम राम सा।
3: गाय नाम है सर तांगो?
4: नाम पतराम जी है।
3: पतराम जी। तो पतराम जी गौली सर गाँव में कितना परसों रहो?
4: गाँव में तो गया 35 साल। तो
3: 35 साल बढ़िया रह रहे हो? तो मतलब पहले
4: बढ़िया पहले रहन था यहाँ तो 100 साल हो गया।
3: हाँ। खेती बाड़ी कितनी कहीं है?
4: क्या थोड़ी है 30-40 बीघा।
3: 30-40 बीघा है? हाँ। 30-40 बीघा 30-40 बीघा खेती है और एक बार खाली चौमा साली फसल लो।
4: हाँ एक फसल ली।
3: कहीं बोया लारली बार?
4: आधे मूंगा आधे बाजरी थोड़ा मोट बाजला में।
3: तो अब की कहीं बाओ?
4: अब का तो विचार तो बाजरी मूंग हुई है।
3: बाजरी मूंग हुई क्या करें पलट पलट बोए?
4: हाँ आधे में मूंग आधे बाजरी भी आन
3: पावा उल्टा सुलटा।

0: और
1: जैविक खेती करो या छिड़काव नाको करो
0: नाका
1: दवाई ना को बाकी जैविक करो भले ही दो तीन साल में उपज कम हुई पर उपज जो की पैदा
0: उपज तो कहीं अभी हरदम खेती पे नहीं थोड़ी खादरी कम रहेगी जो वो वे कुआनी कम हुए वे
1: पचे खाद और गाय दो
0: खादरी तो आई देवा गोबर वाली
1: गोबर वाली गाय कितनी का पंगा
0: गाय है पांच चार एक
1: पांच चार एक गाय बकरियां
0: बकरी रहा कहीं वो ना
1: जने दी के कोने खाले गाय दी
0: के नहीं बकरी हम दी को ना का कुछ नहीं है कोई डाली नहीं ला सके बकरी
1: टोकड़ा टोकड़ी भी है करना
0: हाँ टोकड़ा वे मोटा बना बारह रोई मसेर ना रोई फिर बोग रहे
1: बेचो कोने
0: बेचंग कोने
1: सेवा भाव करो कुल मिलान जितने भाई जाने बैंक चौकी सेवा करो
0: बस
1: नहीं ना क्या करो सांड बनाओ गांव फिर बोग रही चौकी
0: सांड बने मोटा यहाँ पर है आले गौरले हम गाल दे कोई हांड बन जाए
1: गौरले हम गाल दो आपन वजी सापन नु किन दो
0: बस
1: बढ़िया रे बहन तो आप है जान मान लो लार लिवार गाय की पैदावार क्या हुई ठीक है
0: लार लवार तो हुई ठीक ठीक
1: ठीक ठीक है बस ना भेज दी गाय करीब
0: पसला तो बादर घर आ गली मोड़ की भेज दिया
1: मोड़ भेज दिया यार नाम की दियोगा
0: की आया
1: खर्चो निकल जाए कुल मिला घर खर्चो
0: हाँ घर खर्चो साला है हाँ एक बच्चो है वो की मजदूरी करे है
1: आगे भी मिला तो कम टाइम टॉक चल जाए
0: घर खर्चो साला माँ
1: हाँ चल जा चल जा
0: सोमवार से हम खेती कर ला
1: हाँ
0: हाँ मालूम की कम टू कर ला मजदूरी
1: हाँ हो जा
0: यान कर
1: तो गया और कितनी है दान पांच साल थी
0: हाँ
1: तो पांच साल गया वो टाइम को दूध कितनो हुआ
0: दूध तो अपन दे देश गया है जो वे तीन चार एक किला
1: तो ये पांच गया 15 किलो हो जाए
0: हो जाए
1: इतो घर में थोड़ा लगे
0: नहीं नहीं बेचा
1: बेच दो अजय गाय बेचने को डेरी में जाओगे या घर
0: नहीं अपन घर घर ही आ ले जाए
1: घर गांव वाले ले ले
0: गांव वाले घर में आ ले जाए
1: आ जाए अपन खेत में जा ले
0: जाए नहीं या तुम जा डाणी आवे डाणी आ तू बे कन्ना ले जावे ना वो ले जाए
1: अजय गाय कोई रोग वोग लाग गया डॉक्टर ने देखो
0: डॉक्टर ने दिखावा
1: डॉक्टर ने देखो खाना पीना
0: खल
1: कुतर दो और बंटो वो कौन दो
0: बंटो देवा खड़गो
1: बंटो देव खड़गो देव
0: खड़गो देव
1: खल कुतर बंटो दो और गुड़ और अबार कौन दो
0: गर्मी में गुड़
1: क्या बनो भाई ब्याह उतार
0: भाई जन उतार भाई जगन बोल शाम को भी सोए था सुबह पाए था पास सुबह ले बुर्जो बोल शाम को पाए था प्यार पाए
1: वो थोड़ा ठंडे हो जाए अबार गए ना पचे पानी कितनी बार पाओ
0: पानी दिन में तीन बार पिए
1: तीन बार नवाओं पड़े गए ना
0: एक बार नवाओं पड़े
1: पानी पचे पानी गांव में लांगे खेत में को
0: टैंकर और नहीं पानी हमारे सोते शिव है
1: गर्म वो टैंकर की तो है टांगो की तक टैंकर को
0: टैंकर है वो आठ नौ टैंकर है
1: आठ नौ टैंकर को मतलब गांव मंगनो पड़े पानी भरो जो जो
0: वदिशो है
1: कुल मिलार सब पानी की
0: टांग और पीउन मरे
1: हां
0: रोड में जो वदिशो टैंकर मंगा 1000 रुपए में आवे
1: हम्म कुल मिलार गए और दूध बेचो जी को वा टैंकर और पानी सर जाए दूजो
0: करो छोटो
1: मोटो सामान आ जाए काम
0: हो जाए कर सरा
1: तो खेतीबाड़ी के मायने थे नवाचार क्यों मान लो जान मान लो पानी में खेत तळई तंग बनाई को सिंचाई कोने पर बार मान लो चौमासा की फसल बो और कनी कोई फसल में बरसात कम हुए तो खेत तळई बनाई हुए ने
0: वो तो यार है वो के मांगे थोड़ी धरती से में आएगी पानी रपटे कम है
1: अच्छा अच्छा
0: कहीं रेस से में आएगी ना पानी रपटे को नहीं नहीं बस जाऊंगा ले
1: तो ये जड़े ढाल है नहीं बटे भी नहीं बनाओ जो भी मायने लगा जाना आरे ढाल पड़े
0: हाँ यार थोड़ी ढाल है यार बिजी बिजी
1: ये ढाल में बनाओ तो धाम माल तो स्टेकरी माय बड़ा हो जाए नहीं
0: ये तो साले को नहीं हो पानी
1: मान लो पड़े नीचे में लाग जाए
0: तो कहीं करना पड़े थोड़ा बात डो
1: नीचे में
0: पता कहीं मांगे टे उजार करो माने हेड न रहे रोज रे घना रे गया ए काई नजर नहीं दान मां पर फाड़ कटे छोटे को नहीं
1: हां
0: ज्ञान गणो ही
1: जीव जंतु गणा है
0: जीव जंतु गणा है मांगे हिरणो बात है को बे
1: आ हिरणे
0: पसा पसा हिरण बड़ा उबा है
1: हां
0: हां ए ने रोज उबा है
1: हां
0: हां ने तो काई आगे सेवा करा
1: हिरणे के विष्णु यो
0: विष्णु या
1: आपा धर्म ये विषय सोई है
0: मैं
1: धर्म का टापर बाला जो घर का टावर पड़ा जो हिरण ने पड़ो
0: ए देखो ये उबा
1: हां
0: हां ये बार हाल गाल मिले हम हाल गाल
1: मेरे हाथ भी बनिया मांगे ता जो है करना मैंने
0: आवे मांगे तो गरम आवे
1: मैं बारू मोज तो करने ढंग ना जावे
0: मांगे तो गरम आए यार पानी पी फिर से
1: हां हां
0: मांगे तो धर्म है
1: पर ए गाय गांव
0: ए छोटो अजार है स्कूल है बारू
1: बारू तक है
0: बारू
1: काबरे सरकारी स्कूल जावे
0: हां
1: ठीक है सर
0: पोते फटे तो
1: पोते किस क्लास पढ़ाऊं

अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 7:30 हुआ चाहते हैं। लीजिए आप सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जीवन के दुख हमें सुधरने और आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, जबकि जीवन में लगातार सुख कभी कभी हमारे आत्म विकास में बाधा बन सकता है।
3: आपने बहुत सुंदर विचार भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी जी,
3: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
2: भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा,
3: और गाँव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, अनाया गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और बेटी प्रियांशी।
2: अयोध्या धाम से राजबाबू शर्मा, रामबाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे और विनय शंकर पांडे के साथ साथ नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: धन्यवाद आप सबको और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
3: श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के एक अनूठे उत्सव की।
2: अब तक हमने असम, नागालैंड और झारखंड के उत्सवों की चर्चा की, आज रुख करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां का अनूठा उत्सव है कैल पोध। ये उत्सव कर्नाटक राज्य के कुर्ग क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
3: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि कुर्ग भारत के सबसे सुंदर और रमणीय स्थानों में से एक है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ और पर्वतीय प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेती है
2: जी।
3: यहाँ के खूबसूरत कॉफी के बाग दुनिया भर में जाने जाते हैं, इसीलिए कुर्ग को कर्नाटक का स्कॉटलैंड कहा जाता है।
2: इसी कुरुक्षेत्र में रहती है कोडावा जनजाति। कोडावा लोग प्राचीन भारत में योद्धा समुदाय माने जाते थे और इनकी वीरता की गाथाएं वहां की लोक कथाओं में भी मिलती हैं।
4: भारतीय सेना में भी इनका योगदान बहुत अहम रहा है।
2: तो हम बात कर रहे थे कैल पोध उत्सव की। सबसे पहले जानते हैं कि कैल पोध का क्या अर्थ है।
3: श्रोताओं, कैल का मतलब है हथियार या उपकरण और पोध का मतलब है उत्सव, यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। यह हर साल 3 सितंबर को मनाया जाता है, तब तक धान की रोपाई हो चुकी होती है।
2: उस दिन कड़ावा जनजाति के लोग अपने घर से हथियार और कृषि के उपकरण निकालते हैं, उन्हें फूलों से सजाते हैं। फूलों में खासकर फ्लेम लिली फूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो वहाँ प्रचुरता से पाया जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी फ्लेम लिली फूल के बारे में।
3: श्रोताओं, ये भारत, अफ्रीका और एशिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला अत्यंत आकर्षक और दुर्लभ फूल है
2: जी।
3: इसकी पंखुड़ियां तेज लाल और पीले रंग की होती हैं, जो आग की लपट की तरह दिखाई देती हैं। इसी कारण इस फूल का नाम फ्लेम लिली पड़ा
2: जी।
3: कुर्ग की वादियों में जब ये फूल खिलते हैं तो बहुत ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये फूल तमिलनाडु का राजकीय फूल भी माना जाता है।
2: उत्सव के दिन मवेशियों को भी नहला धुलाकर फूलों से सजाया जाता है और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वे खेती बाड़ी के कार्य में सबसे बड़े

0: मददगार हैं।
1: बता दें श्रोताओं कि हथियारों की पूजा से संकेत हिंसा का नहीं है लेकिन सुरक्षा का है।
0: जी,
1: वे हथियारों के प्रति आभार प्रकट करते हैं क्योंकि प्राचीन काल में किसी भी आक्रमण के समय उनके कारण ही यानी हथियारों के कारण ही सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी थी।
0: जी,
1: साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पुराने समय में उन्हें अपने परिवार, पशुओं और गांव की रक्षा खुद करनी होती थी। इसी कारण हथियार उनकी सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बन गए।
0: कैलपौध उत्सव में कृषि उपकरणों का भी सम्मान किया जाता है क्योंकि वे भी खेतीबाड़ी का प्रमुख माध्यम हैं। पूजा के बाद कुरुक्षेत्र में जगह जगह पर समारोह होते हैं। जगह जगह पर विशेष साज सज्जा के साथ मेले लगते हैं। कोडावा समुदाय की वीरता की कथाओं की झांकी प्रस्तुत की जाती है।
1: श्रोताओं, कोडावा संस्कृति से संबंधित चित्रकला और नृत्यों का भी सामूहिक प्रदर्शन होता है। उस दिन कोडावा पुरुष अपनी पारंपरिक पोशाक पहनते हैं जिन्हें चक्कली कहा जाता है।
0: कैलपौध उत्सव के दिन पारंपरिक व्यंजनों की भी भरमार रहती है। चावल की बनी कंड बट्टू विशेष लोकप्रिय है। इस दिन लोग एक दूसरे को फूलों की भेंट देकर सम्मानित करते हैं।
1: श्रोताओं, कैलपौध उत्सव कोडावा जनजाति की योद्धा संस्कृति, कृषि जीवन और गौरवशाली परंपराओं की याद दिलाता है।
0: ये भारत के दुर्लभ उत्सवों में से एक है जहां हथियारों की पूजा हिंसा के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कर्तव्य, सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में की जाती है।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कैलपौध उत्सव कहाँ और किनके द्वारा मनाया जाता है और कैलपौध शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कैलपौध उत्सव कहाँ और किनके द्वारा मनाया जाता है और कैलपौध शब्द का क्या अर्थ है?
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है दो मेंढकों की यात्रा।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक जापानी मनोरंजक हास्य लोक कथा पर आधारित है जिसमें दो मेंढकों की मजेदार यात्रा का वर्णन किया गया है।
1: दो मेंढकों की यात्रा।
2: नमस्कार साथियों, आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं एक मजेदार जापानी लोक कथा। कुछ समय पहले की बात है, जापान में दो मेंढक रहते थे। एक मेंढक ओसाका नगर के पास एक छोटे से खड्ड में रहता था और एक क्योटो नगर के बाहर एक छोटे से तालाब में निवास करता था। एक दिन ओसाका नगर के मेंढक के मन में एक विचार आया।
3: क्या वही शहर, वही गलियां, वही लोग, इस जगह पर रहते रहते अब बहुत दिन हो गए हैं। मुझे जरा बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए।
2: ये संयोग ही था कि उसी समय क्योटो में रहने वाले मेंढक के मन में भी यही विचार आया कि उसे भी बाहर निकलकर कुछ भ्रमण करना चाहिए। अगले ही दिन दोनों मेंढकों ने अपनी अपनी यात्रा शुरू कर दी। दोनों नगरों को जोड़ने वाला एक ही मार्ग था। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। ओसाका के मेंढक ने क्योटो के मेंढक से पूछा,
3: तुम कहाँ जा रहे हो मित्र?
4: मित्र, मैं ओसाका जा रहा हूँ।
3: और तुम? मैं क्योटो जा रहा हूँ।
2: दोनों मेंढकों ने लंबा रास्ता तय किया था। वे बहुत थक भी गए थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना थोड़ा आराम भी कर लिया जाए। वे पास स्थित एक बड़ी सी चट्टान की छाया में जा बैठे और बातचीत करने लगे।
3: यहाँ थोड़ा आराम है, थोड़ा सुस्ता लिया जाए है? तो जरा मुझे भी बताओ कि यहाँ तक की यात्रा कैसी रही?
4: भाई, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। रास्ता बहुत सुंदर है। तुम तो जानते ही हो कि ये चेरी ब्लॉसम का समय है। चारों ओर चेरी के फूलों की भरमार है। और हाँ, जब मैं एक पहाड़ी के पास से गुजर रहा था ना, तो ट्रेन भी देखी। वहाँ रहने वाले एक मेंढक भाई से पूछा तो उसने बताया कि इसे बुलेट ट्रेन कहते हैं। क्या तेज गति थी।

0: जब तक मैं ठीक से देख पाता तो वो गायब हो गई। कहते हैं कि इस ट्रेन से सिर्फ 15 से 20 मिनट में ओसाका से क्योटो पहुंचा जा सकता है।
1: भाई वाह।
0: अब तुम अपनी यात्रा के बारे में भी तो बताओ।
1: मेरी यात्रा भी बड़ी अच्छी गुजरी।
0: अच्छा,
1: पूरे रास्ते में हरी भरी प्रकृति और साफ सुथरे शहर। और हाँ, मैंने भी रास्ते में चेरी ब्लॉसम के फूल देखे।
0: वाह,
1: हल्के गुलाबी और सफेद रंग के ये फूल बहुत सुंदर हैं। सुना है इन फूलों को हमारे देश की पहचान माना जाता है। बहुत अच्छा हुआ जो मैंने यात्रा करने का निर्णय लिया, वरना मैं तो वहीं खड्ड में पड़ा रह जाता।
0: हाँ, ये तो है।
2: दोनों मेंढक एक दूसरे को अपनी यात्रा का हाल सुना रहे थे। अचानक ओसाका के मेंढक के मन में एक विचार आया। वो बोला,
1: मित्र, कितना अच्छा होता यदि हमारा आकार थोड़ा और बड़ा होता।
0: क्यों, आकार बड़ा होने से क्या होने वाला है?
1: आकार बड़ा होने से हमें इतनी यात्रा तो नहीं करनी होती।
0: हैं? वो कैसे?
1: अरे भाई, मैं समझाता। आकार बड़ा होता तो हम किसी भी पहाड़ पर चढ़कर देख लेते कि जहां हम जा रहे हैं वे शहर देखने लायक भी हैं या नहीं।
0: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये काम तो हम अभी भी कर सकते हैं।
1: वो कैसे?
0: अरे वो ऐसे कि हम पास के पहाड़ पर चढ़कर एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपने पिछले पांवों के सहारे खड़े हो जाएं। हाँ, इससे हमारा आकार भी बड़ा हो जाएगा और फिर हम आसानी से उन शहरों को देख सकेंगे जहाँ हम जाना चाहते हैं।
1: भाई वाह।
2: दोनों मेंढक इतने उत्साहित हुए कि वे उछलते हुए पास के एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। दोनों बड़ी मेहनत के बाद एक पहाड़ के शिखर पर जा पहुंचे। लंबी और ऊंची चढ़ाई के कारण दोनों काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे।
1: बड़ा ऊंचा पहाड़ है। पसीने आ गए, चारों टांगे दुख रही हैं।
0: ये तो है। चढ़ते रहो, चढ़ते रहो।
3: बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी। चलो पहुंचे तो सही।
0: वो तो है, लेकिन मित्र मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हाँ, क्योंकि अब हम शिखर से उन शहरों को देख सकेंगे।
3: मैं क्योटो देखूंगा।
0: और मैं ओसाका।
3: क्यों नहीं, चलो
0: चलो।
2: तो साथियों, हुआ ऐसा कि ओसाका के मेंढक ने उछलकर अपने अगले पैरों को क्योटो के मेंढक के कंधों पर रख दिया और क्योटो के मेंढक ने भी ऐसा ही किया। अब दोनों मेंढक अपने पिछले पैरों पर खड़े थे। उनके अगले पैर एक दूसरे के कंधों पर थे। दोनों ने गिरने के डर से एक दूसरे को कसकर पकड़ रखा था।
1: अरे अरे अरे अरे, ध्यान से।
0: चलो।
1: संभल कर।
0: कहीं गिरना पड़े मित्र। ये ठीक है।
3: बचे।
2: यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन दोनों ने एक बात की ओर ध्यान नहीं दिया था कि उन्होंने अपनी पीठ उन्हीं शहरों की ओर कर रखी थी जिन्हें वे देखना चाहते थे। इस प्रकार ओसाका से आया हुआ मेंढक ओसाका को ही देख रहा था और क्योटो से आया हुआ मेंढक क्योटो को।
1: ये क्या, क्योटो तो बिल्कुल ओसाका की तरह दिखाई पड़ता है। अब तुम्हें क्या दिखता है मित्र?
0: क्या बताओ मित्र, मुझे भी ओसाका क्योटो की तरह ही दिखाई दे रहा है।
3: ये तो सचमुच बड़ा धोखा हुआ। मुझे लगता है यहाँ तक आकर मेरा समय ही नष्ट हुआ। मैं तो उसी खड्ड में ही ठीक था।
0: और मैं उसी छोटे से तालाब में ही ठीक था। क्या लाभ हुआ इतनी यात्रा करने से, इतना कष्ट सहने से। चलो चलो यहाँ से।
1: हाँ हाँ चलो।
2: फिर क्या था, दोनों मेंढक अपने अपने घर वापस लौट गए। तो साथियों, अभी आपने सुनी ये जापानी लोक कथा, आशा है आपको पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा सोचिए, इन दो मेंढकों की यात्रा क्यों व्यर्थ हुई? किसी यात्रा से पहले हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसकी एक सूची बनाइए। क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसी हास्य प्रधान लोक कथा है जिससे ये संदेश मिलता हो कि यदि कोई कार्य सोच समझकर नहीं किया जाए तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? जापान के क्योटो और ओसाका शहरों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए और पता लगाइए कि वे क्यों प्रसिद्ध हैं।
4: अभी आपने सुना कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम दो मेंढकों की यात्रा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार मुइनुल हसन नियाजी, वैभव श्रीवास्तव और ममता मलकानी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: आइए अब चलते हैं एक और यात्रा में कार्यक्रम नमक के साथ।
2: इस कार्यक्रम में भारत पाक विभाजन के पश्चात एक स्त्री की यात्रा के बारे में बताया गया है। जब वो पाकिस्तान से भारत आती है, उसने महसूस किया कि बेशक दोनों देशों के बीच सीमाएं खींच दी गई हैं, लेकिन लोगों के हृदयों में आज भी कोई सीमा रेखा नहीं है।
3: खुदा खैर करे राहिल, क्या नाजुक वक्त है।
4: जी,
3: हिंदुस्तान पाकिस्तान ने नेकी, मोहब्बत और रहम दिली सब पर पहरा खड़ा कर दिया। अब देखना, कल मेरी दिल्ली की रवानगी है और दिल है कि कांपे जा रहा है।
4: अरे सफिया बाजी, दिल्ली लाहौर की दूरी ही कितनी है, यहाँ से 10 फलांग। आप तो बेवजह परेशान हो रही हैं।
3: अरे राहिल, इस 10 फलांग ने तो 2 मुल्कों की शक्ल इख्तियार कर ली है। दिल्ली और लाहौर तो उन लोगों से पूछो जिनकी आंखों के पानी में शहर झांकता नजर आता है।
4: बाजी, आप तो अदीब ठहरी, आपसे भला कौन बहस कर सकता है। अरे बाजी, इस पुड़िया में क्या है।
3: नमक, लाहौरी नमक।
4: लाहौरी नमक, आप इसका क्या करेंगी।

0: देख राहिल, अपना पुलिसिया तेवर अपने पास ही रख।
1: और इसमें इतनी हैरानी क्यों है? नमक ही तो ले जा रही हूँ। क्यों भाई, नमक नहीं ले जा सकते क्या?
2: नहीं ले जा सकते बाजी, गैर कानूनी है ये
1: है?
2: और वैसे भी नमक का आप करेंगे क्या? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है।
1: मैं हिस्से बिखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है।
2: मेरी माँ? बाजी, हमारी माँ बंटवारे से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई है। और कौन सी माँ है जो हमारी है?
0: हमारी नहीं राहिल, मेरी माँ। दिल्ली में मुझे एक सिख बीबी मिली, वही छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती है, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह। हमारी अम्मी जैसा कद, अम्मी जैसा भारी भरकम जिस्म, सफेद मलमल का दुपट्टा ओढ़ा करती हैं वो, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह।
2: देखिए बाजी, बंटवारा हुए काफी अरसा बीत गया, अब तक तो वो वहां ठीक से रच बस गई होंगी।
1: लेकिन लाहौर नहीं भूला उनसे राहिल, साटा लाहौर। जब मैं लाहौर तेरे यहाँ आ रही थी तो मैंने उनसे पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। तो मेरी माँ हिचकिचाकर मुझसे बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना।
2: देखिए बाजी, मोहब्बत, जज्बात, आत्मियत, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन नमक, अरे बाजी आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई ना तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। आप कानून तो जानती नहीं।
1: अरे निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के लेकर जाऊंगी क्या? मैं तो दिखा के जता के लेकर जाऊंगी।
2: ओहो बाजी, आप समझ नहीं रही हैं, कानून भी तो कोई चीज है।
1: फिर वही कानून कानून कहे जाते हो क्या? सब कानून हुकूमत के ही होते हैं, कुछ मोहब्बत मुरव्वत इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, क्या एक तोहफा भी नहीं ले जाने देंगे मुझे?
2: ओफो, अब आपसे कौन बहस करे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ बाजी, आप ले जा नहीं पाएंगी ये नमक, और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को जानती कितना है?
1: देख राहिल, कस्टम वालों को जानू या ना जानू, पर इंसानों को थोड़ा बहुत जरूर जानती हूँ। बुढ़िया को कहाँ रखूं? ऐसा करती हूँ कि इनकी टोकरी में नीचे दबा देती हूँ, कोई पहचान भी नहीं पाएगा, कस्टम वाले तो खोज भी नहीं पाएंगे। नमक की पुड़िया मैंने छुपा तो दी, अगर कस्टम वालों ने खोज ली तो? नहीं नहीं, ऐसा करती हूँ मैं ये पुड़िया हाथ में ले लेती हूँ, मैं खुद ही बता देती हूँ उन्हें। हाँ, ये ठीक रहेगा।
2: अच्छा बाजी, अब लाहौर कब आएंगे आप?
0: मालूम नहीं राहिल, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं।
2: अरे कहाँ जा रही हैं बाजी आप?
0: नमक का मोल पूछने।
3: आप
0: कहाँ के रहने वाले हैं?
3: मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी।
1: जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी। वो लोग इधर ही आ गए हैं। आप
3: जी जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है।
1: अब जी ये थोड़ा सा लाहौरी नमक।
3: नमक? देखिए, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। और हाँ, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। और जिन खातून के लिए आप ये नमक लेकर जा रही हैं, उन्हें मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा।
1: जी शुक्रिया।

0: चलो, खैरियत से दिल्ली तो पहुंच गई।
1: आप इधर आइए, इधर आइए।
2: मैं जनाब,
1: आप लीजिए जनाब, अपना सामान चेक कराइए।
2: लो जनाब, देख लो जनाब, हो गया जनाब, जाएं।
1: हाँ ठीक है,
2: ठीक है जी, खुदा।
1: आप भी इधर आइए, सामान।
0: साहब, मैं एक गैर कानूनी चीज, ये देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा।
3: आप इधर आइए।
0: हाँ जी,
4: हमको पूरा बात समझ में आ गया। चाय खाबो?
0: हाँ?
4: माफ कीजिए, चाय पिएंगे क्या आप?
0: नहीं,
4: मैं आपको कमाल का चीज दिखाता हूँ।
0: जी?
4: मेरे पास नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर की ये किताबें। जी हाँ? हाँ, ये मेरे मित्र सुनील दास गुप्ता ने 1946 में तोहफे के तौर पर दिया था।
0: तो साहब, क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं?
4: हाँ, मेरा वतन ढाका है। जब डिवीजन हुआ तभी आए। मैं कोई 12-13 साल का था। ढाका में दोस्तों के साथ नजरुल इस्लाम को खूब मन से पढ़ता था। मेरा वतन ढाका है। और नमक, इसका वतन कौन सा? आपको राज का बात बताऊं? हम डाब आज भी अपने वतन ढाका का ही पीता है। किसी से कहना मत। वतन तो कस्टम वालों का होता है। इंसानों का वतन यहाँ दिल में है, दिल में।
0: सही कहा साहब, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है। मोहब्बत नमकीन भी तो होती है ना साहब। इन आंसुओं की तरह
4: नक्शे पर लकीर खींच देने से जमीन और लोग बट नहीं जाते।
0: ठीक कहते हो साहब।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नमक, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार,
2: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.7 MHz पर। रात्रि के 8 बजने वाले हैं, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

पहले सदन के बाद 12 बजे दोबारा जैसे ही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आज सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रमुख विपक्षी दल का नेता होने के नाते और प्रधानमंत्री के पेपर लीक पर सख्त कदम उठाने की घोषणा के बाद विपक्ष को संसद में इस पर चर्चा कराने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सरकार कठोर कानून बनाने जा रही है, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है और सरकार की मंशा मजबूत कानून लाने की है, तो फिर विपक्ष को चर्चा में सहयोग करना चाहिए। प्रमुख विपक्षी दल के नेता होने के नाते श्री गांधी को इस दिशा में पहल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि चर्चा नहीं होती है तो इसका संदेश गलत जाएगा। श्री रिजिजू के आग्रह के बाद भी विपक्षी दलों ने हंगामा जारी रखा। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए और उन्हें अपनी सीट पर जाना चाहिए। उनका कहना था कि आज महत्वपूर्ण विधेयक है, इसीलिए सदस्यों को अपनी सीट पर जाकर सदन को चलाना चाहिए। हंगामा जारी रहा तो पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन उनकी बात पर ध्यान दिए बिना सदस्य नारे लगाते रहे। इस पर श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, सदस्य सवाल पूछते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही शुरू होते ही सदन को कारगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 2026 को कारगिल दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है, जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय योगदान दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि देश में किसानों को उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम से पहले

राज्यों की आवश्यकता का आकलन किया जाता है और उसी के आधार पर मासिक आपूर्ति योजना बनाकर उर्वरकों का आवंटन किया जाता है। सरकार ने कहा कि खरीफ 2026 के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस सहित सभी प्रमुख उर्वरकों की राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता बनी रही तथा उनकी आपूर्ति की लगातार निगरानी की जा रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि उर्वरकों की आवाजाही पर एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली के माध्यम से नजर रखी जाती है। जिला और ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। उन्होंने कहा कि फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए वर्ष 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू है। इसके तहत कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि सब्सिडी पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर दी जाती है। किसानों को डीएपी 50 किलोग्राम की बोरी 1,350 रुपए के वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए खरीफ और रबी 2025-26 तथा खरीफ 2026 के लिए एनबीए सब्सिडी के अतिरिक्त 3,500 रुपए प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान भी किया गया है, ताकि उर्वरकों की कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 से अब तक देश भर में 26 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की खपत में 8-10% तक कमी आई है, जबकि फसलों की उत्पादकता में 5-6% तक वृद्धि दर्ज की गई है। नीति आयोग ने भी एनबीएस योजना को संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए उपयोगी बताते हुए इसे और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में कहा कि FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य योजक विनियम 2011 अधिसूचित किए हैं, जिनमें बिस्किट, खाद्य तेल तथा अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के मानक निर्धारित किए गए हैं। इन विनियमों के अनुसार पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है। चूंकि पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है, इसका उपयोग स्नैक्स, बिस्किट, नमकीन और अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में खाद्य तेल के घटक के रूप में करने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियमन 2020 के अनुसार खाद्य उत्पादों की सामग्री सूची में प्रयुक्त खाद्य तेल का विशिष्ट नाम देना अनिवार्य है। केवल खाद्य वनस्पति तेल जैसा सामान्य नाम लिखना पर्याप्त नहीं है, इससे उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलती है और वे सूचित विकल्प चुन सकते हैं। सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। FSSAI के मानक स्वतंत्र वैज्ञानिक जोखिम आकलन, वैज्ञानिक पैनलों और समितियों की राय पर आधारित होते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कोडेक्स मानकों के अनुरूप बनाए जाते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक लिखित उत्तर में कहा कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य के माध्यम से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करता है। मिशन वात्सल्य योजना अन्य बातों के साथ साथ किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 तथा मिशन वात्सल्य दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके और बाल देखरेख संस्थानों को छोड़ रहे पात्र युवा वयस्कों के लिए उत्तरोत्तर देखभाल सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में बताया कि जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं, अतः जन स्वास्थ्य सुविधाओं में मानव संसाधन की पर्याप्तता और सेवा उपलब्धता सहित स्वास्थ्य परिचर्चा प्रणाली को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी, जिसकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 100 एमबीबीएस विद्यार्थियों की है, को स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMC द्वारा निर्धारित

मानदंडों और मानकों के अनुसार स्थापित किया गया है। वर्तमान में कॉलेज एमबीबीएस शिक्षा के लिए एनएमसी विनियमों के तहत अनिवार्य विभागों, अवसंरचना और सुविधाओं से सुसज्जित है। वर्तमान में कॉलेज में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी आदि जैसे सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित नहीं किए गए हैं। कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी आदि जैसे रोगों से संबंधित गंभीर रोगियों का उपचार सामान्य चिकित्सा विभाग के संकाय द्वारा किया जा रहा है और जिन रोगियों को सुपर स्पेशलिस्ट परिचर्या की आवश्यकता होती है उन्हें KGMU लखनऊ SGPGI रेफर किया जा रहा है। आप सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा और सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय बनाने के प्रावधान वाला एक विधेयक सदन में पेश किया गया। हंगामे की वजह से आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। सभापति ने कहा कि 26 जुलाई को देश करगिल विजय दिवस मनाएगा। ये दिन 1999 के करगिल युद्ध में भारत की जीत की याद में और हमारे सशस्त्र सेनाओं के उन बहादुर अधिकारियों तथा सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अद्भुत साहस, वीरता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा के साथ देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर ये सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। हम सशस्त्र सेनाओं के उन सभी सदस्यों के प्रति भी गहरा आभार व्यक्त करते हैं जिनका दम्य साहस, दृढ़ संकल्प और असाधारण चुनौतियों के बीच निस्वार्थ समर्पण देश को प्रेरित करता रहता है और देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प को और मजबूत करता है। सभापति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस सदन के सदस्य बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने में मेरे साथ शामिल होंगे। इसके बाद सदस्यों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शूरवीर सैनिकों के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा। करगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है लेकिन इस बार 26 जुलाई को रविवार होने के कारण अवकाश होगा और संसद की बैठक नहीं होगी, इसलिए आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और प्रश्नकाल शुरू करना चाहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्य विरोध करने लगे। सभापति ने हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और उच्च सदन में आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने फिर से सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए आमंत्रित किया। श्री खड़गे ने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करते हुए बयान देना चाहिए। श्री खड़गे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने भी हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में अव्यवस्था देख राधाकृष्णन ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा करने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति हरिवंश ने विपक्षी सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए कहा कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम विधेयक 2026 को पेश किया जाना है जो आज के कामकाज की सूची में सूचीबद्ध है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के तहत 1971

0: के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक के विरोध में प्रस्ताव रखते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटस ने कहा कि संविधान में जो बात तय हो चुकी है, संसद उसे सामान्य अधिनियम के जरिए संशोधित नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये संशोधन विधेयक पूर्णतः देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की मंशा पर आधारित है, किंतु ये संविधान के उन संदर्भों की अनदेखी करता है जिनके आधार पर मूल कानून बनाया गया था। श्री ब्रिटस ने कहा कि संविधान सभा ने लगातार 3 वर्ष तक गहन विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक समान दर्जा नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि किसी कानून के जरिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद पैदा नहीं किए जा सकते। विधेयक की मंशा समाज का ध्रुवीकरण करना है। विधेयक को पेश करने के विरोध में प्रस्ताव पेश करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी ने कहा कि वंदे मातरम का उद्देश्य समाज को एकजुट करना है, बांटना नहीं है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं चंद फिल्मी कव्वालियां।

पे ताली, वरना अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हो आप पे निसार। हाँ बचपन

तू पढ़ना हमेशा आगे बढ़ना, सच का दामन ना छूटे चाहे ये दुनिया रूठे, काम तू अच्छे करना सिर्फ अल्लाह से डरना, सभी को गले लगाना मोहब्बत।

0: हम आकाशवाणी नागपुर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। जब सुनिए फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम गाने नए जमाने के। प्रोग्राम की पहली पेशकश फिल्म का नाम 22 डेज, आवाज शान की है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: प्रोग्राम का अगला गीत पलक मुंछाल और साथियों की आवाजों में है। फिल्म का नाम फाइव वेडिंग्स।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: यह है फिल्म का नाम आशिकी 2, आवाज मिथुन की है।

अभी आप फिल्म संगीत के अंतर्गत सुन रहे थे गाने नए जमाने के। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं FM बैंड 103.7 MHz पर।

आप आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
3: लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
1: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने

0: सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
2: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है, और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में।

0: विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनर्स्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
1: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहाँ पर हम ज़्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
2: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज NDRF, SDRF और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़ककर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह

0: सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। और निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं चंद गज़लें। पहले समाज फरमाइए गुलाम अलीम की आवाज़ में ये गज़ल।

0: वालिद की मौत के बाद।
1: अब सुनते हैं सोनाली राठौड़ की आवाज में प्रोग्राम की अगली पेशकश।
0: नहीं नहीं, फलक या जमाने का क्या कसूर, मेरा ही सितारा मनहूस था कि ऐसे आफताब का साया मेरे सर से उठ गया। जो कुछ किया मेरी किस्मत ने किया, अपने ही हाथ के सिवा किसी और का हाथ अपने सर पर ना पाया। अपना ही हाथ सर पे रहा अपने यहां सदा, मुश्फिक कोई नहीं।

पंकज उदास की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

किशोर कुमार को आपने सुना, फिल्म का नाम था जॉनी मेरा नाम। इनका साथ दे रही थी उषा खन्ना, बोल इंदिवर के थे और धुन कल्याण जी आनंद जी की थी।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत सुना। स्वर लता मंगेशकर का था और फिल्म का नाम था अनामिका। आपके लिए कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, खय्याम साहब का संगीत, जानिसार अख्तर के बोल, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम रजिया सुल्तान।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में हुआ था। ये जगह अब पाकिस्तान में है। उनका वास्तविक नाम है हरि कृष्ण गोस्वामी। जब वो 10 बरस के थे तो देश का बंटवारा हो गया और पूरा परिवार दिल्ली में आ गया और रिफ्यूजीज यानी शरणार्थियों के एक कैंप में पुराने राजेंद्र नगर दिल्ली में रहने लगा। मनोज कुमार ने अपनी शिक्षा दीक्षा दिल्ली में ही पूरी की। बचपन से ही दिलीप कुमार उनके पसंदीदा अभिनेता थे। वो दिलीप कुमार की कॉपी किया करते थे अपने कॉलेज के दिनों में। शुरुआती दिनों में मनोज कुमार ने कुछ छोटे मोटे काम किए, यहां तक कि उन्होंने सिलाई मशीन के सेल्समैन के तौर पर भी कुछ दिन काम किया। बाद में अभिनेता बनने का सपना लेकर मनोज कुमार मुंबई आ गए और यहां उन्होंने कुछ छोटी फिल्मों से की अपनी शुरुआत, जैसे सन 1957 में आई थी फिल्म फैशन।

तकरीबन 5 बरस बाद विजय भट्ट की फिल्म हरियाली और रास्ता के जरिए मनोज कुमार को मिली अपनी पहली बड़ी कामयाबी। इस फिल्म में उनकी नायिका थी माला सिन्हा।

सन 1965 में ही विचार आया शहीद भगत सिंह पर फिल्म बनाने का। फिल्म शहीद का निर्माण बहुत सारे संघर्षों से घिर गया था, लेकिन मनोज कुमार ने ठान लिया था कि ये फिल्म तो बनकर रहेगी और शहीद भगत सिंह के जीवन पर सबसे प्रामाणिक फिल्म यही है जिसमें मनोज कुमार शामिल थे। इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा भी नजर आए। फिल्म के गीतकार और संगीतकार थे प्रेम धवन। मेरा रंग

मनोज कुमार के करियर के दो अलग अलग पहलू हैं। एक वो पहलू है जहां वो रूमानी नायक के तौर पर कई फिल्मों में नजर आए, और दूसरा पहलू है भारत कुमार वाला पहलू, जहां उन्होंने देशभक्ति और सरोकार वाला सिनेमा बनाया। तो चलिए पहले बतौर चॉकलेटी हीरो मनोज कुमार की फिल्मों की कुछ झलक यानी कुछ गाने सुन लिए जाएं। फिल्म पत्थर के सनम।

जब फिल्म शहीद को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दिखाया गया, तब ये फिल्म उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने मनोज कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनसे कहा, क्या मेरी नारी जय जवान जय किसान पर फिल्म नहीं बन सकती? मनोज कुमार ने दिल्ली से लौटते हुए कुछ रजिस्टर खरीदे और कुछ नए पेन। दिल्ली से मुंबई तक के सफर में फिल्म उपकार की कहानी तैयार हो चुकी थी और इस तरह सन 1967 में आई रुपहले पर्दे की एक नायाब बेमिसाल फिल्म उपकार।

उपकार के इस गाने की एक दिलचस्प कहानी है। गुलशन बावरा रेलवे में क्लर्क हुआ करते थे। रेल गोदाम में पंजाब से आती थीं गेहूं की बोरियां। जब गेहूं की इतनी सारी बोरियां उतरा करती तो गुलशन बावरा के कवि मन में एक पंक्ति कौन थी, मेरे देश की धरती सोना उगले। बरसों बरस ये पंक्ति उनकी डायरी में बनी रही। बाद में मनोज कुमार ने इसे फिल्म उपकार में शामिल किया। सन 1970 मनोज कुमार अपनी दूसरी फिल्म लेकर आए, पूरब और

पश्चिम। ये फिल्म परंपरा और पश्चिमी संस्कृति के टकराव की कहानी थी। इस फिल्म की चारों तरफ बड़ी तारीफ हुई और ये गाना जैसे भारत के गौरव का गान बन गया।

0: सुनाता हूँ।
1: सन 1972 में मनोज कुमार नजर आए फिल्म बेईमान में। इसी साल मनोज कुमार ने अपने प्रोडक्शन से अगली फिल्म प्रस्तुत की जिसका नाम था शोर।

फिल्म शूर के गाने बेहद मकबूल हुए। सन 1974 मनोज कुमार ने एक ऐसी फिल्म बनाई, आजादी के बाद बनते हुए भारत के सपनों से थोड़े से मोहभंग की कहानी थी। एक ऐसी फिल्म जिसने बताया कि हम सब अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन देश में हैं कुछ समस्याएं जिन्हें निपटाना जरूरी है। यह फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मनोज कुमार के साथ नजर आईं जीनत अमान।

इसके बाद मनोज कुमार नजर आए फिल्म 10 नंबरी में। मनोज कुमार दिलीप कुमार के हमेशा से जबरदस्त फैन रहे हैं। दिलीप कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका उन्हें मिला सन 1981 में अपनी फिल्म क्रांति के जरिए।

क्रांति के बाद मनोज कुमार की फिल्में ज्यादा नहीं चली। धीरे धीरे मनोज कुमार नेपथ्य में चले जाते रहे, लेकिन मनोज कुमार के चाहने वाले कायम रहे। आज भी उनके मैनरिज्म को, उनकी अदाओं को, रुपहले पर्दे पर उनकी मौजूदगी को लोग बहुत याद करते हैं। आइए सन 1970 में आई फिल्म पहचान का ये गाना सुने, जिसे हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि और गीतकार नीरज ने लिखा।

0: सन 1989 में मनोज कुमार ने बनाई फिल्म क्लर्क और सन 1995 में मैदाने जंग। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और लेखक मनोज कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती द्वारा प्रसारित कार्यक्रम। आप आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 10 बज चुके हैं। हमारी आज की सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल सवेरे 8:51 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि।